मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है अब हमारे केंद्र से प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आज आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र अरुणा वर्मा। सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्र

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने

0: मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में प्रस्तुत देशकान से।

आकाशवाणी ग्वालियर से श्रोता इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए प्रस्तुत है विष्णु मल्होत्रा के स्वर में ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम वंदना में अभी आपने सुना विष्णी मल्होत्रा के स्वर में ये भक्ति गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना।

कार्यक्रम वंदना में अभी आपने सुना चित्रा सिंह और साथियों के स्वरों में ये भक्ति गीत। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं हरिओम शरण के गाए इस भक्ति रचना से।

0: हरिओम शरण के गाए भक्ति गीत के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव साथी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन में डॉक्टर विजय शर्मा के विचार आधुनिक जीवन शैली विषय पर। वाचक स्वर है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने सोचने समझने और हंसने का गुण दिया है, इसलिए उसकी जीवन शैली उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जीवन शैली का अर्थ है जीवन जीने का तरीका या ढंग। व्यक्ति चाहे तो अपनी जीवन शैली से अपने जीवन को वरदान बना ले या चाहे तो उसे अभिशाप बना ले। आज जिस प्रकार भौतिक सुखों की ओर मानव अंधाधुंध दौड़ लगा रहा है, उससे वो साधन संपन्न तो बन रहा है किंतु उसका स्वास्थ्य और हृदय कोश प्रभावित हो रहा है। भौतिकता हमें बिस्तर तो दे सकती है लेकिन सुकून की नींद नहीं दे सकती। इस प्रकार की जीवन शैली हमारे मन एवं शरीर को सुदृढ़ करने की बजाय हमें मानसिक और शारीरिक रोगी बना सकती है। सही जीवन शैली हमारे मन को ऊर्जावान बनाती है और हमारे शरीर को शक्तिशाली। आज हम विशेष रूप से हमारे युवा पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। शारीरिक श्रम के स्थान पर भोग की संस्कृति के परिणाम स्वरूप शरीर को कूड़ादान बना दिया गया है, जिसका परिणाम मधुमेह, उक्त रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारियों के रूप में दिख रहा है। भारतीय संस्कृति श्रम और त्याग पर आधारित थी, उसको भूलकर हम आराम पसंद और स्वार्थी बन गए हैं। श्रम करते भी हैं तो केवल डॉक्टरों के कहने पर या सुंदर मसल्स बनाने के लिए। पर्याप्त नींद, स्वच्छता, नित्य क्रियाओं के पर्याप्त समय, शारीरिक श्रम, ध्यान, उपासना, संतुलित भोजन आदि को अपने जीवन से जैसे हमने अलग कर दिया है, रात दिन केवल भौतिक सुखों को संग्रह करने में लगे हुए हैं। कार्यों की अधिकता और पर्याप्त नींद के अभाव में याददाश्त प्रभावित हो रही है और तनाव दिनों दिन बढ़ रहा है। देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोने के कारण मानसिक और शारीरिक विकार निरंतर बढ़ रहे हैं। नकारात्मक विचार हावी होते जा रहे हैं जिससे आत्महत्या, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार जैसे भावों में वृद्धि होती जा रही है। ये ठीक है कि तकनीकी विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु मोबाइल, इंटरनेट जैसे साधनों से संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं। घर का प्रत्येक सदस्य अपनी निजी जिंदगी जीना चाहता है। हमारी जीवन शैली में तकनीक ने इतनी गहरी पैठ बना ली है कि अपनी संपूर्ण क्षमताओं का ज्ञान भी हम भूल गए हैं। सच्चाई तो यह है कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध व सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ही हम अपने जीवन का 80% प्राण लगा देते हैं और शेष 20% यों ही बर्बाद हो जाता है। यदि हमें मनुष्य जीवन को समझना है तो अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। जीवन शैली को हमें अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनाना है, वरन सहयोगी बनाना है। शरीर के साथ साथ मन का भी ध्यान रखना है, इसके लिए समय प्रबंधन सबसे बड़ी जरूरत है। तकनीक हमें सुख सुविधा

0: सिखाएं देती है तो जीवन शैली हमें जीना सिखाती है, हमारी गलतियों, भूलों व आदतों से परिचित कराती है। और यदि शरीर और मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर इन सब सुखों और भोगों को हम भोगेंगे कैसे? इसलिए हमें अपनी जीवन शैली के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं।
1: चिंतन में अभी श्रोता सुन रहे थे आधुनिक जीवन शैली विषय पर डॉक्टर विजय शर्मा के विचार। वाचक स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। लीजिए अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा में सामूहिक चर्चा, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्यों और कैसे। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपकी रबी की फसल कट रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें कट चुकी हैं, चना है, मटर है या सरसों है, इन सब फसलों कट चुकी हैं, कुछ मात्रा में गेहूं की फसल कट चुकी है। किसान भाइयों, ये अप्रैल मई का महीना बहुत ही जो है अच्छा मौसम है गर्मी गहरी जुताई करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम मृदा स्वास्थ्य को सुधारने एवं निरोग बनाने का सर्वोत्तम समय है। रबी फसलों के कटाई के उपरांत अधिक से अधिक किसान भाई अपने खेत को खाली छोड़े रहते हैं, जिससे उसमें जो है तेज़ हवाओं के कारण जो है मृदा में नमी समाप्त हो जाती है। जब वर्षा होता है तो वर्षा का पानी ज़मीन अवशोषित नहीं कर पाती और पानी बाहर चला जाता है, साथ ही में उस पानी के साथ मृदा के ऊपरी कण से जो है कटते हुए मिट्टी भी जो है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह भी बह करके जो है नालों में चली जाती है या अन्य स्थानों पर चली जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। फसलों की अधिक उपज प्राप्त करने व मृदा की संरचना सुधारने के लिए गर्मी की जुताई अति आवश्यक है। गर्मी की जुताई से मृदा में वर्षा जल का शोषण अधिक होता है, वहीं नमी संरक्षित होती है। मृदा में उपस्थित कीड़े मकोड़ों के जो लार्वा या अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, साथ ही जो है खरपतवार जो होते हैं जो पौधों में उग करके जो है पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं वो भी जो है नष्ट हो जाते हैं। साथ ही किसान भाई, मृदा की जो संरचना होती है उसमें भी सुधार होती है। यदि गर्मी की गहरी जुताई की जाए तो ये देखा गया है कि कम से कम जो है 15 से 20% जो है आपकी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ जाती है, साथ ही जो है भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं गुणों में भी जो है सुधार होता है। इससे भूमि की ऊपरी परत जो है खुल जाती है, ये जो है बहुत मतलब की हो जाता है, जिससे सूर्य की तीव्र किरणें भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और क्रिया का जो है एक तरह से सौर विकिरण हो जाता है, जिससे जो है उसमें जो है हानिकारक कीट हों, लार्वे हों या पौधों के जड़ हों, ये नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही आप रबी की फसल की कटाई करें और कटाई करने के बाद 10 दिन तक जो है उसमें जो है पर्याप्त नमी होती है, उस नमी का फ़ायदा उठा करके आप जो है अपने खेत का जो है तुरंत जुताई कर दें। इससे ज़्यादा समय यदि लेते हैं तो गर्म हवा चलने से जो है मिट्टी कड़ी हो जाएगी और उससे फिर आप जुताई नहीं कर सकते। इसलिए जो आपको सलाह दी जाती है कि आप फसल कटने से 5 से 10 दिन के अंदर में ही जो है अपनी खेत की जुताई कर दें। हाँ किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप यंत्र के बारे में जानें कि किस यंत्र से करना चाहिए। जैसे इसके लिए जो गर्मी में जुताई करते हैं उसके लिए है कम से कम आपकी खेत जो है 45 से 60 सेंटीमीटर गहरी जुताई होनी चाहिए। इसके लिए जो दो तरह के यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, एक तो बैल चालित यंत्र होते हैं, दूसरा जो है ट्रैक्टर चालित यंत्र होता है। इसके अंतर्गत जो है एक आता है ट्रैक्टर चालित या बैल चालित भी आता है डिस्क हल, दूसरा आता है मिट्टी प्लट हल, जिसे आज किसान भाई भी जो है प्लाऊ के नाम से जानते हैं। इसके बाद सब सॉयलर आता है, एकल तवेदार हैरो आता है और ऑफसेट तवेदार हैरो आता है। इनका प्रयोग करके आप जो है खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इन यंत्रों से ये देखा गया है, ऐसा होता है कि ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाती है और नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है, जिससे सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है सीधे जो है उस मिट्टी पे पड़ती है और जितने भी फायदा होना चाहिए जुताई से वो फायदा मिलता है। किसान भाइयों, यदि आप ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं तो इससे जो है बहुत सारी मतलब के लाभ हैं। क्या जैसे खरपतवार नियंत्रण, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने से जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनके जो है कंद, राइजोम और जड़ें जो हैं वो जमीन के ऊपर आ जाती हैं और मई जून की कड़ी धूप के प्रभाव से सभी लगभग नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्म

0: मिट्टी की गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई करने से जल संरक्षण में भी वृद्धि होती है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कृषि चर्चा में सामयिक चर्चा, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्यों और कैसे, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव, साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR। लीजिए अब सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: सड़क पर गाड़ी चलाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान रखें। ट्रैफिक सिग्नल पर निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें। यदि सिग्नल पर टाइमर 90 सेकंड रुकने का निर्देश दे तो इंजन बंद कर दें। बेवजह ईंधन की खपत ना करें। प्रदूषण भी ना बढ़ाएं। हरी बत्ती मिलने पर हॉर्न बजाते हुए आगे जाने की जल्दबाजी ना करें। ये दुर्घटना को बढ़ावा तो देगा ही, ध्वनि प्रदूषण से चालकों का तनाव भी बढ़ाएगा। सड़क पर चलने का हक सबको है, इसलिए सबका ध्यान रखें।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: याद रखो हमारी बात,
2: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
1: जंगल है धरती का गहना,
2: सदा इसकी रक्षा करना
1: होगी जो धरती पर है।

0: हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण में कुछ संदेश। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। पञ्चदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् अनन्तरं इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्पर हितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी संबद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामी मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाहः गतवासरे मादक द्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादक द्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रीय सुरक्षायै, सामाजिक स्थिरतायै, आर्थिक हिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिक नेत्रीन, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्री शाहः नवदिल्ल्यां मादक द्रव्य विषयक संयोजन केन्द्रस्य दशम शीर्षस्तरीय सभां संबोधयन् एवं अभ्यभाषत।
4: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
3: उत्तर प्रदेशारक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां

0: आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस

0: नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7:20 पर श्रोता सुनेंगे वार्ता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और छायावादी काव्य। वार्ताकार हैं प्रोफेसर शशि प्रभा पांडे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:30 पर। आज प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर के 90 वर्ष पूरे होने के क्रम में पॉडकास्ट। विषय होगा कैसे रखें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान। डॉक्टर अमन किशोर से बात करेंगी डॉक्टर विभूति सिंह। प्रसारण समय याद रखिएगा सुबह 8:30। सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रस्तुत करेंगे प्रातः 9:00।

प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी योगिनी तांबे। आप सुनेंगे राग अहिर भैरव में ध्रुपद गायन, पखावत संगत है जयंत गायकवाड़ की। आज शनिवार है और आज का दिन होता है कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ का। आज के हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कमल भदौरिया, इनसे बात करेंगी तुलिका शर्मा। विषय होगा त्वचा की आम समस्याएं। प्रसारण समय रहेगा 10:05। दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आप सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का अनुप्रसारण। महिला सभा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अपराह्न 1 बजे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति।

शाम 5:02 पर श्रोता युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज आप सुनेंगे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 5:33 पर और शाम 6:00 श्रोता सुनेंगे भजन संध्या। हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होता है शाम 7:20 पर। आज चर्चा होगी वर्षा जल सहेजे और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथ ही सुनेगा नन्हे बाल श्रोताओं के लिए कार्यक्रम फूल बगिया। चर्चा होगी स्कूल जाने से पूर्व तैयारी और सुश्री कीर्ति गौर की वार्ता आप सुनेंगे प्रमुख महासागर। रात 8:00 श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9:30 पर सुनिएगा अखिल भारतीय पत्रिका विज्ञान भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 10:00 हम अनुप्रसारित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर और आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

से प्रमुख प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति के अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन को

0: शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज शाम को सनसेट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुच पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
2: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
0: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले यह भोपाल उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही हैं। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारे शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समय स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, पीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव साथी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए वार्ता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और छायावादी काव्य। वार्ताकार हैं प्रोफेसर शशि प्रभा पांडे।
1: छायावादी काव्य चेतना और शैली के स्तर पर एक क्रांतिकारी काव्य है। यह काव्य प्राचीन जड़ मान्यताओं और रूढ़ियों को तो तोड़ता है पर सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकारता भी है और ग्रहण भी करता है। इसे हम यूरोपीय रोमांटिसिज्म से भिन्न, भारतीय रंग में रंजित, भारतीय संस्कृति से आच्छादित हिंदी साहित्य का रोमांटिसिज्म कह सकते हैं। छायावादी काव्य को भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक बंगला ने प्रभावित किया। विशेषकर कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्रभाव को काव्यशास्त्र की भाषा में काव्य हरण कहा जाता है। आनंद वर्धन का कहना है कि जिस हरण में कवि की मौलिकता एवं विशिष्टता बनी रहे वही हरण उचित है। यदि पुरातन कवियों के वर्णन की छाया में सहृदय को स्फुरण का अनुभव हो अथवा उसमें कवि की कोई नई सूझ दिखे तो वो हरण ग्रहणीय है, रम्य है, श्रेष्ठ है। राजशेखर मानते हैं कि अध्ययनहीन कवि को ही लग सकता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो नया, अछूता और मौलिक है। जो बुद्धि विद्या में अगाध होते हैं वे इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि वे जो कुछ भी लिखेंगे वो सब लिखा जा चुका है। वे जानते हैं कि उन्हें अपनी रचना में प्राक्तन कवियों के शब्दों, अर्थों और विषयों का समाहार करना ही पड़ेगा। उनकी सजगता तो इस बिंदु पर होती है कि उनके काव्य में मौलिकता, सरसता और नई चमक हो। छायावादी काल में कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा और महिमा से बंगला भाषा उस चरमोन्नति के शिखर पर पहुंच गई थी कि छायावाद का इससे प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। इसी काल में गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो देश एवं साहित्य के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी। छायावादी कविता के 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। रविंद्रनाथ का सबसे अधिक प्रभाव निराला और पंत पर दृष्टिगोचर होता है। प्रसाद भी इससे अछूते नहीं हैं। कामायनी में एक स्थान पर चिंता कातर मनु का बिंबात्मक चित्र इस प्रकार प्रस्तुत हुआ है। अवयव की दृढ़ मांस पेशियाँ, ऊर्जोसित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में जीवन का बहता जिसमें मधुमय स्रोत। यहाँ मनु के पौरुष को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अंदर बहते यौवन स्रोत को बिंब द्वारा उपस्थापित किया गया है, जिसकी तुलना रविंद्रनाथ की विदाय अभिशाप कविता में कच्छ के पौरुष, तेज, आकर्षण और दीप्ति से की जा सकती है। जे दिन प्रथम तुम्हें माली ले दे आए, किशोर ब्राह्मण तरुण अरुण प्राय, गौरवर्ण तनुखानी स्निग्ध दीप्ति ढाला, चंद ने चर्चित भाल कंठे पुष्पमाला, परिहित पट्टवास अधरे नयने, प्रसन्न सरल हाँसी होता पुष्प बने दाड़ाले आसिया। रीतिकाल में नारी के मांसल सौंदर्य का चित्रण ही कवियों का अभीष्ट था। आधुनिक युग ने इसे वर्जित किया। रविंद्रनाथ ने नारी के आंतरिक सौंदर्य को, उसके आंतरिक उदार गुणों को सुंदर बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उर्वशी का सौंदर्य चित्रण देखिए। स्वर्गेर उदिया चले मूर्तिमति तुम हे उषसी, हे भुवन मोहिनी उर्वशी, जगतेर अश्रु धरे धौत तव तनुरत निम्प, त्रिलोकेर हृदय रक्ते आका तव चरण शोणिमा, मुक्तवेणी विवसने विकसित विश्ववासनार, अरविंद माझ खाने पाद पद्म रेखे चतोमार अति लघुभार। इसी के अनुरूप श्रद्धा के सौंदर्य अंकन में प्रसाद का सौंदर्य बोध अपने नवीन स्वरूप में प्रकट होता है।

0: सरल सौंदर्य बोध से युक्त सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य बोध देखिए। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीड़ित जो शिशुचाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कामायनी में श्रद्धा निराश मनु के समक्ष खड़ी होती है और मनु को उसके अमूल्य पुरुष का होश दिलाती है। रविंद्र की ये वन बालिका भी हारे पथशांत पथिक के पास जैसे उसकी क्लांति हरने के लिए खड़ी होती है तो श्रद्धा की याद दिलाती है। दोनों कवियों के चित्रण में पुरुष और प्रकृति अपनी अपनी भूमिका में मानो दृश्य हो उठे हैं। गुरुदेव रविंद्र की नायिका कवि से कहती है, जा छिल आमार कवि दिए छ सकली ए हृदय ए प्राण सकली तो मार कवि। कामायनी में श्रद्धा का इसी तरह का समर्पण भाव ममत्व एवं करुणा के साथ मनु के लिए प्रकट हुआ है। समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पतवार आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। निराला के पास बंगाल और बंगला भाषा की एक बड़ी पृष्ठभूमि थी इसलिए उनमें प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। गुरुदेव की पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। कखन थे के पथ चे आर काल गुणे ऐसे याच तोमार लागे हाय प्रिय टुटल जखन सकल अवगुंठने रैल जखन केवल सुखे लुंठने काल अकालेर बाच बिचारे चुप प्रिय। निराला की ये पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। कब से मैं पथ देख रही प्रिय और न तुम्हरे रेख रही प्रिय तोड़ दिए जब सब अवगुंठन रहा एक केवल सुख लुंठन तब क्यों इतना विस्मय कुंठन असमय समय न करो खड़ी प्रिय। यहाँ निराला रविंद्र की अपेक्षा प्रेम में अधिक स्वच्छंद आग्रही और मुखर हैं ये उनकी अपनी विशेषता है। अपनी कविता मानस सुंदरी में रविंद्र कहते हैं, ऐसो तुम्हें प्रिय आजन्म साधन धन सुंदरी आभार कविता कल्पना लता। निराला अपनी कविता प्रिया से में कहते हैं, मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता मेरे तरु की है तू कुसमित प्रिय कल्पना लता। निराला की ज्येष्ठ कविता रविंद्र की वैशाख कविता से तुलनीय है। गुरुदेव रविंद्र ने पहली बार प्रकृति का इतना गंभीर एवं रुद्र वर्णन किया है। छाड़ो डाक हे रुद्र वैशाख भाग्या मध्यान्ह तंद्रा जाग उठ बाहिर विद्वारे चे रव प्राणी शून्य दग्ध तृण दिगंतेर पारे निस्तब्ध निर्वाक हे भैरव हे रुद्र वैशाख। निराला के विद्रोही मन के लिए रविंद्र के ऐसे भावों से ऐक्य हो जाना स्वाभाविक था। उन्होंने लिखा है, ज्येष्ठ क्रूरता कर्कशता के ज्येष्ठ सृष्टि के आदि वर्ष के उज्ज्वल प्रथम प्रकाश अंत सृष्टि के जीवन के हे अंत विश्व के व्याधि चराचर के हे निर्दय त्रास सृष्टि भर के व्याकुल आह्वान अचल विश्वास सृष्टि भर के शांकिल अवसान दीर्घ निश्वास देते हैं हम तुम्हें प्रेम आमंत्रण आओ जीवन शमन बंधु जीवन धन। गुरुदेव रविंद्र की पंक्तियाँ हैं, धूलाए धूसर रुक्ष उड्डीन पिंगल जटाजाल तपक्लिष्ट तप्त तनु मुखे तुलि विशान भयाल कारो दाओ डाक। निराला कहते हैं, घोर जटा पिंगल मंगलमय देव योगी जन सिद्ध धूल धूसरित सदा निष्काम उग्र लपटिए लूकी है या शूल करोगे विद्ध उसे जो करता है आराम। पंत की प्रसिद्ध कविता प्रथम रश्मि पर रविंद्र के भोरेर पाखी का पूरा प्रभाव है। रविंद्र लिखते हैं, भोरेर पाखी डाके को थाए भोरेर पाखी डाके भोर न हते भोरेर खबर के मन करे राखे। पंत की पंक्तियां हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना कहाँ कहाँ है बाल बिहंगनी पाया तूने यह गाना। पंत रविंद्र के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहते हैं, मैं रविंद्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ और यदि लिखना एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है तो मेरे उपचेतन ने इन कवियों की निधियों का यत्र तत्र उपयोग भी किया है। इस तरह छायावादी कवियों में शब्द हरण की यह प्रक्रिया चलती रही है। निस्संदेह रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा उनकी चिंतनशीलता की गहराई और दृष्टि का विस्तार विश्वव्यापी है। साहित्य सृजन की प्रत्येक विधा में उनके उदात्त नवीन एवं अछूते विचारों की मणियाँ बिखरी पड़ी हैं। उनकी अप्रतिम सृजनशीलता से किसी भी साहित्य की धारा या परंपरा का प्रभावित होना एक सहज स्वाभाविक साहित्यिक प्रक्रिया है।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे वार्ता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और छायावादी काव्य। वार्ताकार थी प्रोफेसर शशि प्रभा पांडे। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव। साथ ही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: फिल्म संगीत में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म आंधी का ये गीत, बोल थे गुलजार के और संगीत था हमारे हम सब के प्यारे पंचम दा का। जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम सभी उन्हें याद कर रहे हैं उनके जन्म जयंती पर उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध गीतों के जरिए। महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम पंचम के नाम से जानते हैं, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। पंचम दा भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली संगीत निर्देशकों में से एक थे। उन्होंने 60 से 90 के दशक के बीच 300 से अधिक फिल्मों में अपनी जादुई धुनें दी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पड़ोसन से।
1: अरे

श्रोता साथियों, पंचम दा को बॉलीवुड में रॉक, डिस्को और लैटिन संगीत को भारतीय दोनों के साथ मिलाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें पंचम नाम मशहूर अभिनेता अशोक कुमार ने दिया था। पंचम दा संगीत में प्रयोग के लिए जाने जाते थे। उनके कई यादगार गीत हैं, जिसमें महबूबा, 92 लव स्टोरी, ऐसी अनगिनत फिल्मों के गीत हैं जो उन्होंने भारतीय सिनेमा में फिल्म संगीत के योगदान के रूप में दिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म परिचय का गीत लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ों में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं,

बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे

रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या

अभी आपने सुना आशा भोसले और आरडी बर्मन को फिल्म कटी पतंग में। पंचमदा संगीत में नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी चक्की की आवाज़, कभी कप प्लेटों का इस्तेमाल करके संगीत तैयार किया। फिल्म इजाजत के गाने छोटी सी कहानी में उन्होंने रिकॉर्ड प्लेयर और सीलिंग फैन की आवाज़ से संगीत बनाया था। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म पुकार का गीत आरडी बर्मन की आवाज़ में।

आरडी 11 का संगीत किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं था श्रोता साथियों, बल्कि उनका काम इतना आधुनिक था कि आज भी उनके गानों के रिमिक्स और रिक्रिएशन बनते हैं। वे एक सच्चे अर्थों में संगीतकार थे जो अपने समय से कई दशक आगे की सोच से थे। आज हमने उनके गीतों के जरिए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म कस्मे वादे का गीत, आशा भोसले, किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाज़ों में, पोल गुलशन।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त

0: और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50-55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार

0: जयपाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले टी20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और केबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी

0: के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट कैसे रखें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान। डॉक्टर अमन किशोर एसोसिएट प्रोफेसर मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की आप सुनेंगे बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष कार्यक्रम, जहां पॉडकास्ट के अंतर्गत हम लेकर आते हैं कोई विशेष मेहमान जिनसे हम होते हैं रूबरू। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमन किशोर, जो ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और ग्वालियर के जाने माने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। इनसे हम बातें करेंगे मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक प्रबंधन और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने पर आमंत्रण देने के लिए।
1: आप जानते होंगे हाल में आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूर्ण किए हैं। अभी जिस जनरेशन में हम हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई कनेक्शन रेडियो के साथ नहीं था। हमें बताइए कि आकाशवाणी के साथ रिश्ता कभी रहा, या सरल शब्दों में कोई अगर याद है रेडियो से जुड़ी हुई तो प्लीज़ शेयर करिए।
2: बचपन में जो आदि यादें रहती थी, जिसमें कि स्पेशली मैथ्स कोर्स देखना या फिर कुछ सॉन्ग्स आते थे, बच्चों की कहानियाँ आती थी या वो कहानियाँ चलती रहती थी, तो जब हम गांव में जाते थे वो सब चीज़ें कई बार हम लोगों को छूती थी उस टाइम पे, और हम उसको पर्टिकुलरली रेडियो को कई बार हम लोग असेंबल एंड डिसेंबल करते थे फादर के साथ मिलके, तो वो एक ताकि हाँ ये चैन नहीं आ रहा है प्रोग्राम, इसमें कैसे ट्यून करना है, क्या करना है, तो वो सब चीज़ें एक पुरानी यादों की तरह आज आपने बिल्कुल छेड़ दिया वो टॉपिक। तो पुराने ज़माने में हम चले गए कि उसमें हम लोग ऐसी तरीके की भी हम थी हमारे पास व्यवस्थाएँ, जो हमारे पास नेट और ये सारी चीज़ों की सुविधा नहीं थी, तो हमारे पास एक आकाशवाणी ही एक साधन था। जब टीवी का भी प्रचलन नहीं था उस वक्त से हम लोग आकाशवाणी की तरफ से देखते रहे हैं।
1: अब अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए। ये मनोचिकित्सा का फील्ड बहुत अलग है, आपने क्यों चुना, किस चीज़ से प्रेरित होकर, और जो चैलेंजेस आए आप वो भी बता सकते हैं।
2: मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो फाइनली रिटायरमेंट के बाद हम लोग ग्वालियर में सेटलमेंट हुए 96 ऑनवर्ड्स, 11 12th यहीं से किया, एंड देन पीएमटी निकाल के एमबीबीएस का कोर्स मैंने रीवा से किया 2000 बैच से। फिर मैंने कुछ दिनों तक अपनी हेल्थ में सर्विसेज दी 5-6 महीने के लिए एक फूफ में, एंड फिर मेरा पीजी में सिलेक्शन हुआ केएमसी मणिपाल में, जहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया एंड 2011 में जिसे कंप्लीट किया साइकेट्री में। फिर डीएनबी एक होता है जो इक्विवेलेंट टू एमडी कोर्स होता है, दैट आई हैव डन फ्रॉम त्रिची तमिलनाडु, वहाँ पे कोर्स किया था मैंने। एंड फिर मैं करीब 1.5 साल तक सीनियर रेजिडेंट, एक पोस्ट होती है वो एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में पदस्थ था मैं करीब 1.5 साल तक। 2015 ऑनवर्ड्स मैं ग्वालियर मानसिक आरोग्य शाला ज्वाइन कर चुका हूँ। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे था, फिर अब एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे आ गया हूँ। एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ आने के बाद हम लोग पहली बार एमडी कोर्स साइकेट्री में मानसिक आरोग्य शाला में चालू कर पाए। इसके अतिरिक्त हमारे पास एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्रिक सोशल वर्क के भी कोर्सेज रनिंग में हैं, जो हमारी संस्था इनको कर रही है, जिससे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का डेवलपमेंट हो पाए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल समाज को दे पाएँ।
1: एयरफोर्स का बैकग्राउंड एक अलग ही ग्लैमर होता है आमतौर पर, जो युवाओं को बड़ा आकर्षित भी करता है, और आपने चुना ये मनोचिकित्सा का फील्ड, तो आपने बताया नहीं कि वो क्या टर्निंग।
2: इनिशियल मेरा इंटरेस्ट ऐसा नहीं था कि मेरे को मनोचिकित्सक ही बनना है। जब हम मनोचिकित्सा में, जब हम मणिपाल में मैंने एडमिशन लिया, और उसके बाद जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मेरे को और आगे पढ़ना है और मेरे को टीचिंग फील्ड में जाना है, पर्टिकुलरली मनोचिकित्सा में ही, ताकि मैं अपना जो ज्ञान मेरे को टीचर से मिला है वो कर पाऊँ, वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे को मणिपाल से। फिर डीएनबी जहाँ त्रिची से किया, साथ ही साथ जो हम लोग, ये जो एक अनभिज्ञ फील्ड है साइकेट्री की, जिसमें कि लोगों को स्टिग्मा बहुत रहता है कि लोग इस फील्ड में मरीज दिखाने नहीं आना चाहते, या उनको मालूम नहीं रहता है कि किसको दिखाएं इन लक्षणों को लेके, क्यों ये लक्षण बहुत ही अलग होते हैं आम बीमारियों से, तो इस तरह से वो जो अवेयरनेस की कमी की वजह से जब हम फील्ड में जाते हैं तो पता चलता है कि कितनी लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, कितना प्रिवलेंट है ये मनोरोग या मानसिक तनाव लोगों में, उसको हेल्प करने में बहुत मदद मिलती है। बहुत सारे स्मरण हैं जिसमें कि मरीजों को ठीक करने के बाद जो अंदरूनी खुशी मिलती है कि लोग जो सालों से कार्य नहीं कर पा रहे थे, चेन में बंधे हुए थे कई व्यक्ति, उनको हम लोगों ने ठीक किया। कई लोग विस्थापित हो जाते हैं मनोरोग की ग्रसित होके, जो वांडर्ड अवे हो जाते हैं, फैमिली से दूर चले जाते हैं और हमको पुलिस के माध्यम से मिलते हैं चिकित्सालय में, उनको घर पे पहुंचाते हैं हम। कई 15-15 साल से दूर हुए लोगों से मिलवाएं, तो वो जो अंदरूनी खुशी है वो शायद अगेन किसी और फील्ड में हमें नहीं मिल सकती थी।
1: अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था स्टिग्मा, तो ये हिचक क्यों है, सामान्य मिथक क्या है, आप

0: अनुभव से ज़रा बताइए, क्यों लोग मदद लेने में हिचकिचाते हैं, और आपके नज़रिए से ये जो मिथ्स हैं इनको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खंडन कैसे किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, देखिए क्या हुआ, साइकेट्रिक लक्षण होते हैं उसमें कई बार जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यवहार करने लग जाता है जैसे कि उसको कुछ और दिक्कत है। पहले भी जो ये स्टार्टिंग में बहुत पुराने टाइम पे देखा जाता था कि ये उनको डेमोनिक पोजेशन की बात करते थे कि उसमें एक प्रेत आत्मा का प्रकोप आ गया, इसकी वजह से स्वभाव ऐसा बदल गया। तो कहीं ना कहीं वो जो पुराने प्रचलन को हम दूर करना, कि लोगों को ये समझने आने लग जाए कि ये कुछ उनको अलग बाधा है और परिवार में ऐसा एक कोई व्यक्ति है जिसको ऐसे एक बाधा है, तो लोग छुपाते थे उस चीज़ को और उसकी वजह से ये एक स्टिग्मा का विषय होने लग गया कि नहीं, मुझे नहीं बताना है कि मेरा परिवार इससे ग्रसित है या मेरे परिवार में ऐसा कोई भूत बाधा या वो है। जबकि ये सामान्य मानसिक रोग के लक्षण होते थे जो कि समय के साथ जब ट्रीटमेंट आने लगा, दवाइयाँ आने लग गई, तो उससे इलाज संभव होने लग गया और उसकी वजह से लोग अब धीमे धीमे इसमें परिवेश में चेंज आ रहा है, परंतु अभी भी लोग सीधे साइकेट्रिस्ट पे फर्स्ट लाइन अप्रोच करने से अभी भी डरते हैं या फिर हिचकिचाते हैं। वैसे तो सरकार इस लेवल पे बहुत सारे काम कर रही है, कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। जो हमारे नेशनल की पर्सन्स हैं वो अगर इन्वॉल्व होने लग जाएं, जैसे प्रचार प्रसार किया जाए, तो लोगों में स्टिग्मा और लोगों से खुल के बात करने का जो डर रहता है कि हम कैसे बात करें, वो खुलेगा। इनफैक्ट कई फिल्म स्टार्स ने कई बार हम इस चीज़ की बात की है कई टेलीकास्ट में, जिसमें कि वो खुद से इस जूझ के निकल के आए हैं, उन्होंने मदद ली है और उससे वो बेहतर हुए हैं। तो इस तरह के अगर ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली बढ़ती हैं तो मेरे ख्याल से ये हम स्टिग्मा को कम कर पाएंगे, लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि मनोरोग अन्य मानसिक शारीरिक बीमारी की तरह एक रोग है और इसका इलाज संभव है।
0: हमें कुछ सामान्य मानसिक रोग और कुछ गंभीर मानसिक रोग,
1: बिल्कुल,
0: इनके विषय में थोड़ी जानकारी।
1: बिल्कुल, सामान्य मानसिक रोग वो जो होते हैं जिनका प्रचलन बहुत कॉमनली मिलता है और जिसके लक्षण में व्यक्ति अपने आप को रियलिटी से टच में रखता है, कि उसको बोध रहता है कि मेरे को ये परेशानियाँ हो रही हैं और मैं इसको इलाज मेरे को लेने पे मेरे को आराम मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसमें जो सबसे कॉमन है वो एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, घबराहट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। दूसरा होता है डिप्रेशन और फिर उसमें अन्य बीमारियों में ओसीडी की बीमारियाँ भी बहुत कॉमनली मिलती हैं। फिर नशे संबंधित बीमारियाँ, सेक्सुअल रोग और बच्चों से संबंधित जो मानसिक रोग हैं, ये सारे रोग भी कॉमन मेंटल इलनेस में आते हैं कई बार। जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं उनमें स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि लोगों को भ्रम हो जाना कि लोग मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं या कानों में आवाज़ें आने लग गई हैं या फिर मेरे विचार लोगों तक मेरे बिना मर्जी के लोग पता कर लेते हैं और साजिश करते हैं, तो उनको एक डर भय बना रहता है हमेशा और अपने अंदर ही रहने लग जाते हैं। तो ऐसी एक बीमारी होती है जिसको साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। एक ये बीमारी है जो कम प्रचलन में है लेकिन बहुत गंभीर मानसिक बीमारियों में आती है। दूसरा एक जो गंभीर मानसिक बीमारी में वो है वो बाइपोलर इलनेस है, जिसमें कि लोगों को उन्माद या मेनिक एपिसोड आते हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी बातें, बड़ा खर्च करने लग जाना, एनर्जी लेवल बढ़ जाना, एग्रेशन ज़्यादा आ जाना, वो बाइपोलर इलनेस के मेनिक एपिसोड में आता है। उसी के बाइपोलर है मतलब कि उसमें एक डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आ सकते हैं, जिसमें उदास रहना, मन अच्छा काम में मन नहीं लगना, जो सामान्य मानसिक बीमारी उदासी है उसका भी एपिसोड आ सकता है। लेकिन इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों एपिसोड्स अलग अलग टाइम पे रहते हैं व्यक्ति में। तो इस तरह से गंभीर मानसिक बीमारियों में ये भी आती हैं। फिर कुछ बीमारियाँ होती हैं जो हम कल्चरली बाउंड टाइप की मानते हैं, जिसमें कि लोगों को लगता है कि कोई उनमें सवारी आ रही है, बेहोश हो जाते हैं, जिसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं मिलता है, जिसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, कि हमारे अंदर पूर्वज आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, उनकी आवाज़ में वो बातें करने लग जाते हैं। तो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है जो गांव प्रचलन में बहुत है और महिलाओं में पर्टिकुलरली बहुत कॉमनली ये चीज़ें, जो हिस्टेरिया के नाम से पहले इस प्रचलन में था, इसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के नाम से जानने लग गए। तो ये सब एक कॉमन, एक मैं कुछ नाम गिना पाया हूँ सीमित समय में जो कि कॉमनली मिलते हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत कॉमनली मिलती है जो लोग अनदेखा कर लेते हैं और इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।
0: कुछ बताएं विस्तार से।
1: देखिए डिप्रेशन बेसिकली हम लोग ये मानते हैं कि किसी को टेंशन हो गया तो डिप्रेशन है ना, कि आज बॉस ने झगड़ा कर दिया और डांट दिया या कब घर में कलेश हो गया तो आज बुरा लग रहा है तो मैं आज डिप्रेशन में हूँ। लेकिन जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं उसमें ये रहता है कि भले ही कोई ट्रिगर रहा हो कि हमने कोई किसी वजह से स्टार्ट हुआ हो मन उदास रहना, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद भी हमारा मन ठीक नहीं रह पाता है, उदासी बना रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, जिस चीज़ का पहले इंटरेस्ट रहता था वो हम इंटरेस्ट से चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, लोगों से बातें करना, टीवी देखना, एनर्जी लेवल काफ़ी लो होने लग जाता है, फिर हमें भविष्य के और खुद के बारे में और समाज के बारे में नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, मैं किसी काम का नहीं रह गया।

0: गया हूँ और भविष्य में मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इस यही नकारात्मक विचारों के चलते आगे सुसाइड के विचार आने लग जाते हैं और उस पर अटेम्प्ट करते हैं। उसमें साथ साथ नींद में कमी और भूख में कमी, ये सारी चीज़ें भी साथ में जुड़ती चली जाती हैं, तो उनका वजन गिरने लग जाता है और फिर नींद खराब होने की वजह से आँख सर दर्द रहना, बाकी शारीरिक लक्षण भी आने लग जाते हैं उनमें। दूसरा, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारे एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कि वस्तु विशेष से डर लगना जिसको फोबिक एंग्जाइटी कहते हैं, कि लोगों के स्टेज पे जाके फियर होना जिसको सोशल एंग्जाइटी, या लोगों के बीच में बात करने में फियर रहना वो सोशल एंग्जाइटी होती है, किसी जानवर पर्टिकुलर से डर लगना, छिपकली से डर लगना, उस रूम में घुसना ही नहीं कि मैं छिपकली में हूँ, या फिर कई लोगों को बंद स्पेस से डर लगता है जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, कि वो लिफ्ट में नहीं जाएंगे, पहले ही 10 मंजिल चढ़ जाएंगे पैर, है ना, तो वो वाली एक क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं जिसमें, तो इस तरह के फोबिक एंग्जाइटी हो सकती है, या फिर एक पैनिक अटैक्स आते हैं कई लोगों को जिसमें कि स्पॉन्टेनियस एंग्जाइटी एपिसोड्स होते हैं, कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, गला सूखना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, और वो 15-20 मिनट तक रहेगा, फिर धीमे धीमे करके वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए कोई ट्रिगर नहीं है, अपने आप होगा अपने आप, और उस वक्त पे उस व्यक्ति को लगने लग जाता है कि मेरे को कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम आने लग गई है और मेरे को कहीं ना कहीं इमरजेंसी में दिखाना चाहिए, तो वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाके ईईजी को कार्डियोग्राफी कार्डियोलॉजिस्ट पे जाके करवाता रहेगा, लेकिन उसमें कुछ सारी जाँचें सामान्य निकलेंगी उसकी। तो ये पैनिक डिसऑर्डर भी एक बीमारी होती है जो लोग अक्सर कार्डियक इलनेस से मिसजज करते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस के पास जाते हैं। तीसरा एक होता है जो जनरलाइज एंग्जाइटी, कि पूरे दिन ही एंग्शियस रह रहा है कोई व्यक्ति, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन हो, उसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसकी वजह से उसके कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, क्योंकि हरदम मसल्स तनाव की कंडीशन में रहती हैं, तो ये एक कॉमन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर एक बहुत कॉमन जो हमको मिलता है वो OCD मिलता है, जो कि 100 में से 2 से 3 आदमियों को होता ही है। उसमें लोगों के विचार में ऐसा लगता है कि मैंने जो एक कार्य कर लिया, जैसे मैंने कहीं टच किया और मेरे को हाथ गंदा हो गया है और मैंने उसको एक बार धुल लिया है, तो उसके बाद भी उसके मन में ये विचार आता रहेगा कि मेरे अभी भी हाथ गंदा है, तो बार बार हाथ धुलना, लॉक लगा लिया तो अभी भी लॉक नहीं लगा है, ऐसे विचार बार बार, तो उसकी एंग्जाइटी कम करने के लिए उसको बार बार चेक करना पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसा विचार जो मेरे को लग रहा है कि भगवान को मैं गाली ना दे दूं, वो विचार बार बार आ रहे हैं और वो विचार अपनी मर्जी के बिना आ रहे हैं और डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, तो इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये भी बहुत कॉमनली मिलता है, बहुत लोग डिस्ट्रेस रहते हैं इसकी वजह से, और कई सालों के बाद वो ट्रीटमेंट पे आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति तो थोड़ा सफाई वाला ज़्यादा है, ठीक है क्या दिक्कत है थोड़ी सी, लेकिन वो धीमे धीमे करके वो सफाई इतनी बढ़ जाती है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता है, 3-4 घंटे पूरी सफाई व्यवस्था में ही लगी रहती है उन चीज़ों में। तो ये एक OCD भी एक कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है जो बहुत लोगों में मिलती है। तो ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स में मैंने कुछ लक्षण आपको बताए।
1: डॉक्टर साहब, चिकित्सा शास्त्र के पूरे सम्मान के साथ, आप जब ये एंजाइटी और ये स्ट्रेस के जो सिम्टम्स बता रहे हैं, धड़कन तेज़ हो जाना, घबराहट होना, पसीने आना, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे कई सारे फिल्मी गाने याद आने लगे कि ये लक्षण
0: जी। देखिए, एंजाइटी एक कॉमन फिनोमेना है हमारा, अपने दिमाग को और शरीर को बचाने का एक तरीका है। तो अगर मेरे को कोई शेर या सांप दिख रहा है तो मेरे को तैयार होना है मेरे शरीर को कि मैं उससे डेंजर से, इमीडिएट डेंजर से बच पाऊँ, कि मेरी दिल की धड़कन बढ़े, मैं स्फूर्ति रहूँ, मैं चौकन्ना हो जाऊँ, मेरी सांस गहरी चले तो मेरे को ऑक्सीजनेशन हो जाए, ताकि मैं तैयार हो पाऊँ, अगर वो हमला करे तो मैं निकल पाऊँ। तो एक फाइट एंड फ्लाइट का जो रिएक्शन होता है, इसमें कि एंग्जाइटी बढ़ती है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो होना चाहिए, लेकिन वो बिना ट्रिगर के ही अगर आने लग जाए, या ट्रिगर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि बंद कमरे में घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी को, लेकिन अब हो रही है उसको, तो वो घबराहट उसके काम काज में इफेक्ट डालने लग गई है, मतलब उसकी डिसेबिलिटीज आने लग गई हैं, उसकी वजह से वो कमरे में नहीं घुस रहा है, उसकी वजह से वो लिफ्ट में नहीं जा रहा है, वो पैदल चल के जाना, तो अगर वो डिसेबिलिटी कॉज लगने लग जाता है तो उसमें फिर अपने को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसको मदद की ज़रूरत है कि नहीं।
1: हिंदी कविता का जो ओरिजिन है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, वहाँ से उपजा होगा गान, तो उसके पास भी जरूर एक दर्द होगा जो उसको ट्रिगर करता होगा।
0: यस, तो अगर आप डिप्रेशन माने तो डिप्रेशन बहुत सालों से, जैसे कि पहली जो काउंसलिंग थी वो गीता में हुई है, कृष्ण ने अर्जुन को काउंसिल किया था कि जब उसने हथियार डाल दिया कि मैं अपने परिजनों से कैसे लड़ूं, तो वो भी उस टाइम पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा था उस सिचुएशन से, लेकिन कृष्ण जी ने कहा कि ये सब मैं करा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है, तो ही फील्ड रिलैक्स। ठीक है, वो काउंसलिंग या साइकोथेरेपी पहली वही थी जब राम घर छोड़ के गए, दशरथ जी को जो वियोग हुआ, उस तरह के जो लक्षण दिख रहे हैं वो प्रॉपर डिप्रेशन के लक्षण उन्होंने डिस्क्राइब किए। तो इस तरह की चीज़ें जो रही हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शंस हैं, पुराणों में लोगों को मिलते रहे हैं, लेकिन वो अनभिज्ञ रहे कि ये बीमारी का रूप हो सकता है, क्योंकि उनको लगता था कि हाँ एक सामान्य टेंशन है और ऐसा ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक होने के भी तरीके होते हैं कि अगर वो परेशानी दूर हो

0: हुई उसके बाद नॉर्मलाइज होना चाहिए था, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं होते हैं लोग। कई लोगों की डेथ अभी भी, जैसे परिवार में किसी की हुई है, कुछ हुई है, तो कई लोग उसको 13 दिन के जो मॉर्निंग पीरियड के बाद ठीक हो जाते हैं, कई लोग कई सालों तक उससे जुड़े रहते हैं। तो वो अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग व्यक्ति को मानसिक रोग आने के लक्षण अलग अलग होती हैं, रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं लोगों में।
1: आपने बहुत एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, अर्जुन की काउंसलिंग शायद पहली काउंसलिंग
0: साइकोलॉजिस्ट रहे होंगे
1: बिल्कुल। दूसरी बात, राम कथा में भी अगर दशरथ ने अपने प्राण त्यागे तो एक सुसाइड ही है,
0: वियोग था उनको।
1: जी उनको, उन्होंने उस हृदयाघात से और अन्न जल त्याग कर अपने शरीर को त्यागा।
0: मैंने आपको बताया ना, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती, तो ये सब लक्षण, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको एविडेंस मिलेंगे उस चीज में।
1: दृश्य जो भी मुझे दिखाई देता है अक्सर, मैं आप शेयर करना चाहूंगी अभी, कि एक कमरे में पूरी फैमिली बैठी हुई है। आज ये सामान्य हो गया है कि हर कोई अपने एक छोटा सा इक्विपमेंट लेके बैठा हुआ है और अपने आपस में नहीं बात कर रहे, लेकिन इमेजिन करिए जब हम बच्चे थे तो इस तरह का कोई दृश्य हमारी कल्पना में एक अबनॉर्मल लगता है, दुनिया के बाहर का ही एक दृश्य है। तो अब ये समय के साथ बहुत सारी अबनॉर्मल चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल होते चले जा रही हैं, और जाहिर सी बात है कि नॉर्मल चीज़ें अब अबनॉर्मल भी होते चली जा रही हैं।
0: देखिए सामाजिक परिवेश बहुत बदल रहा है,
1: तो ये मेंटल हेल्थ का बैलेंस वो व्यक्ति
0: श्योर उसका बहुत असर पड़ता है। जब आप सोशल आइसोलेशन की बात करते हैं ना, तो अगर आप कोविड टाइम देखेंगे तो जो सोशल आइसोलेशन कोविड टाइम में हुआ है वो हम वर्चुअली सोशली आइसोलेट होते जा रहे हैं। अगर आप देखा जाए इस तरीके से, अगर उस पर्सपेक्ट को देखेंगे तो हम, क्योंकि एक घर में रह के, एक कमरे में रह के भी हम अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं, और उसकी वजह से जो इमोशनल शेयरिंग थी वो कम होती जा रही है। एक मुख्य बात कि हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जो पहले जॉइंट फैमिली होता था जिसमें कि रोल शेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग भी बहुत होती थी, और कोई जो प्रॉब्लम होता था वो भी शेयर होते थे, तो उसकी वजह से जो एक व्यक्ति पे सोशल बर्डन्स आते थे वो उतना नहीं आते थे। उसका जो स्ट्रेस है वो अब न्यूक्लियर फैमिलीज में दिखने लग गया है, और प्लस फिर सोशल आइसोलेशन जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग रहने लग गए हैं, जिसमें कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स के नाम पे बहुत कम है जिनको हम अभी फ़ोन लगा के कभी भी उठा सकें कर पाएँ, अपनी शेयरिंग वाला जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, जो कि एक मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी सिस्टम होता था, क्योंकि हमें एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल्स हैं हम लोग, तो अगर हम सोशली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो ज़्यादा होगा इस कंडीशन में।
1: क्या कहा जा सकता है कि शेयर नहीं कर पाना एक मूलभूत कारणों में से एक है?
0: यस, देखिए मेंटल इलनेस किसको होगी, अगर मैं कहूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस व्यक्ति को हो सकती है, इसको नहीं हो सकती है, एक तो जेनेटिक कारण्स होते हैं कि एक बायोलॉजिकल लेवल पे कोई व्यक्ति वल्नरेबल है, जिसमें कि फैमिली में अगर किसी को मानसिक रोग रहा है पहले से, और जितने ज़्यादा लोगों को फैमिली में रहा है मानसिक रोग, उसके आगे वाली जनरेशन में आने के रिस्क फैक्टर या चांसेस ज़्यादा हों, तो बायोलॉजिकली हम उस चीज़ से प्रोन होते हैं। फिर हमारे शारीरिक बीमारियाँ जिसमें थायराइड, शुगर, जिन व्यक्तियों को हो रहा है उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ऐसे कई फिजिकल कारण्स भी होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल कारणों में से एक होता है। फिर आ जाता है अपना साइकोलॉजिकल कारण, जिसमें कि हमारे पर्सनालिटी कैसी है, हम किसी भी सिचुएशन में कोप कैसे कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें भी हमें मजबूत बनाती हैं मेंटल इलनेस से लड़ने के लिए। और तीसरा फैक्टर जो आप बात कर रहे हैं कि सोशल फैक्टर्स, जिसमें कि आपको सोशल सपोर्ट कितना है और सोशल अवरोध कितने हैं, है ना, वो दोनों ही फैक्टर्स आपको सोशल फैक्टर्स की तरह गिने जाते हैं। तो अगर एक मान के चलिए कि एक ब्रिज है जो कई तारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें बायोलॉजिकल तार हैं, कोई साइकोलॉजिकल तार हैं और सोशल तार हैं, तो ब्रिज जितने तार मजबूत होंगे वो ब्रिज बड़े से बड़े परेशानी को झेल जाएगा, जितने तार कमज़ोर होंगे, जैसे कि किसी को फैमिली हिस्ट्री साथ में रही है, उसका साइकोलॉजिकल कोपिंग स्ट्रैटेजी भी ख़राब है और साथ में सोशल सपोर्ट भी करा है, तो ब्रिज बहुत कमज़ोर है, तो छोटी से छोटी स्ट्रेस वाली घटना उनको मानसिक रोग की तरफ ले जाएगी।
1: हम डिजिटल युग की बात कर ही रहे हैं, हम यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आजकल हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स कोई इमोशनल, कोई भी हार्ट ब्रेक हुई है, एग्जाम खराब हुआ है, आप फेल कर गए हैं, तो सुसाइडल हो जाते हैं। ये लाइफ का पार्ट है, सबकी ही लाइफ में एक हार्ट ब्रेक होती है, कभी हम फेल करते हैं किसी एग्जाम में, लेकिन हर कोई तो सुसाइडल नहीं होता।
0: यस,
1: तो ये प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है, आप इसको लेके क्या कहना?
0: देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो एकेडमिक प्रेशर जो है वो हम लोग अनड्यू प्रेशर जो बच्चों में आ रहा है, हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेशर पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, रादर देन जो हम उसकी प्रोसेस की बात करते हों बच्चों के लिए, तुमने अच्छी पढ़ाई की है, भले ही मार्क्स कम आए हमें कोई इशू नहीं है, हमें रैंक और मार्क्स ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं रादर देन उसने कितनी नॉलेज गेन की है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम किसी भी व्यक्ति का IQ या उसने जो साल भर मेहनत की है उसको जज नहीं कर सकता है। तो वो जो संदेश है वो गलत जा रहा है बच्चों में कि हम जब मार्क्स लाएंगे तभी हम अच्छे हैं, रादर देन हमने अच्छी पढ़ाई की है तो हम अच्छे हैं। दूसरा बात, जब हम उसको सेल्फ अप्रेजल की बात करने लग जाते हैं कि हम इतना करेंगे तभी हम अच्छे हैं, तभी हम

0: अप्रेजल कि मैं इसको कितना महत्व दे रहा हूँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो बच्चे को एक दिन में आप ये चीज़ नहीं समझा सकते, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आपको हर बार बच्चे को यही समझाना चाहिए कि हम आपकी पढ़ाई से खुश हैं, आपने अच्छा किया है, हमें रिजल्ट से उतना इशू नहीं है। कभी भी रिजल्ट आपके मानक उसमें नहीं रहेगा कि आप इसकी वजह से ख़राब या अच्छे बच्चे होंगे। तो ये आपको हमेशा उन बच्चों को दिखाना चाहिए। कई बच्चे लेकिन डिप्रेशन की तरह भी होते हैं, जिनको डिप्रेशन के लक्षण जो मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में बताए हैं, वो लक्षण भी शो करने लग जाते हैं। बच्चों में थोड़े अलग लक्षण भी आते हैं, जिसमें कि वो सोशली विड्रॉन होने लग जाता है। बहुत छोटे बच्चे इस तरह से भी करने लग जाते हैं, माँ मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं लोग, इस तरह की बातें करने लग जाता है। या फिर वो ड्राइंग के माध्यम से कुछ दिखाने लग जाता है कि ज़मीन के अंदर कोई व्यक्ति है और कड़ा हुआ या जल रहा है, उस तरह के कुछ वो पिक्चर्स बनाने लग जाता है, जो कि हमें इंडिकेशन देता है कि बच्चा कुछ अलग सोच रहा है जो कि उसके लिए नॉर्मल सेल्फ में नहीं है। या फिर बहुत एग्रेसिव होने लग गया, जिद्दी होने लग गया है। तो ये कई बार बच्चों के चाइल्डहुड डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, जो हमको आइडेंटिफाई करने चाहिए। और हमने डिप्रेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाया टाइम से, तो हम उसके सुसाइड आइडियाज़ को आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो एक तो वो इम्पल्सिव हुआ कि रिजल्ट आया, उसने बिल्कुल एंड मान लिया और इम्पल्सिवली एक्ट किया। कई बच्चे डिप्रेशन में बहुत समय तक रहते हैं, उसके बाद एक्ट करते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना, उनको बचाना बहुत आसान रहता है, क्योंकि हमको ये रेड फ्लैग साइंस मिलने लग जाते हैं कि ये बच्चा कुछ अलग सोच रहा है, हम इसको कहीं दिखाएं, कहीं मदद लें इससे, तो उससे अच्छा हो जाता है। फिर आ जाता है आपके ब्रेकअप्स वाले पॉइंट, जो कि एडोलेसेंट्स में ज़्यादा होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में ज़्यादा होते हैं। तो अगेन वो उम्र ऐसी है जिसमें कि अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन बहुत कॉमन होता है, और क्योंकि आजकल ऐसा परिवेश नहीं रह गया कि हम बहुत कमिटेड रहते हैं चीज़ों में, हम कई बार सर्फिंग की तरह देखते हैं कि हम कई बार हम दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम बंधन में नहीं रहना चाहते कि हम ज़िंदगी भर ऐसे बंधन में रहें जिसमें हमें परेशानी रहे, और सामने वाला ज़्यादा ओवर कमिटेड हो सकता है, जो कि जिस वजह से वो डील करने में मुश्किल होती है जिसको, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को कई बार रिलेशनशिप इश्यूज वाले मिलते हैं, जिनको काउंसलिंग थेरेपी या कुछ अगर प्रॉपर डिप्रेशन के लक्षण हैं तो दवाइयों के माध्यम से उनको मदद दी जा सकती है।
1: तो जो युवा हमें सुन रहे हैं और जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनको हम एक संदेश तो अभी बीच में ही दे सकते हैं डॉक्टर साहब, कि एग्ज़ाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी तैयारी इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ कैसे रहें इम्पॉर्टेंट है, कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है आप अगली बार दे सकते हैं, आप पास कर सकते हैं, आपका रिश्ता टूटा है वो फिर से जुड़ सकता है, कुछ भी चीज़ अगर ख़राब हुई है तो वो फिर से बन सकती है, लेकिन अगर आपकी सांसें एक बार रुक गई हैं तो वो फिर नहीं आएंगी। ये रियलाइजेशन बहुत
0: उसका प्रकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है। घर वालों के लिए क्या बीतेगी, घर वालों का क्या रहेगा, उन फैमिली के लिए एक स्टिग्मा आ जाएगा कि इनके घर में सुसाइड हुआ है।
1: अंत में हम चाहेंगे कि जो श्रोता हमें सुन रहे हैं मेंटल हेल्थ पर, आप उन्हें कोई मैसेज दीजिए।
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि शारीरिक बाकी बीमारियाँ होती हैं, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, तो इन बीमारियों में जो चीज़ें रहती हैं वो उसी तरह से दिमाग भी शरीर का हिस्सा है। अगर वो बीमार, बाकी बीमारियाँ हो सकती हैं तो शरीर का दिमाग भी बीमार पड़ सकता है, और इसके लक्षण क्योंकि स्वभाव से, दिमाग स्वभाव से जुड़ा हुआ है, तो उस स्वभाव में परिवर्तन मिलेगा, और इस परिवर्तन को हमको अर्ली आइडेंटिफाई करना चाहिए। और हमेशा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना, अपने परेशानियों को डिस्कस करना अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, उसके सॉल्यूशंस पे लाना, ये बहुत ज़रूरी है। तब भी अगर हमें लगता है कि हम मानसिक परेशानी में फंसे हुए हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाएं नहीं, ये कोई स्टिग्मा नहीं है, लोग हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी काउंसलिंग के माध्यम से ठीक हो जाएं, या कुछ दवाइयों के माध्यम से आप ठीक हो जाएं, और इससे आप आगे की लाइफ कम स्ट्रेस और कम टेंशन पूर्ण बिता सकते हैं, और आपकी फंक्शनिंग अच्छी हो सकती है।
1: एक गीत आप सजेस्ट करिए जो आपकी पसंद का हम अपने श्रोताओं को सुनवा सके।
0: दिल चाहता है कभी ना बीते,
1: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मानसून ठहर गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां बन रही हैं। और फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नार्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव। साथ ही आप हमसे जुड़े हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। इस समय प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथियों, हम में से कई लोग इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि आने वाला हमारा भविष्य कैसा होगा। अपने भविष्य को लेकर हम सभी चिंतित होते हैं, तनाव में होते हैं, लेकिन क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो इससे कैसे हम दूर रहें? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखें। हर व्यक्ति बचपन से लेकर अपने उम्र तक, अंतिम पड़ाव तक इस बात को समझने की कोशिश करता है कि वो जीवन में किस तरह से अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाए, और यही हमारी बात का सार है। अपने जीवन को तनाव रहित करने के लिए जरूरी है जीवन में एक ध्येय का होना, एक उद्देश्य का होना, एक लक्ष्य का होना, और वो तभी हमारे जीवन में लागू होगा जब हम चाहेंगे। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को साधें। कहते हैं कि जिंदगी का सफर बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि हम अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को साथ रखें, तो ये सफर साथ साथ कुछ आसान हो जाता है। और ऐसे ही आसान होता है हमारा और आपका सफर अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर के जरिए। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपने तनाव को कम करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने ज्ञान के भंडार को अधिक से अधिक समृद्ध रखें। तनाव को कम करने का तो हमारे पास साधन है। अपने जीवन को, लक्ष्य को बनाए रखने के लिए हम आपकी हमेशा सहायता करते हैं अपने कार्यक्रम में नई जानकारियां देकर। तो कार्यक्रम के पहले पड़ाव पर हम आते हैं और आपके तनाव को कम करते हैं इस गीत के जरिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में श्रोता साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी मित्र अरुणा। श्रोता मित्रों, आज महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास नहीं आने दिया। उन्होंने पंजाब की बिखरी हुई सिख मिसलों को एकजुट किया। 1799 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद 12 अप्रैल 1801 को 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने महाराजा की उपाधि प्राप्त की। महाराजा रणजीत सिंह एक अत्यंत सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके दरबार में योग्यता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। उनका निधन आज ही के दिन लाहौर में हुआ। उनका साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। हमारी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित हैं।

श्रोता मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस है। हर साल ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन उद्योगों के आर्थिक योगदान को पहचानना और बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अप्रैल 2017 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन की शुरुआत की गई थी। दुनिया भर के कुल व्यवसायों में MSME का हिस्सा 90% से अधिक है और ये 50% से 70% तक रोजगार प्रदान करते हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इन उद्यमों का योगदान लगभग 50% है। ये उद्योग स्थानीय समुदाय की रीढ़ होते हैं, जो गरीबी उन्मूलन और लोगों की आजीविका को बनाए रखने में सबसे आगे रहते हैं। भारत जैसे देश में कृषि के बाद यह क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास और आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित करता है।

श्रोता मित्रों, आज हम सभी पीटी उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्मदिन मना रहे हैं।

भारत की सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक है पीटी उषा। 1964 में केरल के पय्योली में इनका जन्म हुआ था। उषा ने अपनी एथलेटिक करियर की शुरुआत 1979 में की थी और जल्दी ही वो राष्ट्रीय स्तर पर छा गई। उन्नीस के लॉस एंजल्स के ओलंपिक में वे 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में मात्र 100 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई थी। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में एशियाई खेलों और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कई स्वर्ण पदक शामिल हैं। पीटी उषा ने कुल 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं और उन्हें 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पीटी उषा को उनके योगदान के लिए भारतीय खेलों में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। इस समय भी कोचिंग और युवा एथलीटों को प्रशिक्षित करने में सक्रिय हैं, जिससे वे भारतीय एथलेटिक्स में नई प्रतिभाओं को निखार रही हैं।

श्रोता मित्रों, आज हेलेन केलर का जन्म जयंती हम सभी मना रहे हैं। हेलेन केलर एक अमेरिकी लेखिका, शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। बचपन में दृष्टि और श्रवण शक्ति खो देने के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दिव्यांग लोगों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। हेलेन केलर ने दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित लोगों के अधिकारों के लिए दुनिया में जागरूकता फैलाई। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और समान अवसरों की वकालत की, दिव्यांग लोगों को प्रेरित किया और अपनी पुस्तकों और भाषणों से संदेश दिया कि दृढ़ संकल्प और शिक्षा के बल पर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। हेलेन केलर का जन्म अमेरिका के टस्कम्बिया में हुआ था। 19 महीने की उम्र में एक गंभीर बीमारी के कारण उन्होंने अपनी दृष्टि और श्रवण शक्ति खो दी थी। परिवार ने हार नहीं मानी और उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करते रहे। 1887 में हेलेन ने अपने शिक्षिका एन सुलिवन की सहायता से पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने ब्रेल लिपि, स्पर्श से संचार और बोलने की तकनीक सीखी। रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली बधिर दृष्टिहीन व्यक्तियों में से एक हेलेन केलर बनी। श्रोता मित्रों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को आयोजित नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की और सभी 4 प्रश्न पत्र सेट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए हैं। अभ्यर्थी 28 जून रात 11:50 तक ऑनलाइन माध्यम से उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर चुनौती देने के लिए ₹200 शुल्क निर्धारित किया गया है, जो विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्ति सही पाए जाने पर पूरी तरह वापस कर दिया जाएगा। एनटीए ने बताया है कि इस बार परिणाम जल्दी ही जारी करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी होने से पहले ही आंसर की चैलेंज विंडो खोली गई है। सभी आपत्तियों की जांच विशेष विशेषज्ञ करेंगे। सही पाए जाने पर संशोधित फाइनल आंसर की के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा।

श्रोता साथियों, भारतीय कलाकार संघ ग्वालियर बेताल केन आर्ट्स ग्रुप और नगर निगम की ओर से 28 जून को कल सुबह 8 बजे से तानसेन कलावीथि में रंग कला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता होगी। जूनियर वर्ग में 5 से 12 वर्ष, ग्रुप बी में 13 से 17 वर्ष और सीनियर ग्रुप में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी भाग लेंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ग्रुप के संयोजक के अनुसार साथ ही विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

0: Rádio.
1: श्रोता मित्रों, भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल में ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका मिला है। कंपनी ने ओपन मार्केट जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की भर्ती निकाली है। इंटरनल और एक्सटर्नल सभी तरह के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग्स का प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी है, जिसकी अब अंतिम तिथि भी आने वाली है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बीएसएनएल इस भर्ती अभियान के जरिए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 100 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगा। सिलेक्शन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को शामिल किया गया है, इसलिए किसी तरह का अनुभव संबंधित योग्यता नहीं मांगी गई है। फ्रेशर अभ्यर्थी जिन्हें काम का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है वो भी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीकॉम ऑफिसर जूनियर पदों की संख्या 100, आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जुलाई 2026 है। आयु सीमा है 20 वर्ष से 30 वर्ष तक। लिखित प्रति परीक्षा में उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई, बीटेक या इसके समकक्ष डिग्री, साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र हैं। एमटेक कैंडिडेट्स भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। श्रोता मित्रों, बच्चों की कल्पनाओं को मंच पर आकार देने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। अब शहरवासी बाल कलाकारों के जरिए पंचतंत्र, अकबर बीरबल, तेनालीराम, विक्रम बेताल, परिकथाओं, लोकगाथाओं और लोकप्रिय कॉमिक कैरेक्टर चरित्रों पर आधारित नाटकों का आनंद ले सकेंगे। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय ने पिछले एक साल से बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। इसके तहत स्कूलों और स्लम क्षेत्रों में चयनित बच्चों को केवल अभिनय ही नहीं बल्कि प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की बारीकियां भी सिखाई गई हैं। अब ये बाल कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन मंच पर करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को रंगमंच से जोड़ने के साथ साथ भारतीय लोक कथाओं, नैतिक मूल्यों और रचनात्मक अभिव्यक्ति से परिचित कराना है। और बस श्रोता साथियों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अरुणा को दे अनुमति। नमस्कार।

सभी श्रोता सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम

में कलाकार हैं योगिनी तांबे, आप सुनेंगे राग अहिर भैरव में ध्रुपद गायन, पखावत संगत है जयंत गायकवाड़ की, लीजिए सुनिए।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में योगिनी तांबे का राग अहिर भैरव में ध्रुपद गायन, पखावत संगत थी जयंत गायकवाड़ की। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव, साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR से भी। सुबह के 10 बजने को हैं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी, आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गांवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता

यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगरमालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,47,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटरक्वेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ बीएस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्साखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ई केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना के आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने वृद्धजन के खान पान स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज का विषय है त्वचा की आम समस्याएं। आज के हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कमल भदौरिया, इनसे बात कर रही हैं तुलिका शर्मा।

0: सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम का एक नया अंक लेकर हम हाजिर हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोता साथियों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है त्वचा की देखभाल। इसमें हम त्वचा के रोगों के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही किस तरह से संपूर्ण रूप से त्वचा की देखभाल की जा सकती है इस पर भी बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कमल भदौरिया को। आप कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, त्वचा की संरचना और उसकी जो तमाम तरह के रोग होते हैं उस पर हम बात तो करेंगे, लेकिन जो हमारा समाज जिस तरह से बना हुआ है वो दिखने में कोई सुंदर हो, आकर्षक हो, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और इसी वजह से जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और साथ ही ब्यूटी

0: ब्यूटी पार्लर्स में भी बहुत तरह के स्किन ट्रीटमेंट होते हैं, किस किस तरह के मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, चूँकि आप बहुत नज़दीक से ऐसे लोगों को देखते हैं, सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
1: देखिए, स्किन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सौंदर्य को प्रभावित करती हैं
0: जी,
1: और जो वर्तमान समय में कॉस्मेटोलॉजी को लेकर बहुत अवेयरनेस है, नए नए जितनी थेरेपीज कॉस्मेटोलॉजी के लिए आ रही हैं, जितना प्रकार का शोध दुनिया में हो रहा है, शायद सबसे ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो जो सौंदर्य और जो हमारी एजिंग होती है, दो तरह की होती है, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक, जो हमको उम्र के साथ बढ़ते हुए जो हमारे त्वचा में परिवर्तन आते हैं उसको कैसे डिले किया जाए या रोका जाए, जो बाहा बुढ़ापा जिसको कहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा शोध चल रहा, नित्य नए जर्नल्स आते हैं, कुछ पार्ट का ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं पार्लर्स और कुछ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, पर बीइंग ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो पार्लर्स पे हम लोग जाते हैं उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए, उसमें जो हार्ड केमिकल होते हैं वो यूज किए जाते हैं, उसके कारण हम लोग नित्य नए चीज़ें फेस कर रहे हैं, हमारे पास TSFD के काफ़ी केस आते हैं।
0: TSFD क्या है डॉक्टर
1: जी? टॉपिकल स्टीरॉयड अब्यूज, थोड़ा सा गोरा दिखने की चाह होती है, जो कॉम्प्लेक्शन कलर का थोड़ा जिनका डार्क और डल रहता है, तो उनको जितने भी जो अनट्रेंड डॉक्टर्स हैं या पार्लर्स हैं ये लोग उनको स्टीरॉयड क्रीम्स बता देते हैं, उसके कारण जल्दी से शाइनिंग तो आती है पर त्वचा का जो हमारा जैविकी ढांचा है जो ऊपर जो उसको जीवंत रखता है, ग्लो देता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसमें जो हाइलुरोनिक बेस जेल होता है वो ख़त्म होने लगता है, जैसे उसमें 30 साल की बच्ची होगी, 25 साल की बच्ची होगी, वो 40 साल 45 साल प्री मेच्योर एजिंग जिसको कहते हैं वो दिखने लगता है। बल्कि हम लोग गवर्नमेंट OPD में देखते हैं लगभग 400 से 450 मरीज आते हैं, उनमें कम से कम 10-12% मरीज केवल जो हमारे द्वारा जो नीचे जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके कारण जो लोग दवाइयां लेके यूज करके आते हैं वो ज़्यादातर TSFD और दूसरे स्टीरॉयड एब्यूज केसेस होते हैं जो देखने में आते हैं, और सबसे ज़्यादा महिला वर्ग इससे प्रभावित है।
0: डॉक्टर साहब, जिस मेंटल ब्लॉक की बात मैं कर रही थी वो यही है कि गोरेपन की चाह जो है वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। बात त्वचा की हो रही थी, चेहरे की त्वचा की यदि हम बात करें तो चेहरे की त्वचा में किस तरह की समस्याएं बड़े होते बच्चे में हो सकती है और प्रदूषण की वजह से क्या नुकसान होता है?
1: जो टीनेजर्स होते हैं विशेषतः जो 10 से 16-17 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, इनमें हार्मोनल चेंजेज के कारण पिंपल्स, ब्लैक हेड्स जो देसी भाषा में जिसको कहते हैं, उसकी समस्याएं बहुत होती हैं, और प्रदूषण के कारण भी एक्नी की वृद्धि देखी गई है। तो इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम जो तेल तली चिकनी चीज़ें और जो बाहर बनी हुई चीज़ें और डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे ओवर कुछ लोग बॉडी और फिजिक बनाने के उस चक्कर में जो प्रोटीन्स लेते हैं, जो जिम की जो स्टीरॉयड बेस्ड होती हैं, उनके कारण भी स्टीरॉयड एब्यूज एक्नी, जो चेहरे पे आपने बड़ी बड़ी फुंसियाँ और बड़े बड़े सिस्ट देखी होंगी, वो उन्हीं सारी दवाइयों की देन है। तो इनसे हमें बचने के लिए एक तो संयमित आहार, नित्य व्यायाम और तेल तली चिकनी जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो कम खाना चाहिए, और व्यायाम, नींद पूरी अच्छे से करना, उसके बावजूद भी होता है तो जो नियरेस्ट अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट हो या शासकीय चिकित्सालय उस पे हम लोग दिखा सकते हैं।
0: इस पर हम और भी बात करेंगे विशेष तौर पर, क्योंकि ये जो युवा वर्ग है बहुत ज़्यादा प्रभावित है इससे, लेकिन कार्यक्रम की जो संरचना है, हम त्वचा की संरचना की बात तो कर रहे हैं लेकिन कार्यक्रम की संरचना में हमें गीत सुनना है, इस समय सेहत की बात है तरानों के साथ, तो डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे और ये किसके लिए सुनवाना चाहेंगे ये भी बताइएगा।
1: क्योंकि वैसे तो मुझे कोई संगीत में उतना ज्ञान नहीं है, रुचि तो प्रत्येक व्यक्ति को होती है, गुनगुनाता भी है
0: जी,
1: पर मेरी पत्नी को काफ़ी संगीत का ज्ञान भी है, अभ्यास भी है, तो ये जो भी गीत मैं बताऊंगा उसी की प्रेरणा से
0: है। अच्छा, उन्हीं के लिए है
1: जी, उन्हीं के लिए है
0: जी। बताएं कौन सा गीत?
1: तुझमें रब दिखता है।
0: अरे वाह, रब ने बना दी जोड़ी,
1: रब ने बना दी जोड़ी
0: जी। चलिए आपकी पत्नी के लिए आपकी तरफ से सुनवाते हैं ये गीत।

0: एक बार फिर स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कमल भदौरिया और हम त्वचा की देखभाल पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस गीत से पहले आपसे बात हो रही थी कि जो चेहरे की त्वचा है उसमें हमारे खान पान का और लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये भी मान्यता है कि पानी यदि ज़्यादा पिया जाएगा तो हमारी त्वचा सही रहेगी, अच्छी दिखेगी, चमकदार होगी। क्या ये एक मिथ है या इसका कोई वैज्ञानिक कारण है?
1: हमारी त्वचा का जो ग्लो और जो शाइनिंग है उसका सीधा संबंध पानी का, क्योंकि हमारे शरीर की जो संरचना है, जो सेल्स है और स्पेशली जो हमारी स्किन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होती है। जो ये इसकी सबसे ऊपर की अपर लेयर होती है स्टार्टम कॉर्नियम, इसमें 70% जो वाटर स्पंज का ही पैड होता है। पानी पीना और टुकड़ों टुकड़ों पीना, जैसे हम लोग क्या करते हैं 2-3 घंटे में इकट्ठा पानी पी लिया, तो कोशिश करनी चाहिए 1-2 घंटे में एक गिलास, हाफ गिलास, जितना आपकी इच्छा हो उतना बीच बीच में पीते रहना चाहिए। बहुत बड़ा अंतराल पानी के बीच में नहीं होना चाहिए। 70 साल की उम्र तक आपको अच्छी स्किन रखना है, जिसमें कम झुर्रियाँ हों और जिसमें सुस्की कम हो, जिसको हम लोग जीरोसिस कहते हैं। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो आपने कहा पानी पीने का है, तो उसके लिए हमको चाहिए कि

0: पानी हम हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी जितनी ज़रूरत है वो पीता रहे, बजाय एक साथ बहुत पीने के 1-2 घंटे के अंतराल पर हमको पीना चाहिए। अगर हम एकदम साथ में पानी पियेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में मात्रा में पियेंगे, तो वो उतनी जल्दी एक्सक्रीट कर जाएगा किडनी के माध्यम से, है ना, उससे आपकी स्किन को कोई लाभ नहीं होने वाला। जब हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो स्टमक से होते हुए पूरे चैनलाइज होते हुए स्किन में आता है, तो उसका लाभ हमारी स्किन को मिलता है।
1: नींद के पैटर्न का क्या असर पड़ता है त्वचा पर विशेष तौर पे, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो युवा वर्ग है उसका स्लीप पैटर्न गड़बड़ है, रात में ज्यादातर लोग जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो क्या इसका कोई फर्क है?
0: नींद के पैटर्न का त्वचा के लिए बहुत सीधा डायरेक्ट इसका संबंध है। अगर आपकी अच्छी नींद होगी तो चेहरे पे आपके अच्छा ग्लो होगा, जिनको अंडर आई सर्कल रहते हैं, जो लोग कम सोते हैं, बहुत लेट नाइट सोना और सुबह देर से जगना, उनको अधिकांश को जो अंडर आई सर्कल कहते हैं, जिसको पेरी ऑर्बिटल मेलेनोसिस हम लोग बोलते हैं साइंस की भाषा में, वो बहुत कॉमन होती है। तो इसीलिए हमारे जितने डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो इस बात को उसको काउंसिल करते हैं कि अच्छी नींद लेना, साउंड स्लीप की बात होती है और स्लीप हाइजीन की। स्लीप हाइजीन में हम लोग विशेषता है कि मोबाइल हमसे दूर रहना चाहिए, जैसे सोने का 10 बजे टाइम है तो कम से कम 1-2 घंटे पहले हमको मोबाइल से दूर हो जाना चाहिए। अच्छा जल पीना, टुकड़ों टुकड़ों में पीना, अच्छे से नींद लेना, ये स्किन के अधिकांश रोगों से मुक्ति पाने का एक सरल तरीका है।
1: त्वचा गोरी हो या काली, लेकिन यदि स्वस्थ और चमकदार होगी तो आप ऐसे ही आकर्षक लगेंगे। क्या इस त्वचा पर बढ़ते हुए प्रदूषण का कोई असर पड़ता है?
0: हमारे प्रदूषण में जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे स्किन पोर्स और ये हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऑब्स्ट्रक्ट होने से हमारी जो स्वेटिंग की प्रक्रिया वो भी बाधित होती है, और दूसरा हम दिन भर जो केमिकल रसायन वगैरह भी उत्सर्जन होते हैं फैक्ट्रीज और जो वाहन है प्रदूषण है, इनमें जो केमिकल होते हैं उससे हमारी स्किन को भी हानि पहुंचती है। इससे बचाव के लिए यही है कि हम अगर बड़े शहर में रहते हैं तो सुबह तो हम नहाते ही हैं, रात को सोने के पहले नहाना, और सुबह नहाने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर अपने आपकी त्वचा का जो प्रकार है, त्वचा भी कई प्रकार की होती है, तो उसके प्रकार के अनुरूप जो भी आपका स्किन स्पेशलिस्ट हो या डर्मेटोलॉजिस्ट हो उससे सलाह लेके मॉइस्चराइजर नित्य पूरे शरीर में लगाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, प्रदूषण के साथ साथ क्या यूवी रेज का भी कोई फर्क पड़ता है?
0: 11-1 बजे की जो हमारी धूप होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट्स इंफ्रारेड्स की होती है। ये जो साइंस मानता है कि हमारे बुढ़ापे के 2 कारण हैं, एक बाह्य कारक है, अंतः कारक है। बाह्य कारक जिसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में सबसे ज़्यादा बुढ़ापे का कारण है फोटोटॉक्सिटी, मतलब सनलाइट से हमारी स्किन डैमेज होती है।
1: अच्छा
0: जी, तो एक तो तरीका ये है कि 11-1 की धूप का जो डायरेक्ट हमारे ऊपर वो प्रभाव होता है उससे हम जितना बच सकते हैं, अच्छी सी शर्टिंग क्लोथिंग करना, छाते का प्रयोग कर सकते हैं, और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से जो शरीर के खुले हिस्से हैं उनके लिए अच्छा एक सनस्क्रीन, मौसम के हिसाब से सनस्क्रीन जो ओवर द काउंटर मिलते हैं वो भ्रामक ज़्यादा होते हैं, उनमें उसकी कंटेन और सिद्धता कम होती है, इसलिए आप का जो भी नियरेस्ट सरकारी अस्पताल हो या क्लिनिक हो उनसे संपर्क करके वो लेना चाहिए, और शरीर के खुले भागों को 11-1 की धूप में बचाव रखना चाहिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारी निश्चित रूप से, और अच्छा प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स और पानी जो आपने पहले ही डिस्कस किया, ये अगर हम प्रयोग करते हैं तो फोटो टॉक्सिटी से और फोटो डैमेज जो होता है उसको रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक और गीत सुनना चाहेंगे, बताइए कौन सा गीत, अपनी पसंद का है आपकी या आपकी
0: ये
1: पत्नी
0: भी
1: की?
0: मेरी पत्नी की पसंद का है।
1: चलिए, कम से कम कोई तो आपको गाने सुनाता है आपके जीवन में।
0: झुकी झुकी सी नजर,
1: आए हाय बेकरार है कि नहीं
0: जी।
1: ये जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल है, बहुत खूबसूरत, मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए सुनते हैं आपकी पत्नी की पसंद पर ये गजल।
2: झुक

0: सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ त्वचा की बीमारियों और उसकी देखभाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कमल भदौरिया। डॉक्टर साहब, हेयर फॉल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, लोगों में इतना हेयर फॉल है कि लड़कियों में भी गंजापन देखने में आ रहा है, इसका क्या कारण है?
1: उसका कारण सबसे बड़ा है स्ट्रेस, और दूसरा कारण है लाइफ स्टाइल, लेट नाइट तक जगना और फास्ट फूड का खाना। तो उसमें जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू और न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स हैं वो पूरे नहीं होते, वो एक कारण बनता है। दूसरा, लेट नाइट तक हम को जगना होता है, फिर कैरियर ओरिएंटेशन इतना है कि उसका स्ट्रेस है कि हमको ये कंपटीशन में भाग लेना है, वो लेना है, इसके कारण हेयर फॉल बहुत होता है। और हेयर फॉल बहुत होने से उनमें आत्मविश्वास की कमी आती है। जिन बच्चों में बाल बहुत कम होते हैं, जिन जैसे विशेषकर जो मेल चाइल्ड हैं उनमें अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो फ्रंटल का जो हेयर लॉस होता है उसको हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, उसके कारण अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है या दूसरी दिशा में काम कर रहा है, तो उस समय उसको आत्मविश्वास की कमी होती है। बहुत जीनियस होने के बाद भी वो पब्लिक अपीयरेंस से बचेगा बहुत सारी चीज़ों, तो इसलिए हेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बचाव के लिए तमाम तरह की जो स्किन रेमिडीज़ हैं वो उपलब्ध हैं। आजकल PRP करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी हम लोग करते हैं, और उससे पहले भी कुछ जो मेडिसिन होती हैं जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ले सकते हैं, उनसे हेयर फॉल से हम लोग बच सकते हैं। और चाहे मेल पैटर्न अलग हेयर लॉस होता है और फीमेल पैटर्न अलग होता है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कि किसी का पर्चा देख के हमने दवाई ले ली या किसी नीम हकीम से ले ली, तो उससे नहीं। आपकी बीमारी हेयर में कई तरह की बीमारियां होती हैं, न्यूट्रिशनल है कि जेनेटिक्स है या और कुछ है, और क्या टीलोजन एप्रियम विलियम है, जो हेयर में चार साइकिल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके कारण है। तो ये एक अपने आप में पूरा विषय है। तो वो सलाह करने के बाद अगर हम निश्चित मात्रा में दवाई 2 से 4 महीने लेते हैं तो उससे बचा जा सकता है और अच्छे हेयर हम एंजॉय कर सकते हैं। और हेयर का हमारे जीवन से सीधे आत्मविश्वास से हमारे कैरियर से जुड़ा प्रभाव है।
0: बाल जो झड़ते हैं क्या रीग्रो हो जाते हैं, नए बाल उस जगह पे उस हेयर फॉलिकल में आ जाते हैं, और कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि अब आपके नए बाल नहीं आएंगे, आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना होगा?
1: रीग्रोथ भी होती है काफ़ी, वो निर्भर करता है कि उसका कौन से प्रकार की डिसीज है। और जैसे एलोपेशिया एरिएटा बहुत कॉमनली लोग आते हैं पेशेंट, तो उसको थोड़ी बहुत दवाई में और या एक तो इंजेक्शन लोकलाइज, जो इसको हम लोग इंट्रालिजनल थेरेपी कहते हैं, उससे 2 से 3 सिटिंग में वो बाल आ जाते हैं। जो पैची हेयर लॉस होता है उसको हम लोग एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, और जो फ्रंटल लॉस है जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया,
0: आगे से बाल खत्म होने,
1: उसको भी दवाइयों के द्वारा रोका जा सकता है और काफ़ी हद तक दोबारा रीग्रो हो जाते हैं। अगर और बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है तो फिर PRP और मेडिसिन दोनों का सम्यक उपयोग अगर करते हैं हम, तो उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी नहीं है तो आजकल बहुत सफल तकनीकी है जिसको FUE कहते हैं, उससे ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, वो भी पूरा सेफ होता है।
0: डॉक्टर साहब, हेयर फॉल की बात हमने की, बालों की हेल्थ भी बहुत काउंट करती है, बाल चमकदार हों, बाल काले हों या ब्रिटल नहीं हो, टूटे नहीं बीच में से, स्प्लिट एंड्स नहीं हों, क्या जब हमारे सर पे बाल हैं तो भी बालों की हेल्थ के लिए हमें कुछ करना होता है?
1: कुदरत की बड़ी अच्छी नियामत है कि आपके पास अच्छे बाल हैं, पर वो अच्छे भविष्य में बने रहें उसके लिए खास चीज़ों की थोड़ी ज़रूरत होती है जो देखभाल करनी चाहिए। आजकल प्रदूषण की समस्या के कारण भी हमको रोज़ ओवर शैम्पूइंग करनी होती है, इससे भी हेयर डैमेज होते हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि रात में नाइट में ऑयल डालना चाहिए, जो भी आप ऑयल प्रेफर करते हैं वो रात को डालना चाहिए, वो भी सप्ताह में 2 या 3 बार, ऑल्टरनेट डे या वीकली ट्वाइस रात को डालना। सुबह एक कोई भी जो स्काल्प की pH होती है उसके अनुरूप अच्छा सॉफ्ट माइल्ड शैम्पू हो उससे बाल धोना चाहिए। तो जिससे क्या है, दिन में हमारे बाल जब ड्राई होंगे, कुछ लोग सरसों का तेल और ये लगाते हैं, उससे मॉइस्चर लॉक होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल है और हेयर रूट्स है, तो उसमें फंगल की भी संभावना होती है। इसलिए उससे बचने के लिए रात को हम तेल डालें, सप्ताह
0: दिन में तेल डाल के बाहर नहीं निकलना
1: नहीं निकलना चाहिए। जो पॉल्यूशन है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो उसमें मॉइस्चर लॉक होता है, जिसके कारण तमाम प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेज हैं, जैसे सेवरिक डर्मेटाइटिस, सिक्का और भी अन्य बीमारियाँ हैं, वो हेयर में पनपती हैं, उसके कारण भी फिर हेयर फॉल होता है। इसलिए एक अच्छा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श लेके एक अच्छा तेल और एक अच्छा शैम्पू, जो सप्ताह में दो बार, या बहुत ज़्यादा आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें गंदे हो गए हैं या गंदे हो जाते हैं, तो हमको एक दिन छोड़ के शैम्पू करना चाहिए। रोज भी शैम्पू करने की आवश्यकता नहीं होती। ये भी देखभाल अगर इस प्रकार करते हैं तो आपके हेयर्स अच्छे रहेंगे। दूसरा, आपके खान पान में स्पेशली जो आपका वो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, उसमें स्प्राउट होना चाहिए और भी जो फ्रूट्स हैं, अगर इनका हम नित्य वो लेते हैं तो हमारे हेयर्स ताउम्र जीवन तक अच्छे रह सकते हैं।
0: सर्जरीज का बड़ा महत्व है त्वचा के क्षेत्र में। नाक की सर्जरी, होठों की सर्जरी, ये बहुत कॉमन हो गई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप?
1: देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी जिसको एस्थेटिक सर्जरी कहते हैं, ये फील्ड कुछ ही समय में बहुत ऊपर आया है। और जो आप फेस में लिप ऑगमेंटेशन, नोज ऑगमेंटेशन, बहुत सारी प्रकार की डर्मेटो सर्जरी की बात कर रहे हैं, ये अभी मेट्रोज में इसका प्रचलन है, पर ग्वालियर जैसे शहरों में भी लोग इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। जिनको कोई स्थायी परेशानी है, जिनके ओंठ या तो ब्लैक हैं या उनकी बनावट ऐसी है जिससे उनके जो फेशियल अपीयरेंस पर प्रतिकूल असर पड़ता है, तो उसके लिए किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट कम एस्थेटिक सर्जन से हम बात करके लिप ऑगमेंटेशन, जिसमें बोटोक्स और भी तमाम तरह की थेरेपीज होती हैं और उससे जुड़ी तमाम प्रोसीजर होते हैं, हाइड्रा होते हैं, मिलानो, इनकी सहायता से हम अपने फेस को रिजुमिनेट कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म, उसको बगैर नुकसान पहुंचाए हुए। तो ये निश्चित रूप से, पहले ये दूर की कौड़ी होती थी जब विदेशों में US और UK में इस प्रकार की चीज़ होती थी, पर भारत में भी इससे कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत तेज़ी से प्रचलन बढ़ा है।
0: हमारे ग्वालियर में भी ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं?
1: हाँ, कुछ सेंटर्स हैं जो 2-4-6 अच्छे सेंटर्स हैं, उन पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हम उनके माध्यम से अगर ज़रूरी है, इंडिकेशन है, आप उनसे सलाह प्राप्त करके उसको करवा सकते हैं।
0: त्वचा पर मस्सों की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, पूरे शरीर में भी मस्से होते हैं, इसकी वजह से लोगों को परेशानियाँ भी होती हैं, इनका क्या कारण है और कैसे रिमूवल किया जाता है? क्या ये परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं? ये सारी चीज़ें एक साथ बताइएगा डॉक्टर
1: जी। मस्से कई तरह के होते हैं, 2 से 3 तरह के। एक तो गर्दन के आसपास हम देखते हैं सॉफ्ट टिश्यू के जो छोटे छोटे पेडंकल लाइक स्ट्रक्चर लटकती होगी, छोटे छोटे मांस के लोथड़े, उसको हम लोग एक्रोकॉर्डन्स कहते हैं। इनका रिमूवल परमानेंट होता है। ये कभी कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ संकेत करते हैं, तो हमको डायबिटीज और चीज़ों की तरफ ध्यान, अगर वेट ज़्यादा है और डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक स्टेज में जा रहे हैं, तब ये हो सकते हैं। अच्छा। फिर भी कुछ ऐसी अवस्थाएं भी हैं जिनमें भले ही डायबिटीज नहीं हो पर साइलेंट कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उसमें भी हो सकते हैं। और कुछ नहीं है तब भी कुछ 10-15% मरीजों में होते हैं। तो इनका कुछ दवाइयों, लोशन के द्वारा, और दूसरा इलेक्ट्रिक कॉटरी जो हर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होती है, बहुत बेसिक डर्मेटो सर्जरी का प्रोसीजर है, उससे उसको रिमूव कर सकते हैं स्थायी रूप से। वो विशेषकर हमारे आर्मपिट और नेक के आसपास होते हैं। दूसरे मस्से होते हैं जिनको हम लोग वार्ट्स बोलते हैं, हाथों में भी होते हैं, ग्रोइन एरिया में और बियर्ड एरिया में, दाढ़ी वाले क्षेत्र में, तो ये वायरल होते हैं। इनसे सावधानी रखने की जरूरत होती है। ये छोटे बच्चे अपने दूसरे कलीग या पार्टनर से वो टच ना हो। कई बार बार बार के यहाँ हम असुरक्षित जब हम सेविंग कराते हैं उस दौरान भी ये मस्से हमारे मुंह पर ट्रांसफर हो सकते हैं,
0: वायरल होते हैं
1: ये वायरल होते हैं। जो आपने देखा होगा जो डर्टी प्रेजेंटेशन रहता है ब्लैकिश टाइप के और एलिवेटेड होते हैं ये, खासकर जैसे एक होते हैं फ्रैकल्स जो स्किन के लेवल पर होंगे वो एलिवेटेड नहीं होंगे, पर ये जो वार्ट्स की पहचान है वो डर्टी होगी, कॉलीफ्लावर लाइक मल्टीपल जो उसमें
0: उभरे और दानेदार होंगे
1: एग्जैक्टली तो ये सामान्य तरीका है पहचाने। तो इसको कुछ लोग फुटपाथ पे जो मस्से हटाने वाले होते हैं उनसे भी हटवाते हैं, इसमें सावधानी बरतना चाहिए। वो कुछ ऐसे हार्ड केमिकल से उसको जला देते हैं तो वो संभव नहीं, वो फिर और बढ़ता है धीरे धीरे आगे और स्किन में जा सकता है।
0: अच्छा।
1: इसलिए उचित सलाह लेने के बाद इसमें कुछ खाने की मतलब सिस्टमिक ड्रग एक दो दवाइयाँ दी जाती हैं, जिंक सप्लीमेंटेशन और साथ में लगाने की दवाइयाँ, उनकी सहायता से ये हटाए जा सकते हैं। साथ ही इनके लिए भी क्रायो सर्जरी नाइट्रो गैस से डिस्ट्रक्शन करते हैं, -40 डिग्री जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास क्रायो एपरेटस रहते हैं उसके द्वारा भी, या इलेक्ट्रिक कॉटरी जो मैंने पूर्व बताया इनसे परमानेंट रिमूवल किया जा सकता है। अब तीसरे जो इनको फ्रैकल्स काले तिल जैसे होते हैं वैसे ये
0: चिकने होते हैं
1: तो वो जिनको ज़्यादा उनकी स्किन सेंसिटिव होती है और एक्सपोज्ड एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ सनलाइट पड़ती है, तो उसके लिए जो FDA अप्रूव्ड ड्रग हैं कुछ ऑफ लेवल्स ड्रग हैं उनका यूज करके जैसे अच्छी सनस्क्रीन लगाने से वो रुकते हैं, साथ में कुछ दवाइयां हैं ट्रेनिमिक्स एसिड वगैरह लगाने की क्रीम ऑइंटमेंट्स और जो टॉपिकल डिलीवरी व्हीकल्स हैं उनके सहायता से उनसे बचा जा सकता है, कम किया जा सकता है, उनको फेड करके धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब मस्सों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक और गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाइए, और निश्चित तौर पर चूंकि दो गीत आपने अपनी पत्नी के लिए सुनवाए हैं
1: ये तो भी उसी के लिए
0: बताएं कौन
1: मोरा पिया मुँह से बोलत नहीं,
0: तो क्या आजकल आप लोगों की बातचीत बंद है क्या?
1: नहीं, हमारी हमेशा चालू रहती है।
0: फिल्म राजनीति का ये गीत है, सुनते हैं, बहुत खूबसूरत और शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये गीत है। आइए डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सेहत की बात तरानों के साथ इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। त्वचा की समस्याएं और उसकी देखभाल के बारे में हम डॉक्टर कमल भदौरिया से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अपनी त्वचा पर मौजूद दाग धब्बों से परेशान होते हैं। कभी ये दाग धब्बे गहरे रंग के होते हैं, त्वचा से गहरे रंग के, और कभी त्वचा से हल्के रंग के। क्या हैं ये, कैसे पहचाने और किस तरह से इनका इलाज हो?
1: ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिगमेंटेशन, जो त्वचा का कलर है, हर एथनिक्स में, हर क्लाइमेट में, हर देश में, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है। जो हमारे देशवासी हैं उनका कलर का प्रकार और अमेरिका के जो मनुष्य हैं उनके कलर का प्रकार अलग होता है। तो अगर वो जब हमारी मेलानोसाइट सेल्स होती हैं, जब पिगमेंटेशन, जो पिगमेंट बनाती हैं, जो हमारे कलर को मेंटेन करती हैं, अगर वो ओवर प्रोडक्ट करते हैं, तो जैसे चेहरे पे किया, तो वो उसको मेलास्मा बोलते हैं, जिनको हम लोग गांव की भाषा में झाइयाँ बोलते हैं। तो झाइयों की समस्या बहुत कॉमन है, विशेषकर ग्रामीण, इवन शहर की जनसंख्या में भी, विशेषकर फीमेल्स में ज़्यादा होती है। पुरुषों में भी पाया जाता है, पर महिलाओं में इसका प्रतिशत ज़्यादा है। दूसरा होता है कि जब हमारा मेलानोसाइट सेल्स हैं वो उनमें डिस्ट्रक्शन होने लगे, या मेलानोसाइट्स अपना पिगमेंट बनाना कम कर दें, जिसको हम विटिलिगो बोलते हैं, सफ़ेद दाग कहते हैं। तो दोनों में पहचान ऐसे हो सकती है, जब हमारी स्किन कलर से डल स्किन कलर और वाइट पेचेज दिखें तो वो विटिलिगो की तरफ या प्री विटिलिगो। पर इसमें कुछ एक दो कंडीशन बच्चों में ऐसी होती हैं जो विटिलिगो से मिमिक करती हैं पर विटिलिगो नहीं होती हैं, तो वो अपन डर्मेटोलॉजिस्ट के सहायता से समझ सकते हैं। उनमें घबराने की जरूरत नहीं। बच्चों को कई बार चेहरे पे पीएलवा नाम की बीमारी होती है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखते हैं, तो माता पिता घबरा जाते हैं, अरे इसको तो ये हो गया। अगर फिर हम किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो एक दो महीने की दवाई से वो ठीक हो सकते हैं। थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और टॉपिकल जो क्रीम्स वगैरह होती हैं वो देने के बाद।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि विटिलिगो जो है, सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं, इसको लेके समाज में बहुत बड़ा टैबू है। आपने कहा ना, अरे इसको ये हो गया, तो ये जो भावना है, इसको कुछ डॉक्टर की निगाह से बताइएगा, क्या ये बीमारी छूत की बीमारी है, एक से दूसरे में फैलती है, या अनुवांशिक है?
1: बिल्कुल सही पूछा आपने, ये बिल्कुल किसी में नहीं फैलती ये बीमारी, न छुआछूत की है न बीमारी है, बस वहाँ पिगमेंटेशन होना बंद हो गया टेम्परेली। ज़्यादातर विटिलिगो थोड़ी सी दवाई में ठीक हो सकता है, अगर समय रहते हम झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं, इधर उधर समय व्यर्थ करते हैं, बहुत लंबा समय है। हमारे पास जितने मरीज आते हैं विटिलिगो के, वो एक दो साल इधर उधर झाड़ फूंक में रहते हैं। जितनी अर्ली स्टेज में आ जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना होती है, बहुत बड़े प्रतिशत में ठीक होते हैं, स्पेशली चेहरे या वहाँ के जो सफ़ेद दाग हैं बहुत जल्दी ठीक होते हैं।
0: खुले
1: एरिया के, जो जॉइंट्स और बोनीज एरिया के हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है, पर वो उसके लिए भी कई विकल्प हैं, पहले दवाइयों के द्वारा कुछ

0: फोटो थेरेपीज़ हैं, फिर आजकल सर्जरीज भी अच्छी होने लगी हैं, तो इसलिए विटिलिगो एक तरह का कलर है जो सोशल स्टिग्मा हमारे समाज में बना रखा है, बल्कि वो कोई बीमारी नहीं है, ना छुआछूत की है, ना फैलती है, वही हमारे आपकी तरह सामान्य रूप से वो एक कलर है, वहाँ की लोकलाइज सेल्स वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसलिए विटिलिगो के मरीज के प्रति न सहानुभूति की जरूरत है, उसको समान दृष्टि से देखने की जरूरत है,
1: कोई भेदभाव नहीं,
0: वो सामान्य ईश्वर के बनाए हुए कलर हैं, और वो भी आजकल उनका इलाज संभव है।
1: डॉक्टर साहब, झाइयों के बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: जी, झाइयों के बारे में विशेषकर महिलाओं में मातृशक्ति में बहुत ज़्यादा इसका वो पाया जाता है, तो इसमें भी धूप से बचाव, जो मैंने पूर्व में हमारी आपकी बातचीत में निकल के आया कि धूप के कारण सबसे ज़्यादा 11 से 1 की धूप, और जो विशेषकर बाहर काम करती हैं या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद, जिसको हम कोलेस्मा कहते हैं, हार्मोन बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं जिसके कारण चेहरे पर झाइयाँ आती हैं, तो वो झाइयाँ और ये मेलास्मा की, ये दोनों हम किसी उचित डर्मेटोलॉजिस्ट से अगर सलाह लेते हैं तो थोड़ी सी मेडिसिन में 3 से 4 महीने में ठीक हो जाती है, और उसके लिए ज़रूरी है जब तक इलाज नहीं ले रहे तब तक कम से कम उसकी धूप, उसकी बचाव रखें धूप से। दूसरा, किसी भी नीम हकीम के द्वारा दी गई क्रीम जिनमें विशेषकर पेंड्रम, क्लोविटामिन, ये प्रचलन है, ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, गांव-गांव में ओवर दी काउंटर ये दवाइयाँ मिलती हैं, इसके कारण सबसे ज़्यादा समाज और ये वर्ग समस्या झेल रहा है, तो ये दवाइयाँ हमको कभी भी कोई बताए तो नहीं लगाना है, हम उचित, अगर हमारे पास आर्थिक रूप से वो हैं तो हम अपने शासकीय अस्पताल में जाके शासकीय चिकित्सक से बात करके उसका निदान कर सकते हैं।
1: क्या किसी तरह का हार्मोन इम्बैलेंस इस तरह की झाइयों को बढ़ाता या घटाता है?
0: बिल्कुल, हार्मोन इम्बैलेंस से और जो हमारी मासिक क्रिया रहती है उसके अनियंत्रित और रेगुलर अनियमित होने से भी इसका संबंध सीधा मेलास्मा और झाइयों से है, तो उसके लिए फिर वही साइकिल शुरू होता है कि एक तो रात की नींद पर्याप्त लेना, अच्छा खान पान करना, और अगर आपके पास फेस वॉश ओवर दी काउंटर अच्छा नहीं है तो सिर्फ सिंपल पानी से बार बार त्वचा को धोना, दिन में 3 से 4 बार धोना, उसको रब नहीं करना, ना टॉवल से उसको पोंछना, पानी को चेहरे में एब्जॉर्ब होने देना, तो आप देखेंगे धीरे धीरे 2-3 महीने में आपके चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा और मेलास्मा भी कम होने लगेगा। हमारे शरीर में ही जो अल्ट्रावायलेट रेज को स्कैटर करने की व्यवस्था होती है, जब हमारे चेहरे पे विशेषकर जो सन एक्सपोज्ड एरिया चीक्स और ये जो सेबोरिक एरियाज बोलते हैं हम लोग, उस पे जब सन रेज पड़ती है और हम अगर पानी पर्याप्त मात्रा में 1-2 घंटे में पी रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उसमें ये कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि वो 70-80% जो अल्ट्रावायलेट से होने वाले हानिकारक प्रभाव को वो रोक देती है। फिर भी अगर होती है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट की सहायता से थोड़ी सी दवाई लेके उसको ठीक कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, त्वचा की बहुत सारी समस्याओं पर हमने आपसे बात की, हमारे कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, जितनी जानकारियाँ आपने दी हैं हमारे श्रोता इससे लाभान्वित हुए हैं, उन सब की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज का विषय था त्वचा की आम समस्याएं। डॉक्टर कमल भदौरिया से बातचीत कर रही थी तुलिका शर्मा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोता मित्रों, आज प्रसिद्ध पार्श्व गायक नितिन मुकेश भी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। आइए उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं उनके गाए कुछ गीतों के जरिए। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म खुदगर्ज का गीत, इंदिवर का लिखा हुआ और राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में।

और लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म तेजाब का गीत। नितिन मुकेश के साथ इस गीत को स्वर दे रही हैं अलका याग्निक और शब्बीर कुमार। बोल है जावेद अख्तर के, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म तेजाब के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से।

राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में सेवा शुरू की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में एशिया हाउस और प्रमुख वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और भविष्य में अवसरों की खोज पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा बल 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले गहन गश्ती और तलाशी अभियान चला रहे हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 3 जून तक चलेगी और मौसम केंद्र के अनुसार आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति अनुजा रघुवंशी की है।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। मैं हूं आपके साथ अनुजा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम बात करते हैं आपसे किसी विषय पर और सुनाते हैं फिर आपको प्यारे प्यारे गीत। तो आज का हमारा विषय है, आप जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं, तमाम परेशानियों परिस्थितियों के बाद हताश होकर किस तरह दोबारा जिंदगी में एक जिंदगी से लड़ने के लिए दोबारा खड़े हो जाते हैं, खुद को इंस्पायर कैसे करते हैं, अभिप्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, तो किस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं हमें बताइए फोन करके। फोन नंबर तो आप जानते ही हैं हमारा 07552660902। तो जल्दी से हमें फोन कीजिए, तब तक आपको हम सुनाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं अपूर्वा बोल रही हूँ, अपूर्वा रघुवंशी।
0: जी, तो अपूर्वा जी, आप क्या करती हैं अपनी ज़िंदगी में खुद को वापस मोटिवेट करने के लिए? अगर हार जाते हैं तो फिर कैसे संभल के वापस खड़ी होती हैं ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए?
1: ऐसा अक्सर होता है जीवन में कि हम बहुत थक जाते हैं और फिर लगता है कि कोई फायदा नहीं है ये सब मेहनत करने का, सब ऐसे ही चलेगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे मेरे नानी की कही हुई एक बात याद आती है
0: जी।
1: कि जिंदगी सबकी कटती है, कभी समय अच्छा कटता है, कभी बुरा कटता है, लाइफ में सब कुछ बैलेंस में रहता है।
0: जी
1: तो हमें ज्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए, बस आज क्या करना है, कल क्या करना है, इसके आगे नहीं सोचना है और बस अपना कर्म करते जाना है।
0: बिल्कुल, क्या बात है। तो हम चाहते हैं हमारे जो श्रोता हैं वो सारी जो आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल उनको अपनी ज़िंदगी में उतारें और इसी तरह से अपनी लाइफ को जिएं। और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे।
0: अच्छा, चलिए तो अब आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते
1: हाँ
0: मैडम
1: जी
0: जी।
1: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी? जी
0: हाँ जी गुलबालक से बोल रहा हूँ, विक्रम मालवीय। हम
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। तो
0: जी
1: आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट कैसे होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है, आप ऐसा क्या करते हैं या फिर किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि वापस आप हताश होकर दोबारा हिम्मत से ज़िंदगी के लिए खड़े हो जाते हैं?
0: ये तो हिम्मत रखना पड़ती है ना मैडम जी।
1: तो वही हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है ये जानना चाहते हैं
0: अपने
1: हम।
0: आप पर विश्वास होना चाहिए।
1: बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आत्मविश्वास होना ज़रूरी है।
0: हाँ
1: इसके
0: जी
1: अलावा
0: मैडम
1: और
0: जी।
1: ऐसा क्या करते हैं आप जिससे आपको खुशी होती है? जैसे मैं आज दुखी हूँ तो मैंने कुछ अच्छा गाना सुन लिया, या फिर मैंने कुछ अच्छा खा लिया, या फिर बच्चों के साथ खेल लिया, या दोस्तों से बात कर ली, तो आप ऐसा क्या करते हैं?
0: ये अपने मित्र या दोस्त है उनको अपनी बात जो है वो शेयर कर दो तो मन हल्का हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो आप ये करते हैं अपनी ज़िंदगी में एक दोबारा जो है कम बैक करने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हम ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सिद्धार्थ जैन से बात हो रही है मैम।
0: जी सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। तो अपनी जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं आप, कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं?
1: जैसे कभी कभार, जैसे मैं कभी कुछ परेशान हो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन हो।
0: जी
1: जैसे कि कुछ मूवीज हो गई जिसको अपन देख के अपने अंदर प्रोत्साहन जगता है।
0: हाँ जी
1: आज सुबह

0: से मैं एक मूवी देख रहा था, ग्राम पंचायत 2 जो पार्ट सीजन आया है,
1: हाँ जी
0: तो उसमें वही बता रहे हैं कि आप अपनी परिस्थितियों पे कैसे काबू करके अपना काम कर सकते हैं। तो इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: परिस्थितियां जो भी है, लेकिन काम आपको उसी परिस्थितियों में रहकर कैसे अपना आउटपुट बेस्ट देना है, वो चीज अपन उससे सीखते हैं।
1: हाँ जी, तो बिल्कुल हमें आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आप मूवीज़ के थ्रू जो है इंस्पायर हो सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। जी, आपने हमें फ़ोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई सिद्धार्थ जी। तो अब आपको सुनाते हैं बड़ा ही प्यारा सा ये मोटिवेशनल सॉन्ग।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: सुप्रिया सिंह से।
0: जी सुप्रिया जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
0: तो आप
1: आप
0: अपनी ज़िंदगी
1: बताइए
0: में
1: आप।
0: कमबैक करने के लिए क्या करती हैं? खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करके कैसे रखती हैं?
1: बहुत सारे, कई बार तो हमारी जीवन पूजा पाठ तो हमेशा ही चलती रहती है,
0: हाँ जी
1: और कई बार अपने बच्चों को देखकर ही बहुत खुशी होती है, तो लगता है कि हम भी इनके जैसे बने, थोड़ा
0: हाँ
1: सा
0: जी
1: हमारे अंदर भी फूर्ति आए, थोड़ा सा हम भी कुछ करें, कुछ नया करें। आसपास के लोग भी कई बार इंस्पायरिंग होते हैं,
0: हाँ जी
1: और भी ढेर सारी चीजें आती हैं।
0: जी बिल्कुल। और आपने जैसे बच्चों की बात करी, तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा हम इंस्पायर करते हैं, है ना? जैसे बच्चे, आप देखते हैं कि बच्चे रोते हैं, गिर जाते हैं, फिर वापस थोड़ी देर में हम उन्हें हंसते हुए देखते
1: हाँ, वो
0: हैं।
1: उसको डांस का बहुत शौक है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: कई बार वो गानों जो उसके गीत होते हैं डांस वाले, उनको कई बार वो रिपीट करती है, फिर डांस करती है, फिर करती है, फिर कहती है मम्मा ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो कई बार हमने आपको इन सारी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, उसने कितनी बार कोशिश की और आखिर में सीख कर ही मानी है ना। तो
0: बिल्कुल,
1: बच्चे
0: हाँ
1: भी कई
0: जी
1: बार हमारे लिए इंस्पायरिंग होते हैं।
0: बिल्कुल। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आपकी ये बात हमारे और श्रोताओं तक पहुँचे, जो अभी उदास महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें एक मोटिवेशन और इंस्पायर जो है आप उन्हें ज़रूर
1: जी
0: करेंगी।
1: जी कई बार क्या होता है कि हम कभी बाहर नहीं जा पाते, या बहुत सारा हमें खुद इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे आसपास ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। हमारे बच्चे हुए, हमारे कई बार बुजुर्ग भी हमको कई बार ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है
0: हाँ
1: ना।
0: जी
1: हमारे हस्बैंड भी वो बेचारे लगे रहते हैं पूरे समय काम करते, या है ना, या कुछ बहुत टिपिकल ऐसी पोजीशन आ जाती है तो भी वो बेचारे लगे रहते। तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है ऐसा आसपास में सीखने के लिए।
0: तो चलिए, आपने हमें फोन लगाया, हमें बड़ी खुशी हुई, और अब हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा मोटिवेशनल एक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार। राजस्थान
0: हाँ जी, नमस्ते जी।
1: कोटा
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: से। बस बढ़िया है, आप बताओ, आप कैसे। भूपेंद्र
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आपका नाम एक बार हमें बता दीजिए।
1: कुमार गुप्ता।
0: जी भूपेन जी, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे में।
1: जी
0: आप
1: बताओ ना आप।
0: खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, अभी प्रेरित कैसे करते हैं, जिंदगी में प्रेरणा कैसे लाते हैं?
1: जिंदगी में प्रेरणा तो प्रकृति से ही है सब कुछ।
0: जैसे आप कभी हताश होते हैं, उदास हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं जिससे आप वापस खुश हो जाते हैं और जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ते हैं?
1: संगीत का सहारा लो अगर उदास होते हो।

0: जी जी बिल्कुल,
1: संगीत सुनाओ अपनों के साथ, बैठ के बातें करो।
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अपनों से बात करें, संगीत सुने के। हाँ जी,
1: पुराने दोस्तों को याद करो।
0: जी बिल्कुल, पुराने दोस्तों को, पुराने पलों को
1: देखा जाए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: कैसी भी परिस्थिति हो उसका मुकाबला करना चाहिए।
0: बिल्कुल, कैसी भी परिस्थिति हो उसका डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए, और उसका तरीका ही है ये चंद खुशियाँ। हाँ जी,
1: परेशानियाँ तो,
0: जी जी,
1: अगर परेशानी नहीं हो तो जिंदगी क्या है।
0: बहुत, ये भी बिल्कुल सही बात है।
1: करो तो खुशी खुशी है।
0: जी जी,
1: मानो तो खुशी है, नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बातें हुई आपसे। अब आपको हम सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी। किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरी करिश्मा चौकसे से बात हो रही है।
0: अच्छा, मेरी आपसे बात हो रही है।
1: आपकी करिश्मा चौकसे से बात हो
0: जी
1: रही है।
0: करिश्मा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और करिश्मा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, भोपाल से ही बात कर रही हैं। चलिए,
1: हाँ
0: तो मैं आज, जैसा कि आप जानती हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, कि आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए।
1: मैम, मैं खुद प्रेरित ऐसे करती हूँ कि अपने आसपास के एटमोसफियर को मतलब एक खुशहाल बना के और
0: जी
1: हमेशा खुशियां ढूंढ ढूंढ के अपने आप को मोटिवेटेड करती
0: जी क्या बात है! मुझे तो आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बड़ी हंसमुख हैं। जिंदगी में
1: हूँ।
0: परेशानियां
1: हाँ
0: होंगी पर चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है आपके। सही है क्या?
1: मैम, परेशानियां तो जिंदगी में बनी रहती हैं, बट आगे जिंदगी जीने के लिए खुशहाल तो रहना ही पड़ेगा ना। यदि
0: बिल्कुल
1: अपन खुशहाल रहेंगे तो ऑलरेडी खुशियां ही आएंगी जिंदगी में।
0: बिल्कुल करिश्मा
1: नेगेटिविटी
0: जी।
1: सोचेंगे तो
0: हाँ,
1: नेगेटिविटी ही आएगी।
0: क्या बात है! मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा,
1: हाँ
0: पॉजिटिव सोचोगे
1: पॉजिटिविटी,
0: तो
1: यदि अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रहेगी अपने आसपास, नेगेटिविटी देखेंगे तो नेगेटिविटी देखेंगे। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करती हूँ कि हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रह के पॉजिटिव चीजों को गेन करूँ और पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहूँ।
0: बिल्कुल। तो हम अपना समझ सकते हैं आपकी, जैसा जो आप कहना चाह रही हैं कि हमेशा ज़िंदगी में सकारात्मक रहना चाहिए, और जब आप
1: जी मैम, जी
0: परेशान हैं तो आप सकारात्मक सोचने की कोशिश कीजिए और उसका ही प्रयास कीजिए।
1: जी तो क्या सकारात्मक सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पॉजिटिविटी रहेगी तो वही चीज आपको हर चीज सकारात्मक सकारात्मक दिखेगी।
0: बिल्कुल, आप उसको, उसी परिस्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे। हमें बड़ी
1: जी
0: खुशी हुई
1: जी
0: करिश्मा कि आपने हमें फ़ोन लगाया और हमसे इतनी अच्छी बात साझा करी।
1: जी
0: चलिए,
1: जी
0: अब हम
1: मैम,
0: आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं बोल रही हूँ जुलेखा खत्री इटारसी से जी।
0: जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी, आप कैसी?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। इटारसी में मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम तो धूप

0: हुई है।
1: अच्छा, बारिश नहीं हुई अभी?
0: बारिश तो बहुत कम है, बहुत।
1: जी जी बिल्कुल, देखिएगा जल्दी से बारिश होगी अब वहाँ पे।
0: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
1: तो बात आपकी गीत हमारे आज कार्यक्रम है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का विषय है अब जिंदगी को कैसे जीते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे जिंदगी को जीती हैं, वापस उदास होती हैं तो वापस खुश होने के तरीके क्या ढूंढती हैं, हिम्मत से कैसे वापस खड़ी हो जाती हैं।
0: जी, तो मैं ऐसा ढूंढती हूँ कि जैसे कभी मैं उदास होती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि और भी तो लोग इतने उदास है, कितनी ज्यादा परेशानी में, हमारी परेशानी हम देखते हैं तो औरों से थोड़ी सी कम लगती है, तो फिर खुश हो जाती हूँ कि नहीं भाई ठीक है।
1: जी जी
0: और चाहती हूँ कि किसी को भी ना आए परेशानी में,
1: हाँ जी
0: और इसमें ध्यान लगा देती हूँ।
1: जी जी बिल्कुल। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार में मेरी माँ है
1: जी,
0: और मेरा भाई है।
1: अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल। तो माँ तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती, प्रेरणा होती है हमारे लिए, है ना?
0: जी बिल्कुल सही।
1: हमने माँ को तकलीफ में भी देखा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए हमेशा, माँ जो है बीमार होती थी उसके बाद भी हमारे लिए भोजन बनाना, हमें खाना खिलाना, हमें हमारा ध्यान रखना, हमारी पढ़ाई करवाना, आधी नींद में भी हमारे लिए जागती थी वो हमेशा।
0: बिल्कुल सही, माँ तो माँ होती है, उनका दर्जा तो कोई नहीं ले सकता है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो है हमें माँ से मिलती है, और आपने हमें फ़ोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई।
0: जी जी मुझे बहुत खुशी हुई, कई दिनों बाद लगा मैडम जी मेरा फोन।
1: बिल्कुल, अब तो आप देखिएगा, आप प्रयास करते रहिए, फोन जरूर लगेगा आपका।
0: बिल्कुल जी, चाहिए
1: जी, आपने हमें फोन किया, बड़ी खुशी हुई। चलिए अब आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत।

अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रेरणा से, हिम्मत से, मोटिवेशन होकर और इंस्पिरेशन के साथ जिएंगे। अपने आसपास की चीजों से खुद को प्रेरित करें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस

भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वो भविष्य में संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है या कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका सैन्य जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, इस मौसम की जो गर्मी है उसमें बारिश बस आने ही वाली है, तो चलिए इन बारिश की बूंदों के आगमन के इंतज़ार में हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए आज का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की, जो कि गौरी नगर इंदौर से हैं। इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है से। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण और सुदेश भोसले, साथ ही आदेश श्रीवास्तव की आवाजें हैं। गीतकार हैं समीर और इसको संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने। और साथ ही इसी गीत के लिए हमें खत प्राप्त हुआ है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया का। इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश मिली है आदर्श नगर मालोट पंजाब से ही राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2

0: श्रोता, यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म कल होना हो से। वसुंधरा दास, के शान और लॉय मेंडोजा की आवाज़ें, जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। साथ ही इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमेरखंड महाराष्ट्र से, अभिजीत गवहाणकर राही, श्रीमती सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाणकर, श्रीमती वैशाली गवहाणकर, श्वेता सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी। श्रोताओं, आइए अब अगला गीत हम सुनते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता नेमा, भावना और प्राची नेमा से। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आजा नचले से, पीयूष मिश्रा के लिखे बोल, सलीम सुलेमान का संगीत और इस गीत में आवाज़ है सुनिधि चौहान की।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, यह अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की।

0: फिल्म कभी अलविदा ना कहना से ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का, और इस गीत में आपने आवाज़ें सुनी शान वसुंधरा दास और साथियों की। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: Nasansani. Nautejna. Nashor din ra. Nahi ahankar. केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग।

धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने जाना कि राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्नसेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच गया, जहां की राजा आदित्य सेन के यहाँ भुवन मोहिनी आश्रय में थी। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहता था। चंद्रहासिनी की ओर आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। चंद्रहासिनी ये जानकर भी विवाह करने को तैयार थी। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के पिता सम्राट द्युम्नसेन ने सभी भारतीय खंड राज्यों की सभा बुलाई, जिसमें हूणों से लड़ने के लिए भारतीय सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा की सभा में हूणों के अपमानजनक प्रस्ताव को पढ़ा गया। आमात्य ऋषभ देव ने कहा कि युद्ध टालने के लिए चंद्रहासिनी को समर्पित कर दिया जाए। ये सुनकर भुवन मोहिनी ने क्रोध में आकर ऋषभ देव का सिर काट दिया। उसके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। राजकुमार के सेनापतित्व में हूणों से युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। विजय के बाद विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया और वो सम्राट बना। अब आगे क्या होता है सुनिए।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी में।
1: चंद्रहासिनी के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया। धारा नगरी लौटकर सम्राट ने स्वयं संन्यास ले लिया और मुझे सम्राट की गद्दी सौंप दी। आज मेरे पास सब कुछ है। भारत समस्त खंड राज्यों के नरेशों का एक सुदृढ़ संघ बन चुका है और मैं भारत का सम्राट हूं। सत्ता और शक्ति की अविरल धारा बहने लगी है, परंतु फिर भी एक रिक्तता है। भुवन मोहिनी चंद्रहासिनी को साम्राज्ञी बनवाकर राष्ट्र की सुप्त नारियों को जगाने के कार्य में संलग्न हो गई। स्वप्रेरणा से या मुझसे दूर जाने के लिए नहीं जानता। यद्यपि मैं प्रजा के हितार्थ कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मेरी आंखें सदैव भुवन मोहिनी को ही खोजती रहती हैं। प्रत्येक क्षण लगता है कि वो द्वार पर आकर खड़ी हुई है और कहती है,
2: आपने याद किया सम्राट विजयश्रवा?
1: इस ध्वनि को सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूं। कब आओगी भुवन मोहिनी? तुम कब आओगी मुझसे मिलने?
2: मैं आपके ही कक्ष में हूं देव।
1: आहा, भुवन मोहिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे कक्ष में मेरे सामने हो। ना जाने कितने दूत मैंने तुम्हें खोजने के लिए भेजे, सब लौट कर यही बताते रहे कि तुम नहीं मिली। क्यों क्यों भुवन मोहिनी, तुम मुझे भूलकर मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? क्यों चली गई? वो तुम ही हो ना जिसने राजकुमारी चंद्रहासिनी को मेरे जीवन में बलात् प्रवेश कराने की अनवरत चेष्टा की। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमको खोना होगा। मैं दृष्टि फाड़ फाड़ कर सूने पथ पर तुम्हारे बढ़ते चले आने वाले महायान की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अपने अंतर की उस विवश आकुलता को दबाकर, किंतु जब तुम्हें नहीं देख पाता तब एक पश्चातापूर्ण भावना जीवन में घुलकर कहती है, सब व्यर्थ है। मेरे जीवन के कर्म सब व्यर्थ हैं। मेरी दहकती विवक्ष भूमि ज्वालामुखी का उद्गार बन जाती है।
2: सम्राट, जिस तरह से आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है।
1: बिना मेरी आज्ञा के?
2: सर्व कल्याण के लिए आप जैसे कल्याणकारी सम्राट की आज्ञा आवश्यक नहीं है। सम्राट,
1: मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं चाहता। भुवन मोहिनी,
2: आपकी उद्विग्नता साम्राज्य की निकटता समाप्त कर देगी। सम्राट, आप उन्हें अवसर तो दें। चंद्रहासिनी आपकी पूजा करती हैं, आपको देवों से भी बढ़कर मानती हैं। मेरा क्या है, मुझे आपकी दया ने एक नर्तकी से राष्ट्रभक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे लिए यही आशातीत है। इससे अधिक की ना तो मुझे कोई अभिलाषा है और ना ही कामना। मुझे आज्ञा दें सम्राट, मेरे सामने बहुत कार्य हैं। आपसे प्रार्थना है कि बिना किसी प्रयोजन के मुझे ना बुलवाया करें। प्रणाम।
1: भुवन मोहिनी।

क्या भुवन मोहिनी को सम्राट ने बुलवाया था? मेरी प्रियतम, क्या मैं अपना समस्त प्रेम दान देकर भी उस आग की ज्वलनशीलता को कम नहीं कर पाई जिसे भुवन मोहिनी की स्मृति ने दहका रखा है? आ स्वामी, मैंने भूल की है। मैंने अपने सुख के लिए आपके और भुवन मोहिनी के जीवन की होली जला दी है।

0: अरे देखिए ना, ये नन्हे कुंवर के गालों पर ये लाल लाल क्या हो गया है?
1: छोटे बच्चों को ऐसा हो जाया करता है साम्रागी, इसमें परेशान मत हो।
0: अरे अरे रे रे रे, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। अरे नहीं, चुप हो जा बेटे।
1: आज भुवन मोहिनी आ रही है।
0: अच्छा,
1: हाँ, मैंने बुलवाया है, आती ही होगी। 5 वर्ष बाद आज उसके दर्शन होंगे।
0: मैं भी अपनी सखी को देखने के लिए आकुल हूं सम्राट।
2: सम्राट की जय हो।
1: अरे भुवन मोहिनी, आओ, तुम्हारी ही चर्चा। कितना परिवर्तन हो गया है तुम में। तुम तो साक्षात योगिनी बन चुकी हो।
2: अरे कितना नन्हा देवोपम, कोमलता का प्रतिरूप। बधाई हो बहन चंद्रहासिनी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए।
0: अरे छोड़ो सखी, इतना ही दुलार था तो पुत्र जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई?
2: मेरा रोम रोम इन्हें आशीर्वाद दे रहा था, परंतु मैं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं निकाल सकी। मेरी त्रुटि को क्षमा करना बहन। आ आ हाँ, मेरे पास आएंगे। आइए ना, आइए, दो ना बहन।
0: हाँ, ये लो चा। तू भी भुवन मोहिनी की गोद में ही रहा कर। ना जाने कब से तेरे पिता इनके नाम की माला जपते रहे हैं, अब तू भी पिता की भांति मेरा तिरस्कार कर।
1: साम्राज्ञी,
2: ऐसा ऐसा मत कहो बहन। सुना भुवन मोहिनी, ये वही राजकुमारी है जिसको सुखी बनाने के लिए तूने अपनी प्रेम आकांक्षाओं को होम कर दिया। फिर भी राजकुमारी तेरे प्रति कृतज्ञ नहीं है।
0: लाओ मुझे दो, मेरा कुमार है, कहीं इसे भी तुम्हारी गोद की आदत ना पड़ जाए। चलेगा दूध पीने? आ चल, तुझे दूध पिला दूं। मैं तेरी माँ हूं सम्राट पुत्र। मैं तेरी माँ हूं। आ आ आ चल।
1: क्षमा मांग सकता हूं तुमसे भुवन मोहिनी?
2: कुछ मत बोलिए आप, बहुत कड़वी घूंट पी चुकी हूं, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट अभी तीर्थाटन पर गई थी।
1: कभी अपनी तूलिका से तुम्हारा चित्र बनाया था।
2: नारी सेवा के काम में लग गई हूं।
1: निर्वासित होते समय तुम्हारा वो मुखड़ा अभी भी मुझे याद है।
2: मैंने मैंने अब तक 8 आश्रम आरंभ करा दिए हैं सम्राट।
1: भुवन, कहीं नहीं जाना है तुम्हें।
2: क्यों?
1: इसलिए कि राजकाज से अवकाश मिलने पर जब कभी तुम्हारी पागल स्मृति कौंधती है, तब मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है और कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे विवश करके चंद्रहासिनी को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी कि तुम मुझसे विलग रहो?
2: तो इसमें बुराई क्या है मेरे सम्राट? आपके दाम्पत्य जीवन में मेरी उपस्थिति सर्वदा बाधक होती और हमारी सम्माननीय साम्राज्ञी समझती कि मैं उनके सरस जीवन में अपनी उपस्थिति से विष घोल रही हूं। आज मुझे संतोष है कि निरंतर 5 वर्षों तक आपसे दूर रहकर मैंने अपने को अपराधिनी बनने से बचा लिया है।
0: ये झूठ है, मुझे फुसलाने का एक विषैला षड्यंत्र है।
1: चंद्रहासिनी,
2: राजकुमारी क्षमा करो, पिछले 5 वर्षों में धारा नगरी में मेरी उपस्थिति अधिक से अधिक मात्र 1 माह की हुई होगी। तब मैं अपने पागल मन को नहीं रोक पाती थी, सबके दर्शन के लिए 2-4 दिन रुक जाती थी। किंतु मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि मैंने आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में विष घोलने का षड्यंत्र किया। आज भी अपराधिनी सिद्ध होने पर मैं सहर्ष कठोर से कठोर दंड स्वीकार करूंगी।
0: जिसके शीश पर भारत सम्राट का वरद हस्त हो उसे दंडित करने का अपराध कौन मोल लेगा?
2: असत्य है राजकुमारी, जिस अपराध का संदेह तुम मुझ पर आरोपित कर रही हो उसे हृदय चीर कर दिखला सकती तो अवश्य दिखलाती कि तुम्हारे प्रियतम को अपनी ओर मिलाए रखने का मैंने कोई कुचक्र कोई षड्यंत्र नहीं रचा। हाँ, मैं सम्राट को नहीं रोक पाती कि वो अपनी ममता की धारा मुझ पर ना उड़ेले।
0: यही यही तो काटा है जिसे दूर होना चाहिए।
1: पा लिया ना तुमने भुवन मोहिनी वो परिणाम जिसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। चंद्रहासिनी आज भारत की साम्राज्ञी है, वो तुम जैसी तुच्छ नारी के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकती। उसे वो क्षण भूल गए जब दीनहीन याचक की भांति तुम्हारे सम्मुख नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रणयदान के लिए अपना आंचल फैलाए हुए थी। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुरा रही है।
0: भुवन मोहिनी, मेरी बातें जितनी तुम्हें असहाय नहीं होंगी उससे कहीं अधिक भारत सम्राट को दुखा रही हैं। अरे अरे मुझे क्षमा करो, कहीं इन बातों का बदला मुझसे चुकाया गया तो मैं किसका सहारा खोजूंगी। कम से कम तुम्हारा पक्ष तो भारत सम्राट ग्रहण कर रहे हैं ना भुवन मोहिनी? उन्होंने अभी अभी स्वीकारा है कि तुम्हारे दया के कारण मैं साम्राज्ञी बनी हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी दया ना लेती? राजकुमारी होने के कारण किसी न किसी राजकुमार की जीवन संगनी तो होती ही ना। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सम्राट भी मुझ पर कृतज्ञता का बोझ लाद कर कह रहे हैं यदि तुमने मेरे साथ सदैव व्यवहार ना किया होता तो वो संभवतः मुझे स्वीकार ना करते।
1: हाँ हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई संदेह भी मत रखना चंद्रहासिनी।
0: देख लिया ना भुवन मोहिनी, क्या मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन में भयानक प्रहार होते हैं? कहा था ना मैंने?
2: साम्राज्ञी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर
1: साम्राज्ञी से क्षमा याचना करके मुझे अधिक लज्जित मत करो भुवन मोहिनी। तुमने तुमने कोई अपराध नहीं किया, सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हारे अतुल स्नेह के प्रति भयानक अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे समर्पित जीवन को कुचलकर नीरस बनाया है। मैं ही तुम्हारे मरु जीवन में झंझावात पैदा करने वाला भयानक स्वार्थी और लोलुप व्यक्ति सिद्ध हुआ हूं। चलो, आज से मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करूंगा। चंद्रहासिनी साम्राज्ञी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं स्वयं सम्राट पद का परित्याग कर तुम्हारे साथ राह राह का भिखारी बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धत प्रेम जो हमारी दृष्टि में हमारा अपमान करने पर तुल जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अंततः साम्राज्ञी भी एक नारी है, सर्वदा अवध अदंडनी। अस्तु, मैं आज से ही साम्राज्ञी से दूर रहूंगा ताकि उन्हें किसी प्रकार हमारे प्रति क्षोभ न उत्पन्न हो। चलो भुवन मोहिनी।
2: सम्राट,
1: मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता भुवन मोहिनी, चलो।

0: हम राजप्रसाद के इस खंड में रहेंगे, याद है ना, यहीं पर मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था। किशोरावस्था से लेकर सम्राट होने तक मेरा आवास यही प्रखंड था। कोलाहल से दूर एकांत में, और तुम्हें मेरी सौगंध है भुवन मोहिनी, तुम इस योगिनी स्वरूप का परित्याग करो। एक बार फिर से मुझे उस स्नेह वारुणी से उन्मत्त हो लेने दो, जिसे पीकर मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भयानक शून्यता आ रही है, और मैं अपने को उसी नीरव शून्यता में विलीन करता जा रहा हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी अपने सौंदर्य मद में प्रतिपल पागल हो रही हैं, और वो समर्पण का ढोंग रचकर प्रतिक्षण मेरे समर्पण की उपेक्षा करती जा रही हैं। मैंने किसी प्रकार 5 वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पर व्यतीत कर डाले हैं, किंतु चंद्रहासिनी कभी भी सौंदर्योन्माद के विषैले नशे से बच नहीं सकी। वो महानता की उपासिका हैं, जबकि मैं अस्तित्वहीनता का। भुवन मोहिनी, आह, तुम्हारे स्पर्श में अभी भी वही मादकता है, वही विद्युत तरंगों से चपल भावनाओं का मायावी उन्माद, वही प्राणों में कंपन और सिहरन पैदा करने वाली प्राकृतिक वासना का स्फुरण। प्रिय, तुम्हें ये रूप राशि इसलिए नहीं प्राप्त हुई है कि मैं उसे देखकर आत्मविभोर हूं, अप्राप्य की भांति तुम्हें ना प्राप्त कर सकने की छलना में निरंतर जलता रहूं। बोलो भुवन मोहिनी, मैं चंद्रहासिनी के रूप की उत्पत्त गरिमा को बुझा दूंगा यदि तुम्हारा संबल प्राप्त हो। यदि एक बार तुम इस असमय के वैराग्य को ठुकरा सको, अन्यथा ये अतृप्त अनंत जीवन की वासना बनकर मुझे क्षुब्ध करती रहेगी, और मैं लुब्ध मधुप की भांति तुम्हारे रूप की यश गाथा को मन ही मन गुनगुनाते हुए उद्भ्रांत बना रहूंगा। मुझे चाहिए तृप्ति, तुम्हारे अक्षय यौवन के उपभोग की पूर्ण स्वीकृति, अन्यथा मैं माननी चंद्रहासिनी के साम्राज्य को ठुकरा दूंगा। चंद्रहासिनी को चाहिए सत्ता और शक्ति, वो उसे मैं स्वेच्छा से प्रदान कर विरक्त हो जाऊंगा। आज चंद्रहासिनी की गोद में साम्राज्य के सिंहासन का प्रतिनिधि खेल रहा है, वो उसके रंग में रंगकर मुझे भूल सकती हैं और मेरी उपेक्षा भी कर सकती हैं, किंतु तुम बोलो, क्या तुम भी मेरी उपेक्षा करना चाहती हो? क्या तुम भी मेरे जीवन में मात्र छलना सिद्ध होना चाहती हो? बोलो भुवन मोहिनी, बोलो, तुम मुझसे घृणा करती हो?
1: नहीं।
0: तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो?
1: नहीं।
0: क्या तुम्हें मेरी वासनात्मक वृत्तियों के प्रति रोष है?
1: नहीं।
0: क्या कभी तुमने अंतर की निगूढ़तम प्रकोष्ठ में मेरी मूर्ति बिठाकर कभी पश्चाताप करना चाहा है?
1: नहीं।
0: क्या कभी तुमने मेरे लिए सर्वस्व उत्सर्ग ना करने की शपथ ली है?
1: कभी नहीं।
0: तो क्या कभी मेरी आसक्ति पर तुम्हें भय या रोष उत्पन्न हुआ था?
1: कभी नहीं।
0: क्या तुम सदैव मुझे देवत्व पर प्रतिष्ठित रखने के बोझ से दबी रही हो?
1: कभी नहीं देव।
0: तो क्या कभी तुम्हें चंद्रहासिनी के जीवन संगनी बनाने का आंतरिक क्षोभ हुआ है?
1: कभी नहीं।
0: तब मायावनी, तब सच सच कहो, मेरी छाया से ही भयभीता बनकर मुझसे दूर क्यों भागती रही हो? क्या मुझसे प्रेम करने का तुम्हारा हार्दिक उल्लास अब मर चुका है?
1: नहीं, किंतु
0: तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझसे गोपनीय बनकर रहने की धृष्टता ना करना। मैंने तुम्हारे सम्मुख अपना अंतरपट खोल कर रख दिया है। मैं तुम्हें पाप पुण्य की भावना से विलख रख कर प्यार करता रहा हूं, और आज मैं प्यार के बदले प्यार ही चाहता हूं।
2: आप तो प्यार पा ही रहे हैं सम्राट, भुवन मोहिनी आपकी गोद में अल्लड़ बालक सी मचल जो रही है।
0: ऐसी ही बैठी रहो भुवन मोहिनी। साम्राज्ञी, तुमने मेरे एकांत में पहुंचकर भीषण अपराध किया है। सावधान, अब तुम्हें अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, नेत्रों में आग भर के देखो, आज से मेरी गोद में प्रणय लीला रचाने वाली भुवन मोहिनी पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी है। तुमने मुझसे जो प्रणय दान चाहा था वो भी भुवन मोहिनी का उच्छिष्ट था। भुवन मोहिनी की अनिच्छा देखकर भी मैं उसे अपने प्रेम दान से विभूषित करूंगा।
1: सम्राट!
0: भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी कहां जा रही? रुक जाओ भुवन मोहिनी।

0: उसी में भस्म हो जाएं। मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कोई अवशेष न बचे। अपने भौतिक अस्तित्व पर अभिमान करने वालों को मैं बता जाऊं कि कैसे मरना होता है। आत्महनन करके मैंने जो पुण्य कमाया था वो तो मानो आत्मछल था। वो सर्वदा अपने आप को धोखा देती रही, किंतु आज आज अंतर तारों से जो चीत्कार प्रतिध्वनित हो रहा है वो मानो करुणा सागर में जीवन की समाधि लगा देगा। चंद्रहासिनी के लिए मुझे अपने सुख का परित्याग करना पड़ा था। चंद्रहासिनी के लिए दान कर डाला था अपने प्रीतम प्रणय के अनंत बसंतों को। यदि मैं समझ पाती कि उस प्रतिदान का परिणाम आंसुओं में जीवन को विगलित कर देना है तो क्यों अपने मिलन भरे वसंत में पतझड़ लाती। काश मैं ना समझती कि प्रेम की पीड़ा से छटपटाने वाली एक सुंदरी राजकुमारी ने मेरे ऋतुराज को छीनकर अपना वसंत मनाया है। आज मैंने चंद्रहासिनी की दृष्टि में प्रेम की असहिष्णुता का दर्शन किया। वो तो मानो मेरे प्रणय की प्रतिस्पर्धिनी बनकर उग्र प्रतिकार के लिए तत्पर है। किंतु दूसरी ओर मेरे प्रियतम विजय श्रवा की आकुलता घुन सी मेरे जीवन की सुख शांति और समृद्धि को चूर चूर कर रही है। अब मेरे सामने मात्र दो रास्ते हैं। या तो मैं चंद्रहासिनी की सर्वत्र उपेक्षा करके विजय श्रवा के जीवन को मधुमेह वसंत के मादक हिलोरों से भर दूं, या अपने जीवन का अंत करके चंद्रहासिनी के लिए सर्वस्व उत्सर्ग कर जाऊं। परंतु यदि मैं उत्सर्ग करती हूं तो मेरे प्रिय का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं देव के जीवन में सरस वसंत अनुप्राणित करने का एक बार प्रयास अवश्य करूंगी, भले ही मुझे चंद्रहासिनी की कोपाग्नि में भस्म ही क्यों ना होना पड़े।
1: कहाँ है साम्राज्ञी? साम्राज्ञी के महल के सभी दासों और परिचारिकाओं सुन लो, अब तुम्हें साम्राज्ञी की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रहासिनी, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूं। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए?
2: सम्राट,
1: मैं तुम्हें शारीरिक दंड न देकर मानसिक दंड दूंगा। मैंने तुम्हें साम्राज्ञी पद पर प्रतिष्ठित करके भयानक भूल की है। एक अकृतज्ञ नारी हो तुम। जाओ, आज से तुम साम्राज्ञी पद से वंचित की जा रही हो।
2: नहीं,
1: मैं आज ही आदेश देता हूं कि समस्त साम्राज्य की प्रजा तुम्हें राजकुमारी चंद्रहासिनी के नाम से संबोधित करे, ना कि साम्राज्ञी।
2: नहीं सम्राट,
1: तुम्हें मेरे राज प्रासाद को भी त्यागना होगा।
2: परंतु सम्राट,
1: तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर गर्व है ना? तो जाओ, महाराज आदित्य सेन की लाडली बनकर इंद्रप्रस्थ के राजमहल को सुशोभित करो। तुम जैसी माननी के लिए धारा नगरी के राजप्रसाद में कोई स्थान नहीं है।
2: नहीं, सम्राट।
1: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूं कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।
3: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिवसीय गुना जिले के दौरे पर हैं। आज इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आमजनों से मिलकर उनकी समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में

कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। दोपहर के 1 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। योगदान आकाशवाणी के रीवा केंद्र का है।

ऐसी कोमल चांद सी प्यारी, धरती की शोभा है हर नारी। उसकी हंसी में सावन गाए, उसकी ममता जग महकाए। नदियों सी निर्मल उसकी धारा, जीवन में भर दे उजियारा। सूरज सा साहस, दीपक सामान, नारी है सृष्टि की पहचान। हरियाली का संदेश सुनाती, प्रेम और करुणा की ज्योति जलाती। नारी और प्रकृति का यह नाता, सारे जग को सुख दे जाता। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। बहनों जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कार्य सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। मैनो जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है और देश के विकास की दिशा निर्धारित करती है। मैनो जनगणना में महिलाओं की भागीदारी और उनकी सही जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। मैनो लोग सोचते हैं जनगणना केवल देश के लोगों की संख्या जानने का माध्यम है, लेकिन बहनों जनगणना से यह पता चलता है कि देश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, कितनी महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं और किन क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व लाभ, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाएं तैयार करती है। मैनो हम महिलाओं को यह समझना आवश्यक है कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के बेहतर भविष्य का आधार है। मैनो प्रत्येक महिला का कर्तव्य है कि वह 2027 में होने वाली जनगणना में जनगणना अधिकारी को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करे, साथ ही अपने परिवार और समाज की अन्य महिलाओं को भी जनगणना में सहयोग करने के लिए प्रेरित करे। बहनों एक जागरूक महिला न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में योगदान देती है, क्योंकि जब महिलाएं जागरूक होंगी और जनगणना में सहयोग देंगी तभी एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। अब आइए बहनों मोहम्मद रफी की आवाज में सुन लेते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

0: आइए बहनों, हम 2027 में होने वाले जनगणना के बारे में श्रेया पांडे से बातचीत करते हैं। श्रेया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं श्रेया पांडे। जनगणना किसी भी देश के विकास की आधारशिला है। इसके बिना सरकार योजनाएं नहीं बना सकती और ना ही जनता की को क्या आवश्यकता है ये ठीक से समझ सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जनगणना में अपना पूरा सहयोग दे। जनगणना किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, भाषा, व्यवसाय, आवास आदि से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने की एक सरकारी प्रक्रिया है। यह हर 10 वर्ष में कराई जाती है।
0: क्या जनगणना में महिलाओं की सही संख्या, सही स्थिति दर्ज होना आवश्यक है?
1: हाँ, महिलाओं की सही संख्या एवं स्थिति का जनगणना में, जिससे कि उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है, वे सामाजिक रूप से कहाँ, उनकी क्या स्थिति है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण और उनका जो लिंगानुपात है वो भी कितना बड़ा

0: बढ़ा या घटा, इसकी जानकारी के लिए उनकी सही महिलाओं की सही जानकारी जनगणना में होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि उनके लिए जो भी योजनाएं बनाने में योजनाएं बनेंगी उनको बनाने में बहुत सहायता मिलती है।
1: महिलाओं और बच्चों के विकास में जनगणना की क्या भूमिका है?
0: महिलाओं एवं बच्चों के विकास में जनगणना की बहुत भूमिका है। महिलाओं के सही स्थिति महिलाएं एवं बच्चों के बारे में दर्ज होने से महिलाओं के विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं रोजगार संबंधी योजनाएं महिलाओं को पहुंचाने में बहुत सहायता मिलती है एवं महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए बेहतर नीतियाँ बनाई जा सकती हैं जनगणना के माध्यम से। एवं बच्चों के विकास में मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी योजनाएं बनाने में बेहतर सहायता मिलती है। महिला रोजगार एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के आधार पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
1: श्रेया जी, आपने हमारी बहनों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभूति है जिसमें महिलाएं अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती हैं, जिससे उनकी विभिन्न क्षमताओं व योग्यताओं को यथा योग्य सम्मान मिलता है। साथ ही निर्भीक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती हैं महिलाएं और जहां चाहे वहां आ जा सकती हैं और कठिन से कठिन कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटती। बहनों, अक्सर देखने में आता है कि खून की कमी मतलब एनीमिया की बीमारी भारत में महिलाओं और किशोरियों के सामने एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। बहनों, हमारे शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने पर हमें कमजोरी लगती है और थोड़ा सा काम कर ले तो थकान लगने लगती है, चक्कर आने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता जैसी समस्या होने लगती है। विशेष रूप से किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रभाव अधिक देखा जाता है। बहनों, मिशन उत्कर्ष 2026 का मुख्य उद्देश्य ये है कि एनीमिया से प्रभावित किशोरियों और महिलाओं में पोषण के स्तर को सुधारना व स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। बहनों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण संबंधी शिक्षा, आयरन की पूर्ति और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार किया जाए। बहनों, खून की कमी मतलब एनीमिया होना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी, जरूरी पोषक तत्वों का अभाव, बार बार संक्रमण होने के कारण भी हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। बहनों, आप सोचेंगे कि किस प्रकार का संक्रमण? बहनों, जैसे बार बार दस्त लगना, उल्टी होना, भूख न लगना, लगातार कई दिनों तक दस्त लगने से व्यक्ति की भूख भी मर जाती है और वह खाना नाम मात्र का खाता है, जिस कारण शरीर कमजोर हो जाता, साथ ही हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। यदि सही उपचार ना मिला तो यह मौत का कारण भी बन सकता है। बहनों, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तचाप, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता में कमी भी एनीमिया का कारण बन सकती है। इसीलिए बहनों, सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है किशोरियों में खून की कमी की पहचान के लिए नियमित जांच कराई जाती है। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण भी कर रही है सरकार। बहनों, संतुलित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक कर रही है सरकार, लेकिन माताओं बहनों को भी ध्यान देना चाहिए कि हर घर में माताओं के साथ साथ बेटियों को भी खास तौर पर पौष्टिक आहार प्रदान करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ होती है और मजबूत नागरिक बनती है। बहनों, एनीमिया की समस्या दूर होने से शिक्षा, कार्य क्षमता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। लगभग 95,000 किशोरियों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बहनों, हम महिलाओं को यह प्रयास करना चाहिए कि घर में सभी को अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार प्रदान करें, जिससे किसी भी व्यक्ति को, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, एनीमिया का शिकार ना हो वो। बहनों, यदि सरकार, समाज और परिवार एक साथ मिलकर इस अभियान को सफल

बनाते हैं तो भारत निश्चित रूप से एनीमिया मुक्त और स्वस्थ भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। बहनों आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत।

मैनू कभी कभी तला भुना खाते खाते मन ऊब सा जाता है, लगता है कुछ झटपट बनाकर खाया जाए जो हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी है और हमारा पेट भी भर जाए और जो बच्चे बूढ़े जवान सभी को पसंद आए। बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट दलिये की खिचड़ी। बनाने की विधि इस प्रकार है। हमें चाहिए 1 कप दलिया गेहूं का, आधा कप मूंग की दाल, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 1 छोटी गाजर बारीक कटी हुई, 1/4 कप हरे मटर के दाने, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, 4 कप पानी। बहनों, दलिया बनाना शुरू करते हैं हम। बहनों, दलिये को कड़ाही में डालकर थोड़ा सा घी डालें और हल्का भूंज लें। फिर मूंग की दाल को अच्छे से धो लें। आप कुकर में घी गर्म करें और जीरा डालें। जीरा चटक जाए तो उसमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूंजें, फिर गाजर डालें और टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनते रहें। आप दलिया और मूंग की दाल डालकर 1 मिनट तक चलाएं। फिर हल्दी, नमक और पानी डाल दें। आप कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी आने तक पकने दें। कुकर के ठंडे होने पर खिचड़ी को अच्छी तरह मिला लें। फिर ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें, बारीक कटी हरा धनिया डाल दें। आप गर्मा गर्म दलिये की खिचड़ी दही या पापड़ हरी चटनी के साथ परोसें। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जल्दी से पच जाता है। बहनों, आप लीजिए गर्मा गर्म दलिये का आनंद अपने पूरे परिवार के साथ। साथ ही सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

आकाशवाणी रीवा के योगदान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 1:30 होने को हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है। श्रोताओं, लोक संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुन्नी गंधर्वा का गाया गैलहई गीत।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। योगदान आकाशवाणी रीवा का है। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए कुछ गीत और भजन। तो आइए सुनते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन।

अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है, जिसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा के योगदान से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे। मन की बात।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अपना सपना मनी मनी का ये गीत। मीका सिंह की आवाज़, शब्बीर अहमद के बोल और प्रीतम का संगीत।

आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म वेलकम का ये गीत। आनंद राज आनंद के लिखे बोल और संगीत है अनजान सागरी का।

0: फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। समिट में 2000 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं महिला व स्व सहायता समूह शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। शुरुआत में यह सेवा राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू की जाएगी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पौधरोपण कार्यक्रम के बाद कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। श्री सिंधिया का रुथियाई क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। वहीं श्री नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कटनी जिले में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न

0: Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है। एक ऐसा

0: देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IPCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि

0: निश्चलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्क फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं फिर एक बार, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपको गीत सुनवाते हैं फिल्म दे दनादन से। सैयद कादरी के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी है राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो ने। संगीत है प्रीतम का और इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया की। साथ ही हमें अगला खत इसी गीत के लिए मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है कंवर कॉलोनी बड़वाह से। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली का। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। तो आइए आपकी फरमाइश पर यह गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉडीगार्ड से। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं ऐश किंग और क्लिंटन ने। संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हमें फरमाइश भेजी है अगले गीत के लिए ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। साथ ही दुबेहा नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। तो आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बान फिल्म का ये गीत। निरंजन अयंगर ने इस गीत को लिखा है, सलीम सुलेमान का संगीत और आवाज़ें हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिंघम से। श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ें हैं, स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल और अजय अतुल का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है महादेव घाट अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर और बेबी रेयांश ठाकुर की। इसी गीत के लिए हमें अगला खत प्राप्त हुआ है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाज़ें हैं, आशीष पंडित के लिखे बोल और प्रीतम का संगीत।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया शोएब खान, पोत्रा मुस्तफ़ा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर से। इनकी फरमाइश है फिल्म लव आजकल का ये गीत, जिसे गाया है राहत फ़तेह अली खान ने, इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, फिल्म लव आजकल के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव DTH न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा के समापन से पहले आइए एक नज़र डालते हैं सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, शाम की सभा के आगाज के साथ सुनिए युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33, शाम 6 और रात्रि 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन, साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी यह सभा यहीं विराम लेती है। शाम की सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक डीटीएच पर यह प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। श्रोताओं, लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुन्नी गंधर्वा द्वारा गाए कुछ लोकगीत। तो आइए सुनते हैं मुन्नी गंधर्वा द्वारा गाया गैल्हाई गीत।

DTH के ऑडियो चैनल से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम लोक संगीत में। आइए अब सुनते हैं मुन्नी गंधर्वा द्वारा गाया ये देवी गीत।

इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत का प्रसारण यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनिए अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए गीत और भजन। तो आइए सुनते हैं ये पहला भजन।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम सुगम संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये अगला भजन।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। वक्त हो रहा है 3:30। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, चित्रपट संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अब के बरस का ये गीत। इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह और ऋचा शर्मा ने। सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ें हैं। समीर के लिखे बोलों को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है और आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से। जलीस रशीद के लिखे बोलों को संगीत दिया है डब्बू मलिक ने और इस गीत में आप आवाज़ें सुनेंगे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में सुनिए इब्राहिम अश्क का लिखा यह गीत, राजेश रोशन का संगीत है और फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे और यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की देविका सिहाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कैलिफोर्निया के फुलटर्न में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका ने जापान की रिको गुंजी को हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं चित्रकार एवं बाल साहित्यकार श्रीमती अनीता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम इनसे मिलिए में आपका स्वागत है। कार्यक्रम आपसे ये कहता है कि हम आपकी मुलाकात किसी एक शख्सियत से कराते हैं और देते हैं उनका एक परिचय। पर यहाँ मेरे लिए एक बहुत छोटा सा संकट ये मौजूद हो रहा है कि हमारे साथ जो शख्सियत स्टूडियोज में मौजूद हैं उन्हें मैं चित्रकार कहूँ

0: रचनाकार कहूँ, समाज सेवी कहूँ, शिक्षाविद कहूँ या मित्र कहूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज में है अनीता सक्सेना, आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: अनीता जी, बहुत सारे आयाम हैं आपके जीवन के और जीवन का एक लंबा अनुभव आपके साथ मौजूद है जिसे लेकर आप लगातार चल रही हैं। पारखी दृष्टि आपकी न केवल चित्रों पर है बल्कि प्रकृति पर कुछ इस ढंग से है कि जब उन फोटोग्राफ्स को देखा जाए जो आपकी कैमरे की आंख से होकर गुजरते हैं तो वो कुछ एक अलग ही दृश्य खींच देते हैं। मोटे तौर पर यदि पूछा जाए या जानना चाहूँ तो इन सारी चीज़ों की प्रेरणा कहीं से आपको मिली या ये स्वतः कदम दर कदम होता चलता चला गया सिलसिला?
1: दरअसल क्या होता है ना कि आपका बचपन जहाँ बीता होता है वो बहुत सारी बातें आपके मन में बैठी हुई होती हैं। मेरा बचपन गांव में बीता, हालांकि गांव में पूरा नहीं बीता, छुट्टियां वहाँ होती थी तो गांव का जो माहौल मिला
0: जी,
1: वो बाग बगीचे नदी कुआं खेत, तो वो मन में ऐसे बैठ गए कि वो आज तक भी वहाँ से वो दृष्टि हटती नहीं है। वही मेरी कविताओं में आए और वही मेरी चित्रों में आए, मेरे मन के अंदर बैठे हुए हैं वो सब।
0: मुझे लगता है कि गांव में रहने वाला या बचपन की चीज़ों को जीने वाला हर एक इंसान होता है क्योंकि सबका जीवन बचपन से होकर ही गुजरता है।
1: सही बात है, सही बात है।
0: लेकिन सब उसे अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, कहीं कोई बात, कोई शौक, कोई चाहत, कोई इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं ज़रूर आपके भीतर होगा जिसने आपको प्रकृति को महसूस करने के लिए मजबूर किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात या कोई घटना या कोई चीज़ रही होगी?
1: शुरू की तो नहीं कह सकती, शुरू तो जो बचपन जैसा मैंने बताया वहाँ बीता, लेकिन हाँ जब थोड़ा सा मैं शायद 7th 8th में रही होंगी तो मेरे पड़ोस में रहने आए थे प्रोफेसर चंद्रेश सक्सेना जी, वो ग्वालियर आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वो जो चित्र बनाते थे तो मुझे ये लगता था कि मेरे बनाए हुए चित्र भी ऐसे होने चाहिए। उनसे मैंने काफ़ी कुछ देखा, सीखा तो नहीं देखा, और वहाँ से शायद मेरे मन में ये आया कि ये विषय, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एक विषय होता है, मैं तो सोचती थी चित्र बनाए जाते, उन्होंने ही बताया कि ये एक विषय है और तुम चाहो तो क्लास 9th से इसको ले सकती हो। तो शायद वो प्रेरणा मेरी रही हो
0: जी
1: जिसने मेरे को चित्रकला की तरफ प्रेरित किया।
0: बिल्कुल।
1: और एक और घटना थी इसी के साथ, जब मैंने एडमिशन ले लिया था चित्रकला में तो मेरे मामा जी की लड़की थी डॉक्टर प्रभा पवार जी, वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की चित्रकला विभाग की डीन थी और उनके हस्बैंड मतलब अवतार सिंह पवार जी, जीजा जी, वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट के डीन थे, तो वो भी आती थी छुट्टियों में, तो वो बाटिक बहुत अच्छा बनाती थी।
0: अच्छा।
1: तो उनको भी जब मैंने देखा तो उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि उनसे भी मैंने सीखा कि कला जो है वो कितनी, देखिए खूबसूरती क्या होती है कि इंसान को अट्रैक्ट करती है चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे आप उसको चित्र में देख रहे हो चाहे आप साक्षात प्रकृति में देख रहे हो। तो शायद वो सब भावनाएं मेरे अंदर जो भरी कि मुझे भी इनको बनाना चाहिए, मुझे भी इनको सीखना चाहिए, तो वहां से हो सकता है ये शुरुआत हुई हो।
0: यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आपकी 9वीं कक्षा की बात यदि की जाए तो ये शायद 40 साल पुरानी बात होगी या और भी,
1: और भी ज्यादा, और भी ज्यादा।
0: उस समय में, उस दौर में लड़कियों का पढ़ना ठीक है, बहुत घरों में पढ़ा जाता था और बच्चे पढ़ भी रहे थे, लेकिन कुछ खास विषय के लिए सोच नहीं पाते थे।
1: सच बात
0: तो
1: है।
0: चित्रकला का विषय चुनना और उसमें आगे की भी पढ़ाई करने को लेकर किसी तरह की कोई कठिनाई या कोई बाधा आई या आपको बहुत सहर्ष इसके लिए
1: नहीं,
0: आज्ञा भी
1: मुझे
0: मिली?
1: लगता है ये सब ना मतलब एक जो तीसरी शक्ति होती है, या मैं ये मान के चलती हूँ कि ईश्वरीय जो वो रहता है कि घर में कहीं ऐसा वातावरण भी नहीं था। मुझे लेखन का एक शौक जरूर हो गया था, 7th 8th में मेरी एक कविता प्रकाशित हो गई थी।
0: अच्छा।
1: बाल भारती करके पत्रिका आती थी, तो लोगों को ये लगने लगा था कि मेरी रुचि इसमें है, और जब 9th में चंद्रेश चाचा जी से बात हुई तो मेरे बड़े भैया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे थे और दीदी मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही थी, तो मेरे बड़े भैया ने जाके मेरा एडमिशन कराया था, मैं गई भी नहीं थी, गजरा राजा स्कूल ग्वालियर का, वहाँ जाके उन्होंने कराया और बोले तुम्हारा हो गया एडमिशन। घर में किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुम ये क्यों ले रही हो, इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है, भविष्य है कि नहीं है, पर चूंकि मेरा शौक था, मुझे अच्छा लगता था, सबने प्रेरित किया, ना पिताजी ने कभी ये कहा कि तुम ये विषय क्यों ले रही हो, सब खुश थे जी इस चीज़ को लेकर।
0: तो ये तो स्कूल के समय की बात हो गई, फिर जब आगे की पढ़ाई की बात आती है तो उस समय उसी विषय पर टिके रहना, उसको और आगे बढ़ाना या उसमें स्पेशलाइजेशन करना, ये आपकी स्वतः स्फूर्त भावना थी या किस तरह से आप उस कदमों को लेके बढ़ी?
1: समय के साथ अपने आप धीरे धीरे धीरे, जब नाइन्थ में आई, नाइन्थ से टेंथ इलेवन ट्वेल्थ आते आते काफ़ी कुछ समझ चुके थे उसको। हालांकि जो उम्र होती है वो उम्र ऐसी नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा जाने, लेकिन एक मन का जो होता है ना, हर बच्चा सोचता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। तो ट्वेल्थ तक आते आते ये लगने लगा था कि हाँ ये तो बहुत बड़ा विषय है, मतलब बहुत ऐसा विषय है कि लोग आपको मुड़ कर देखते हैं कि अरे वाह ये चित्र तुमने बनाया, इतना सुंदर बनाया। तो जब ट्वेल्थ मैंने पास किया तो ग्वालियर में दो कॉलेज थे, आर्ट्स कॉलेज था और एक केआरजी कॉलेज। केआरजी कॉलेज में डिग्री थी और आर्ट्स कॉलेज में डिप्लोमा था। तो मेरे ही जो गुरु थे उन्होंने बोला तुम आर्ट्स कॉलेज भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस समय ये बंदिश नहीं थी। तो सुबह 7 बजे से आर्ट्स कॉलेज जाती थी मैं, वहाँ से 11-12 बजे जैसी फ्री होती थी तो डायरेक्ट के अर्जी चली जाती थी। और मैं ही नहीं, मेरी और भी 2-3 सहेलियाँ थी हम लोग मिलकर। तो वो दोनों जगह से जो हम कर रहे थे तो एक अलग भावना मन के अंदर पैदा हो रही थी कि हम एक बड़े आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं। हालांकि ये आज तक भी मैंने कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनी, लेकिन हाँ वो जो एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि आर्ट्स कॉलेज में भी हमने पढ़ा और बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हमारे टीचर्स ने, कभी हमको ऐसा नहीं कहा। क्योंकि उस समय जब पढ़ते पढ़ते कालिदास अकादमी जो उज्जैन की है वहाँ हम लोग पेंटिंग्स भेजने लगे थे। अच्छा। हमारी पेंटिंग सिलेक्ट होने लगी थी जी। तो सर भी हमें प्रोत्साहन देते थे। और केआरजी में तो चूंकि केवल चित्रकला नहीं था, और भी विषय थे तो उनको भी पढ़ रही थी, वहाँ भी चूंकि टॉपर्स में थी तो वहाँ भी किसी टीचर को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि तुम दो कॉलेज में क्यों पढ़ रही। तो इस तरह से वो चलता रहा, वो सहज भाव से चला जी। उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई।
0: और चित्रकार ही क्यों, किसी भी कलाकार के लिए मुझे लगता है कि आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास दो बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, जो उसके लिए किसी वैलिडेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और यदि ये हम ईमानदारी से अपने भीतर महसूस करते हैं तो आगे बढ़ने की प्रेरणा या जरिए या माध्यम हमें यूं भी मिलते चले जाते हैं। उस दौर में जब आप ये सब काम कर रही थी, सीख रही थी, पढ़ रही थी, पेंटिंग्स अपनी बना रही थी, तो वो कौन सा वर्ष था और उस समय आपने अपने उस क्षेत्र की क्या किसी खास चीज़ों को भी उकेरा अपने चित्रों में?
1: जी हाँ, ये 71 में मैं आई थी इस कॉलेज में, शायद आर्ट्स कॉलेज में पहला टर्निंग पॉइंट था मेरा
0: जी।
1: चूँकि घर में माँ बनाती थी दीवारों पर चित्र पूजा से संबंधित, नौमी बनती थी हमारा, नागपंचमी पे बनता था, दिवाली पर ज्योति बनती थी, तो वो जो चित्र बनाती थी तो वो मुझे बड़े प्रभावित करते थे कि वो सिर्फ ऐसी आड़ी टेढ़ी रेखाएं और उसमें आदमी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन हम उसमें पहचान रहे हैं कि हाँ ये लक्ष्मी जी हैं, तो ये कृष्ण जी हैं, तो ये राम हैं। तो इस तरह के वो चित्र बनाती थी तो वो चित्र मुझे बहुत प्रभावित करते थे। तो मैंने आर्ट्स कॉलेज में, हमारा एक विषय हुआ करता था कॉम्पोजिशन, उसमें मैंने एक विषय में उन चित्रों को लेके एक पेंटिंग बनाई
0: जी।
1: तो वहाँ हमारे एक सर थे दुर्गा प्रसाद शर्मा जी, जो हमें ये कॉम्पोजिशन और सिखाते थे। उन्होंने जब उसको देखा तो बोले तुमने ये कहाँ से सीखा? तो मैंने कहा माँ बनाती हैं घर में, तो बोले तुम इसको और आगे बढ़ाओ
0: जी।
1: और उन्होंने मुझे कई जगह उसमें नई चीज़ें ऐड करवाई और उस तरह से मैंने वो पेंटिंग बना। बाद में पता चला कि ये लोक कला है, लोक कला है, और इस कला को मैंने अब वर्तमान में मैं उसी पर काम कर रही हूँ। और वो जो वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, तो वो जो पेंटिंग्स बनाई उन्हीं को मैंने बनाकर बड़े चित्र फिर कालिदास अकादमी में भेजे। अच्छा। और वहाँ से वो पुरस्कृत हुए।
0: तो आपके फाइन आर्ट में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी या ग्रेजुएशन जब कर रही थी, तो इसमें बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम होता है
1: जी।
0: लेकिन उसमें कौन सा विषय या कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसकी तरफ आपका सबसे ज़्यादा रुझान था या जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी?
1: विषय तो सच में कई होते हैं, लैंडस्केप भी है, पोर्ट्रेट भी है, लाइफ भी होती है, फुल लाइफ भी, पर मेरे को ये कॉम्पोजिशन ही ज़्यादा पसंद था, जो एक विषय के ऊपर एक चित्र बनाना। तो उस विषय को जब अपन, विषय तो एक छोटा सा बोलते हैं कि यह विषय है, लेकिन जब उस विषय को अपन चित्र में बनाने बैठते हैं, विस्तार देते हैं, तो उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गाँव का चित्र है, लेकिन गाँव में कितनी चीज़ें, झोपड़ी भी है, मकान भी है, नदी भी है, पेड़ भी है,

0: अनवर भी हैं, सब कुछ है। तो उसी तरह से कोई कॉम्पोजिशन में जब एक विषय पर हम चित्र बनाते हैं तो वो चित्र बहुत विस्तार लिए होता है, तो मुझे उनको बनाना बहुत अच्छा लगता था।
1: शायद यही वजह रही कि आपकी एक मांडना पर बहुत चर्चित पुस्तक भी आई है
0: जी।
1: ये किस चीज़ से संबद्ध है और क्या है, हम जानना
0: जैसे
1: चाहेंगे आपसे।
0: हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बीज अंकुरित हो गया था मेरा कॉलेज लाइफ में, जो शर्मा सर ने मेरे को कर दिया था, और उसी पर फिर मैं चित्र बनाती गई
1: जी।
0: वो समय के साथ साथ वो चित्र रूप बदलते गए, मतलब जैसे उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया था कि हमेशा आगे बढ़ना, पीछे मत हटना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी शर्त थी कि लोक कला को आप विकृत नहीं करेंगे, मतलब उसका मूल रूप रहने देना है। तो उस मूल रूप के साथ मुझे चित्र बनाने थे
1: जी।
0: तो वो मूल रूप के साथ जब चित्र बनाती थी तो समय बहुत लगता था मुझे, लेकिन मैंने इन पे चित्र बनाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि बहुत साल मेरे बीच के ऐसे भी थे, शादी हुई और हम लोग चूंकि कोल इंडिया लिमिटेड में थे मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों को बहुत दूरस्थ जगहों में रहना पड़ता था जहाँ दुकानें भी नहीं होती थी, सामान नहीं मिलता था
1: जी।
0: लेकिन फिर भी जैसा भी मौका मिलता था तो मैं लाके चित्र बनाती थी। और दूसरा, कालिदास अकादमी में भेजना भी नहीं छोड़ा, जैसा भी मेरे से बनता था मैं करती थी, और मैं लगातार वहाँ कई सालों तक भेजी, हालांकि बाद में बंद हुआ वो। तो वो जो चित्र मैं बनाती रही
1: जी,
0: वो चित्र दूसरे रूप में तब विकसित हुए जब मैं शादी के बाद राजगढ़ पहुंची। राजगढ़ मेरी ससुराल है, और वहाँ मैंने देखा कि मेरी सासू माँ, मेरी माता जी, जमीन पर बहुत सुंदर मांडने बनाती थी, मतलब विस्तार लिए हुए बड़े बड़े मांडने। तो मैं तो चकित रह गई क्योंकि ये मैंने कभी देखा ही नहीं था। दीवार पर चित्र वहाँ भी बनते थे, माँ भी बनाती थी, लेकिन राजगढ़ में बनाए जाने वाले मांडने और वो चित्र, ये कला कहलाती है मालवी लोक कला। ग्वालियर में वो मालवी लोक कला नहीं है। तो ये जो माताजी के जब बनाए हुए मैंने मांडने देखे और दीवार पर बनाए हुए चित्र देखे, तब फिर मेरी दिशा फिर बदली।
1: अच्छा,
0: मैं जो वो चित्र बना रही थी उन चित्रों में अब मैंने मांडनों को जोड़ दिया। और ये मांडना जो होता है कि जमीन पर गोबर से लीप कर और उसके ऊपर छुई मिट्टी से, वो भी हाथ से बनाया जाता है, हाथ में रुई, या पहले तो बोलते हैं कि बालों का गुच्छा लेके महिलाएं उससे बनाती थी, पर रुई से या कपड़ा लेके उससे बनाती थी। तो धीरे धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदलता गया, मैंने ये भी देखा कि एक तो माता जी और माता जी की उम्र की लोग उम्र दराज जब होते गए तो उनसे वो बनना बंद हुए। दूसरी, जो नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, और विकास के नाम पर जमीन जो है वो पक्की होती चली गई, वो कच्ची मिट्टी खत्म होती गई, वहाँ पर सीमेंट के और मार्बल या ये टाइल्स लगने लगे। दीवारों पर जो चित्र बनते थे वो चित्र भी कम हुए, और कम होने के बाद बाद में तो मैंने देखा कि यंग जनरेशन बोलती है, जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे, कि आप तो हमें कागज पर बना के दे दो, हम दीवार पर लगा लेंगे और पूजा कर लेंगे, क्योंकि वो दीवार नहीं खराब करना चाहते। और ये सबसे बड़ा दुख का कारण था कि जो हमारी लोक विरासत है, जो हमारी लोक कला है, वो खत्म हो रही थी। तब यहाँ से मैंने दूसरा काम शुरू किया
1: जी।
0: मैंने कोशिश की कि जो मांडना और जो दीवार पर बनाए हुए चित्र हैं जो खत्म हो रहे हैं उनको एकत्रित किया जाए, संग्रहित किया जाए
1: जी।
0: क्योंकि वो हमारी एक धरोहर है। लोक कला वहां से है जहाँ इंसान बोलना भी नहीं जानता
1: जी,
0: था
1: जी।
0: तब वो चित्रों के माध्यम से अपने भावनाओं को बताता था। तो वही चित्र धीरे धीरे धर्म के साथ जुड़ते गए, पूजा पाठ से जुड़ते गए, और वो हर विषय को लेकर एक चित्र दीवार पर बनाया जाता था। तो उस तरह के वो चित्र मैंने एकत्रित किए
1: जी।
0: हालांकि बहुत आसान नहीं था,
1: निश्चित रूप से
0: जी, लेकिन धीरे धीरे ये काम किया।
1: और उसे फिर पुस्तक का रूप दे दिया।
0: हाँ, पुस्तक का रूप देने में बहुत समय लगा, 25 साल तो मेरे को लगे चित्र एकत्रित करने में।
1: अच्छा, अच्छा।
0: क्योंकि राजगढ़ में जो चित्र बनते थे वहां से आगे बढ़ो तो नरसिंहगढ़ में उनका रूप बदल जाता था, और आगे बढ़ो तो काकरवाड़, पचोर, जितनी जगमंडावर जहां मैं जाती थी वहां थोड़ा बहुत चेंज हो जाता था। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं हर जगह जाऊं, पहले हर जगह जाऊं। अच्छा, जब अपन किसी चीज के पीछे गहन अध्ययन करते हैं तो मुझे ये भी लगा कि ये चित्र केवल चित्र नहीं है, ये तो पूरी एक कहानी है। मतलब हर चित्र के पीछे किसी ना किसी त्योहार का वो जुड़ा हुआ था। जैसे राखी पर जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा, संक्रांत पे जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा, क्योंकि संक्रांत में सबको तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दी जाती है ना। होली पर जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा, उनके पर्टिकुलर नाम थे उस तरह से बनते थे। दीवार पर जो चित्र बनेंगे वो भी हर त्योहार के अलग चित्र बनते थे। तो फिर मुझे चैत्र से लेके वैशाख तक के फिर मैंने वहां से शुरू किया।

0: कि चैत्र में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, उन त्यौहार में कौन सा मांडना बनता है, जमीन पर क्या बनता है और दीवार पर क्या बनता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो इस तरह पूरे 12 महीने के जब मैंने एकत्रित किए तो मेरे पास अच्छा खासा एक संग्रह हो गया। फिर मुझे लगा कि अब इसका मैं क्या करूँ। तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई महेश श्रीवास्तव जी से, जो यहाँ के विख्यात पत्रकार हैं, हमारे आदरणीय हैं। तो उनको मैंने अपनी फाइल दिखाई तो बोले, अरे तुमने इतना काम किया है मालवा पे, तुम इसकी किताब छपवाओ। तो मैंने कहा किताब इतनी बड़ी मेरे बस की बात नहीं है
1: जी।
0: तो बोले तुम मानव संग्रहालय जाओ।
1: अच्छा,
0: इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जाओ। और उन्होंने मुझे वहाँ पर अरुण श्रीवास्तव जी थे, उनसे मिलने को कहा
1: जी।
0: मैं मानव संग्रहालय गई, अरुण जी से मिली। तो किस्मत कहते हैं इसको सारी, कि एक भगवान जो रास्ता दिखाता है। तो महेश जी ने जब बोला और मैं वहां पहुंची तो अरुण जी फाइल देख के वो भी चकित रह गए, बोले चलिए डायरेक्टर साहब से मिलाते हैं आपको। सरित चौधरी जी डायरेक्टर थे, वो उसी समय मेरे को वहां ले गए। सरित जी ने फाइल देखी तो वो भी बोले कि ये तो आपने बहुत अद्भुत काम किया हुआ है। तो बोले आप एक काम करिए, कल हमारी मीटिंग है।
1: अच्छा,
0: जिसमें हम लोग जो प्रकाशन होता है उस पे निर्णय लेते हैं, आप मुझे इसका एक पांडुलिपि बना के दीजिए।
1: अच्छा,
0: तो वो पूरा दिन मैंने उनकी फोटोकॉपी करवा के वो पांडुलिपि बनाई, दूसरे दिन जाके उनको दी। और तीसरे या चौथे दिन मेरे को फोन आ गया कि इसको तो हम छापेंगे और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से प्रकाशित होगी। आप इसमें जो भी काम कर सकते हैं पूरा करिए, हमारी टीम आपके साथ रहेगी
1: जी।
0: और मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल।
1: बिल्कुल, ये सिर्फ मेहनत के सार्थक होने का ही समय नहीं था बल्कि बहुत गौरव की भी बात थी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय उस मेहनत को, उस प्रयास को एक बहुत बड़ा सम्मान दे रहा था। जब किताब की बात आई है तो हम आपसे ये भी जानना ज़रूर चाहेंगे कि एक बहुत विस्तृत विषय में डूब कर जब अपन काम करते हैं तो दूसरे विषय की तरफ या दूसरी दिशा की तरफ, दूसरे आयाम की तरफ देख पाना बहुत आसान तो नहीं होता। फिर लेखन की तरफ कैसे आप लगातार काम करती रहें लेखन को लेकर भी?
0: ये बात सही है कि हम एक साथ दो नावों में सवारी नहीं कर सकते। जिस समय मांडना की बुक बन रही थी, किताब का पूरा काम चल रहा, तो करीबन एक साल चला वो काम। तो लेखन एक्चुअली क्या है, लेखन कहीं भी नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। ये मन के अंदर से जब तक वो भाव आपके अंदर नहीं आएंगे, और ये भाव तब आते हैं जब आप या तो बहुत ज़्यादा अवसाद में हों, दुखी हों, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, या वो मौसम बहुत खूबसूरत हो, आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ प्रकृति अपना पूरा सौंदर्य दिखा रही है आपको, ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं या बहुत सारे कारण होते हैं तब आप लिखते हैं। तो ऐसा नहीं कि लेखन रुका, ऐसे अवसर बहुत आए कि जब मन दुखी हुआ या मन ने कुछ और सोचा, और ऐसा नहीं कि दुख होता तभी हम लिखते हैं, हम खुश होते हैं तब भी लिखते हैं। तो मन को हल्का करने का एक साधन है लेखन। तो ये जो लेखन है, ये डायरी मैं बचपन से ही लिखती हूँ, तो ये सारा लेखन उसके साथ साथ चलता रहा। बस ये बात अलग है कि उस लेखन को एक दिशा देने का काम उस समय नहीं हुआ जिस समय यह किताब छप रही थी, क्योंकि कोई भी लेखन जब तक उसको 25 बार पढ़ा ना जाए, जब तक मांझा नहीं जाए, तब तक वो एक कविता पूर्ण रूप नहीं लेती
1: जी।
0: तो वो लिखता गया लेकिन वो सामने बाद में आया,
1: यानी बीज मन के भीतर पड़ा हुआ था, लगातार उसको अनुकूल मौसम मिल रहे थे,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: पुष्पित पल्लवित अपने समय से हुआ और उसकी खुशबू हम सब तक पहुंची। हम चाहेंगे कि आपकी कविताओं की कुछ खुशबू क्यों ना हमारे सुनने वालों तक भी पहुंचे, यदि कोई एक वानगी आप पेश करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: शुक्रिया। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं प्रकृति से बहुत प्रभावित रहती हूँ, मेरी रचनाएं भी प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं। सारी हवा, बादल, चांद, सूरज सब मेरे रचनाओं में है। और एक छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ
1: जी।
0: ये कविता भी आप सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रकृति है वही इंसान है, जो भाव इंसान के होते हैं वही प्रकृति में दूसरे तरीके से आते हैं। तो ये कविता का शीर्षक है हवा और बादल
1: जी।
0: कि हवा और बादल में दोस्ती बड़ी थी, हवा और बादल में दोस्ती बड़ी थी, और हवा कब से बादल के पीछे पड़ी थी। कि संग संग हमारे हमेशा ही रहना, धरा पर कहीं भी जरा ना बरसना।
1: अच्छा।
0: समंदर से उठकर आया था बादल और हवा संग नब पर छाया था बादल।
1: वाह।
0: हवा ये समझती कि उसका है बादल, और बादल का कहना कि जग का है बादल।
1: ओहो।
0: बादल ने देखी थी कमजोर काया, वो पिंजर से बेलों के नीचे की छाया, हल्को संभाल

0: भले वो नजरें गड़ाए, तकता था नपकों की बादल कब आए।
1: वाह,
0: करोड़ों की आशाएं बादल पे ठहरी कि बरसेगी बरसेगी अब जल लहरी। करोड़ों की आशाएं बादल पे ठहरी कि बरसेगी बरसेगी अब जल लहरी। बादल के आंसू छलकने ही वाले कि हवाओं ने तोड़े बंधन के ताले। जाओ रे मेघा, जाओ रे मेघा, तुम जम के बरसो, न खुद को जलाओ न यूं आज तरसो। जो तुम जम के बरसे तो भीगेगा कण कण, भीगेगी धरती और भीगेगा तन मन। भीगेंगी शाखें वो पत्ते वो डाली, हरी होगी धरती और झूमेगी बाली। उतर कर पहाड़ों से नदियाँ बहेंगी,
1: वाह,
0: उतर कर पहाड़ों से नदियाँ बहेंगी। धरा भी हरी हो के सबसे कहेगी कि बरसी है जम के, कि बरसी है जम के, नहीं रुकने वाली हवा और बादल की जोड़ी निराली।
1: वाह वाह, बहुत खूब। हम उम्मीद करते हैं कि ये कविता सभी सुनने वालों को बहुत बहुत पसंद आई होगी, और हम ये चाहेंगे कि कला की, सृजन की और आपके मन की जोड़ी भी यूं ही बरकरार रहे और कुछ बेहतर सृजन हम सब तक पहुंचते रहें। जब भी कला की बात होती है, हम आसपास की या हमारे पृष्ठभूमि की बात करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि जितना हमें देती है उतना हमसे मांगती भी है
0: जी।
1: तो घर परिवार में जब तक माता पिता के घर तक एक अलग तरह का माहौल होता है, शादी के बाद अपने पति के साथ, जैसा आपने कहा कि कोयले खदानों की, कोल माइंस के उधर उनका काम था, वहाँ फिर उनका काम भी बहुत अलग तरह का था, वो एक ख्यात चिकित्सक हैं, तो इन सारे पड़ाव को आपने किस तरह पार किया या किस तरह महसूस किया?
0: मेरा मानना है कि समय के साथ आपको चलना चाहिए तो आपको तकलीफ नहीं होती
1: जी।
0: ग्वालियर जैसे शहर से निकलकर मैं राजगढ़ जैसी जगह पर जब आई, जो एक गांव से थोड़ा ऊपर था, तो वहाँ ये नहीं लगा मुझे कि मैं ऐसी जगह पर आई हूँ, एक शहर से। वहाँ भी मैंने मांडना पर काम किया, मतलब मैं उस रूप में ढल गई
1: जी।
0: और जहाँ हम जब कोयला खदानों में पहुँचे, जहाँ पर मतलब आप सोचिए कि दूर दूर तक सिर्फ खदानें होती हैं, जंगल भी कम होते हैं, नए पौधे होते हैं, और वहाँ शहर जाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा दूरी पर है, घर आने के लिए आपको कम से कम 4 ट्रेन बदलनी होती थी उस समय।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उस समय बड़ी ट्रेनें नहीं चलती थी
1: जी, जी।
0: तो वहाँ मैंने उस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया। वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने को मुझे वहाँ मिला। हम लोगों का वहाँ एक महिला मंडल हुआ करता था जो समाज सेवा के कार्य करता था, और उसके साथ मैं जुड़ गई थी यूनिसेफ से, यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड फंडरेंडिंग कैंपेन से। तो हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर टीवी पेशेंट और कुष्ठ रोगी पेशेंट्स का एकत्रित किया। चूंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे और मेडिकल फील्ड में थे, तो उनकी सहायता से हम लोगों ने उन पेशेंट्स का इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद जरूरी ये होता है कि हम किसी को ठीक तो कर दें, लेकिन वो जीवन यापन कैसे करेगा, तो उस पे ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया। फिर उनको हमने हमारे महिला मंडल से बकरियाँ दिलाईं, करघा लगवाया कि भाई आप ठीक हो गए हो, अब आप अपना कमाइए और अपना जीवन यापन कीजिए। तो इन सब कामों में बहुत आनंद आया
1: जी।
0: अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है उनको एक पौष्टिक भोजन देना। तो हम लोग एक पाउडर बनाते थे, शक्ति पाउडर, ये यूनिसेफ की तरफ से हमें सिखाया गया था। तो वो शक्ति पाउडर में प्रोटीन बराबर हो, तो गेहूं, चना, मूंगफली, सोयाबीन को मिला के हम लोगों ने एक चक्की भी डाल ली थी।
1: अच्छा,
0: महिलाओं ने उसमें पिसवाते थे हम, और उनके पैकेट बना के सुबह 5 बजे दूध के साथ हम उनको देने जाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, भीगा हुआ चना, वो पैकेट
1: जी,
0: एक ग्लास दूध, और उन सबको वहाँ अपने सामने खिला के फिर आते थे। तो इस तरह से ये बिलासपुर में किया। सिंगरौली में रहे तो वहाँ हम लोगों ने करघा डालवा दिया था, तो करघे पे चादरें, टॉवल ये बनती थी। तो इस तरह से जहाँ रहे वहाँ बहुत खुशी खुशी ये सारे काम किए। तब ये सब दिमाग में नहीं आया कि लिखना भी है या चित्र भी बनाना है। जहाँ रहे वैसे काम,
1: मतलब जीवन के चित्र बन रहे थे, वो कागज पर थे, लोगों के मन में थे, उनकी स्वास्थ्य के साथ बेहतर स्वरूप में आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सृजन तो हो रहा था अपने विविध रूपों में,
0: रूप बदल गया
1: जी। इसीलिए मुझे भी ये संशय था कि मैं आपका परिचय किस रूप में दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके नजदीक रहकर जानी, सुनी और समझी हैं। यहाँ पर आपने ज़िक्र किया, राजगढ़ का, नरसिंहगढ़ का, सिंगरौली का, बिलासपुर का, कोल माइंस जहाँ जहाँ है लगभग मुझे लगता है वो सारा एरिया देखा होगा। ग्वालियर आपका घर था, भोपाल से नाता कैसे जुड़ा?
0: ये भी एक प्रारब्ध कहते हैं ना, भगवान जो एक आपकी किस्मत का लिखता है हम लोग नहीं जानते। ये मेरे हस्बैंड जब रिटायर हुए तब हम लोग धनबाद में थे, धनबाद का जो कोल माइंस और वो सबसे कठिन माना जाता है
1: जी,
0: वहाँ से ये रिटायर हुए। चूँकि ये गांधी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर पंड्या जी थे
1: जी
0: और मदन मोहन जोशी जी थे, तो उन्होंने कभी इनको बोला होगा या परिचय इनका था तो उन्होंने बोला कि तुम आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ आके ज्वाइन करोगे। तो बस रिटायरमेंट के तीसरे दिन हम लोग भोपाल में थे, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। भोपाल आ गए, भोपाल की गली सड़कें मैं कुछ भी नहीं जानती थी। फिर मेरा ये नया दौर शुरू हुआ कि मैंने भोपाल को पहचानना शुरू किया, तो धीरे धीरे भोपाल से जो परिचित हुई
1: जी,
0: फिर मुझे मिल गया यहाँ हिंदी लेखिका संघ। हिंदी लेखिका संघ ने फिर मुझे एक नई दिशा दी, जहाँ मेरा परिचय हुआ भोपाल की जो बड़ी शख्सियत हैं जिनको विश्व पूरा जानता है, ऐसी लेखिकाओं को, मालती जोशी जी, मैरुनिसा परवेज जी, तो उनके साथ जब मैं जुड़ी तो मेरा लेखन नेचुरली बहुत अलग तरह से प्रभावित हुआ और मैंने लिखना शुरू किया। जो पहली पुस्तक मेरी आई 2009 में कविताओं की
1: जी,
0: और 2011 में उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया, तो ये ईश्वर की कृपा मानती हूँ मैं। और दूसरी पुस्तक मेरी आई 2016 में, जिसको 2017 में साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय पुरस्कार मिला
1: जी।
0: तो ये भोपाल की ही देन मानती हूँ मैं कि यहाँ आके मैं एक साहित्यिक संसार से मेरा परिचय हुआ और चित्र भी चलते रहे, मांडना भी हुआ। मांडना की पुस्तक आई मेरी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने प्रकाशित की, और ये कविताओं की पुस्तक भी आई, तो दोनों तरह से काम करती रही।
1: तो हमारा ये भोपाल आपको यूं ही फलता रहे, आप हमारे भोपाल को अपने चित्रकला, साहित्य और सेवा से समृद्ध करती रहें। बहुत विस्तार है इस विषय में और उसके हर आयाम पे सीमित समय में बात कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा
0: है।
1: तो हमें ऐसा लगता है कि आज की इस बातचीत को तो हम यहाँ विराम देते हैं, लेकिन जल्दी ही फिर कोशिश करेंगे कि आपके मांडने पर विस्तार से बात की जाए और उसके उस मर्म को समझने की कोशिश की जाए कि वो चित्र क्या बोलते हैं और कैसे वो हमें अपनी ओर बुला लेते
0: हैं। ये आपकी बात बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मांडना में इतना कुछ है बताने के लिए और बहुत ज़रूरी है सबको बताने के लिए कि वर्तमान में हम जितना ये पर्यावरण और इन चीज़ों कर रहे हैं, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज उसको पहले कितना सोच चुके हैं। मतलब उसमें आपको पेड़ पौधे, धरती, आकाश, वायु सबके लिए, हमारे जो पंच तत्व हैं उन पंच तत्वों का पूरा उसमें समावेश है
1: जी।
0: और इसलिए ये लोक कला जो है ना, जो बनी वो शायद इसी से प्रेरित होकर बनी, पर आज हम उसको भूल रहे हैं, तो उसको वापस में उतना ही संग्रहित करके उसका प्रदर्शन होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए
1: जी।
0: तो ये मेरा प्रयास है, अभी चल रहा है।
1: आपका प्रयास निर्बाध आगे बढ़ता रहे, लेकिन हमारी और सभी सुनने वालों की तरफ से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगी कि कलाओं का ये प्रदर्शन आपकी तरफ से भी हो, यदि तो हम सब लाभान्वित होंगे, उन्हें देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और फिर आपसे एक मुलाकात का वादा है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम इनसे मिलिए मैं, अब हम आपसे और सभी सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम इनसे मिलिए मैं अभी आप सुन रहे थे चित्रकार एवं बाल साहित्यकार श्रीमती अनीता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने जाना कि राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्न सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच गया, जहां की राजा आदित्य सेन के यहाँ भुवन मोहिनी आश्रय में थी। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहता था। चंद्रहासिनी की ओर आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। चंद्रहासिनी ये जानकर भी विवाह करने को तैयार थी। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के पिता सम्राट द्युम्न सेन ने सभी भारतीय खंड राज्यों की सभा बुलाई, जिसमें हूणों से लड़ने के लिए भारतीय सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा की सभा में हूणों के अपमानजनक प्रस्ताव को पढ़ा गया। आमात्य ऋषभ देव ने कहा कि युद्ध टालने के लिए चंद्रहासिनी को समर्पित कर दिया जाए। ये सुनकर भुवन मोहिनी ने क्रोध में आकर ऋषभ देव का सिर काट दिया। उसके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। राजकुमार के सेनापतित्व में हूणों से युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। विजय के बाद विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया और वो सम्राट बना। अब आगे क्या होता है, सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी में।
1: चंद्रहासिनी के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया। धारा नगरी लौटकर सम्राट ने स्वयं संन्यास ले लिया और मुझे सम्राट की गद्दी सौंप दी। आज मेरे पास सब कुछ है। भारत समस्त खंड राज्यों के नरेशों का एक सुदृढ़ संघ बन चुका है और मैं भारत का सम्राट हूं। सत्ता और शक्ति की अविरल धारा बहने लगी है, परंतु फिर भी एक रिक्तता है। भुवन मोहिनी चंद्रहासिनी को साम्राज्ञी बनवाकर राष्ट्र की सुप्त नारियों को जगाने के कार्य में संलग्न हो गई। स्वप्रेरणा से या मुझसे दूर जाने के लिए नहीं जानता। यद्यपि मैं प्रजा के हितार्थ कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मेरी आंखें सदैव भुवन मोहिनी को ही खोजती रहती हैं। प्रत्येक क्षण लगता है कि वो द्वार पर आकर खड़ी हुई है और कहती है,
2: आपने याद किया सम्राट विजय श्रवा?
1: इस ध्वनि को सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूं। कब आओगी भुवन मोहिनी, तुम कब आओगी मुझसे मिलने?
2: मैं आपके ही कक्ष में हूं देव।
1: आहा, भुवन मोहिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे कक्ष में मेरे सामने हो। ना जाने कितने दूत मैंने तुम्हें खोजने के लिए भेजे, सब लौट कर यही बताते रहे कि तुम नहीं मिली। क्यों क्यों भुवन मोहिनी, तुम मुझे भूलकर मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? क्यों चली गई? वो तुम ही हो ना जिसने राजकुमारी चंद्रहासिनी को मेरे जीवन में बलात् प्रवेश कराने की अनवरत चेष्टा की। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमको खोना होगा। मैं दृष्टि फाड़ फाड़ कर सूने पथ पर तुम्हारे बढ़ते चले आने वाले महायान की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अपने अंतर की उस विवश आकुलता को दबाकर, किंतु जब तुम्हें नहीं देख पाता तब एक पश्चातापूर्ण भाव

0: भावना जीवन में खुलकर कहती है, सब व्यर्थ है, मेरे जीवन के कर्म सब व्यर्थ हैं, मेरी दहकती हुई वक्ष भूमि ज्वालामुखी का उद्गार बन जाती है।
1: सम्राट, जिस तरह से आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है।
0: बिना मेरी आज्ञा के
1: सर्व कल्याण के लिए आप जैसे कल्याणकारी सम्राट की आज्ञा आवश्यक नहीं है। सम्राट,
0: मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं चाहता। भुवन मोहिनी,
1: आपकी उद्विग्नता साम्राज्य की निकटता समाप्त कर देगी। सम्राट, आप उन्हें अवसर तो दें। चंद्रहासिनी आपकी पूजा करती हैं, आपको देवों से भी बढ़कर मानती हैं। मेरा क्या है, मुझे आपकी दया ने एक नर्तकी से राष्ट्रभक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे लिए यही आशातीत है। इससे अधिक की ना तो मुझे कोई अभिलाषा है और ना ही कामना। मुझे आज्ञा दें सम्राट, मेरे सामने बहुत कार्य हैं। आपसे प्रार्थना है कि बिना किसी प्रयोजन के मुझे ना बुलवाया करें। प्रणाम।
0: भुवन मोहन।

क्या भुवन मोहिनी को सम्राट ने बुलवाया था? मेरी प्रियतम, क्या मैं अपना समस्त प्रेमदान देकर भी उस आग की ज्वलनशीलता को कम नहीं कर पाई जिसे भुवन मोहिनी की स्मृति ने दहका रखा है? आह स्वामी, मैंने भूल की है। मैंने अपने सुख के लिए आपके और भुवन मोहिनी के जीवन की होली जला दी है।

0: अरे देखिए ना, ये नन्हे कुंवर के गालों पर ये लाल लाल क्या हो गया है?
1: छोटे बच्चों को ऐसा हो जाया करता है साम्रागी, इसमें परेशान मत हो।
0: अरे अरे रे रे रे, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। अरे नहीं, चुप हो जा बेटे।
1: आज भुवन मोहिनी आ रही है।
0: अच्छा,
1: हाँ, मैंने बुलवाया है, आती ही होगी। 5 वर्ष बाद आज उसके दर्शन होंगे।
0: मैं भी अपनी सखी को देखने के लिए आकुल हूं सम्राट।
2: सम्राट की जय हो।
1: अरे भुवन मोहिनी, आओ, तुम्हारी ही चर्चा। कितना परिवर्तन हो गया है तुम में। तुम तो साक्षात योगिनी बन चुकी हो।
2: अरे कितना नन्हा देवोपम, कोमलता का प्रतिरूप। बधाई हो बहन चंद्रहासिनी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए।
0: अरे छोड़ो सखी, इतना ही दुलार था तो पुत्र जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई?
2: मेरा रोम रोम इन्हें आशीर्वाद दे रहा था, परंतु मैं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं निकाल सकी। मेरी त्रुटि को क्षमा करना बहन। आ आ हाँ, मेरे पास आएंगे। आइए ना, आइए, दो ना बहन।
0: हाँ, ये लो, जा, तू भी भुवन मोहिनी की गोद में ही रहा कर। ना जाने कब से तेरे पिता इनके नाम की माला जपते रहे हैं, अब तू भी पिता की भांति मेरा तिरस्कार कर।
1: साम्राज्ञी,
2: ऐसा ऐसा मत कहो बहन। सुना भुवन मोहिनी।

0: ये वही राजकुमारी है जिसको सुखी बनाने के लिए तूने अपनी प्रेम आकांक्षाओं को होम कर दिया। फिर भी राजकुमारी तेरी प्रति कृतज्ञ नहीं है।
1: लाओ मुझे दो, मेरा कुमार है, कहीं इसे भी तुम्हारी गोद की आदत ना पड़ जाए। चलेगा दूध पीने? आ चल तुझे दूध पिला दूं। मैं तेरी माँ हूँ सम्राट पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ। आ आ आ चल।
2: क्षमा मांग सकता हूँ तुमसे भुवन मोहिनी?
0: कुछ मत बोलिए आप, बहुत कड़वी घूंट पी चुकी हूँ, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट अभी तीर्थाटन पर गई थी।
2: कभी अपनी तूलिका से तुम्हारा चित्र बनाया था।
0: नारी सेवा के काम में लग गई हूँ।
2: निर्वासित होते समय तुम्हारा वो मुखड़ा अभी भी मुझे याद है।
0: मैंने अब तक 8 आश्रम आरंभ करा दिए हैं सम्राट।
2: भुवन, कहीं नहीं जाना है तुम्हें।
0: क्यों?
2: इसलिए कि राजकाज से अवकाश मिलने पर जब कभी तुम्हारी पागल स्मृति कौंधती है तब मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है और कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे विवश करके चंद्रहासिनी को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी कि तुम मुझसे विलग रहो?
0: तो इसमें बुराई क्या है मेरी सम्राट? आपके दाम्पत्य जीवन में मेरी उपस्थिति सर्वदा बाधक होती और हमारी सम्माननीय साम्राज्ञी समझती कि मैं उनके सरस जीवन में अपनी उपस्थिति से विष घोल रही हूं। आज मुझे संतोष है कि निरंतर 5 वर्षों तक आपसे दूर रहकर मैंने अपने को अपराधिनी बनने से बचा लिया है।
1: ये झूठ है, मुझे फुसलाने का एक विषैला षड्यंत्र है।
2: चंद्रहासिनी!
0: राजकुमारी क्षमा करो, पिछले 5 वर्षों में धारा नगरी में मेरी उपस्थिति अधिक से अधिक मात्र 1 माह की हुई होगी। तब मैं अपने पागल मन को नहीं रोक पाती थी, सबके दर्शन के लिए 2-4 दिन रुक जाती थी। किंतु मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि मैंने आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में विष घोलने का षड्यंत्र किया। आज भी अपराधिनी सिद्ध होने पर मैं सहर्ष कठोर से कठोर दंड स्वीकार करूंगी।
1: जिसके शीश पर भारत सम्राट का वरद हस्त हो उसे दंडित करने का अपराध कौन मोल लेगा?
0: असत्य है राजकुमारी, जिस अपराध का संदेह तुम मुझ पर आरोपित कर रही हो उसे हृदय चीर कर दिखला सकती तो अवश्य दिखलाती कि तुम्हारे प्रियतम को अपनी ओर मिलाए रखने का मैंने कोई कुचक्र कोई षड्यंत्र नहीं रचा। हाँ, मैं सम्राट को नहीं रोक पाती कि वो अपनी ममता की धारा मुझ पर ना उड़े ले।
1: यही यही तो काटा है जिसे दूर होना चाहिए।
2: पा लिया ना तुमने भुवन मोहिनी वो परिणाम जिसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। चंद्रहासिनी आज भारत की साम्राज्ञी है, वो तुम जैसी तुच्छ नारी के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकती। उसे वो क्षण भूल गए जब दीनहीन याचक की भांति तुम्हारे सम्मुख नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रणयदान के लिए अपना आंचल फैलाए हुए थी। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुरा रही है।
1: भुवन मोहिनी, मेरी बातें जितनी तुम्हें असहाय नहीं होंगी उससे कहीं अधिक भारत सम्राट को दुखा रही हैं। अरे अरे मुझे क्षमा करो, कहीं इन बातों का बदला मुझसे चुकाया गया तो मैं किसका सहारा खोजूंगी? कम से कम तुम्हारा पक्ष तो भारत सम्राट ग्रहण कर रहे हैं ना भुवन मोहिनी? उन्होंने अभी अभी स्वीकारा है कि तुम्हारे दया के कारण मैं साम्राज्ञी बनी हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी दया ना लेती? राजकुमारी होने के कारण किसी न किसी राजकुमार की जीवन संगनी तो होती ही ना, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सम्राट भी मुझ पर कृतज्ञता का बोझ लादकर कह रहे हैं यदि तुमने मेरे साथ सदैव व्यवहार ना किया होता तो वो संभवतः मुझे स्वीकार ना करते।
2: हाँ हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई संदेह भी मत रखना चंद्रहासिनी।
1: देख लिया ना भुवन मोहिनी, क्या मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन में भयानक प्रहार होते हैं? कहा था ना मैंने,

0: साम्राज्ञी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर।
1: साम्राज्ञी से क्षमा याचना करके मुझे अधिक लज्जित मत करो भुवन मोहिनी। तुमने तुमने कोई अपराध नहीं किया, सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हारे अतुल स्नेह के प्रति भयानक अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे समर्पित जीवन को कुचलकर नीरस बनाया है। मैं ही तुम्हारे मरु जीवन में झंझावात पैदा करने वाला भयानक स्वार्थी और लोलुप व्यक्ति सिद्ध हुआ हूं। चलो, आज से मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करूंगा। चंद्रहासनी साम्राज्ञी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं स्वयं सम्राट पद का परित्याग कर तुम्हारे साथ राह राह का भिखारी बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धत प्रेम जो हमारी दृष्टि में हमारा अपमान करने पर तुल जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अंततः साम्राज्ञी भी एक नारी है, सर्वदा अवध आदंडनीय। अस्तु, मैं आज से ही साम्राज्ञी से दूर रहूंगा ताकि उन्हें किसी प्रकार हमारे प्रति क्षोभ न उत्पन्न हो। चलो भुवन मोहिनी।
0: सम्राट,
1: मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता भुवन मोहिनी, चलो।

हम राजप्रसाद के इस खंड में रहेंगे, याद है ना? यहीं पर मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था। किशोरावस्था से लेकर सम्राट होने तक मेरा आवास यही प्रखंड था। कोलाहल से दूर एकांत में, और तुम्हें मेरी सौगंध है भुवन मोहिनी, तुम इस योगिनी स्वरूप का परित्याग करो। एक बार फिर से मुझे उस स्नेह वारुणी से उन्मत्त हो लेने दो, जिसे पीकर मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भयानक शून्यता आ रही है, और मैं अपने को उसी नीरव शून्यता में विलीन करता जा रहा हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी अपने सौंदर्य मद में प्रतिपल पागल हो रही हैं, और वो समर्पण का ढोंग रचकर प्रतिक्षण मेरे समर्पण की उपेक्षा करती जा रही हैं। मैंने किसी प्रकार 5 वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पर व्यतीत कर डाले हैं, किंतु चंद्रहासिनी कभी भी सौंदर्योन्माद के विषैले नशे से बच नहीं सकी। वो महानता की उपासिका हैं, जबकि मैं अस्तित्वहीनता का। भुवन मोहिनी, आह, तुम्हारे स्पर्श में अभी भी वही मादकता है, वही विद्युत तरंगों से चपल भावनाओं का मायावी उन्माद, वही प्राणों में कंपन और सिहरन पैदा करने वाली प्राकृतिक वासना का स्फुरण। प्रिय, तुम्हें ये रूप राशि इसलिए नहीं प्राप्त हुई है कि मैं उसे देखकर आत्मविभोर हूं। अप्राप्य की भांति तुम्हें ना प्राप्त कर सकने की छलना में निरंतर जलता रहूं। बोलो भुवन मोहिनी, मैं चंद्रहासिनी के रूप की उत्पत्त गरिमा को बुझा दूंगा यदि तुम्हारा संबल प्राप्त हो। यदि एक बार तुम इस असमय के वैराग्य को ठुकरा सको, अन्यथा ये अतृप्त अनंत जीवन की वासना बनकर मुझे क्षुब्ध करती रहेगी, और मैं लुब्ध मधुप की भांति तुम्हारे रूप की यश गाथा को मन ही मन गुनगुनाते हुए उद्भ्रांत बना रहूंगा। मुझे चाहिए तृप्ति, तुम्हारे अक्षय यौवन के उपभोग की पूर्ण स्वीकृति, अन्यथा मैं माननी चंद्रहासिनी के साम्राज्य को ठुकरा दूंगा। चंद्रहासिनी को चाहिए सत्ता और शक्ति, वो उसे मैं स्वेच्छा से प्रदान कर विरक्त हो जाऊंगा। आज चंद्रहासिनी की गोद में साम्राज्य के सिंहासन का प्रतिनिधि खेल रहा है, वो उसके रंग में रंगकर मुझे भूल सकती हैं और मेरी उपेक्षा भी कर सकती हैं, किंतु तुम बोलो,

0: क्या तुम भी मेरी उपेक्षा करना चाहती हो? क्या तुम भी मेरे जीवन में मात्र छलना सिद्ध होना चाहती हो? बोलो भुवन मोहिनी, बोलो, तुम मुझसे घृणा करती हो?
1: नहीं,
0: तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो?
1: नहीं,
0: क्या तुम्हें मेरी वासनात्मक वृत्तियों के प्रति रोष है?
1: नहीं,
0: क्या कभी तुमने अंतर की निगूढ़तम प्रकोष्ठ में मेरी मूर्ति बिठाकर कभी पश्चाताप करना चाहा है?
1: नहीं,
0: क्या कभी तुमने मेरे लिए सर्वस्व उत्सर्ग ना करने की शपथ ली है?
1: कभी नहीं।
0: तो क्या कभी मेरी आसक्ति पर तुम्हें भय या रोष उत्पन्न हुआ था?
1: कभी नहीं।
0: क्या तुम सदैव मुझे देवत्व पर प्रतिष्ठित रखने के बोझ से दबी रही हो?
1: कभी नहीं देव।
0: तो क्या कभी तुम्हें चंद्रहासिनी के जीवन संगिनी बनाने का आंतरिक क्षोभ हुआ है?
1: कभी नहीं।
0: तब मायावनी, तब सच सच कहो, मेरी छाया से ही भयभीता बनकर मुझसे दूर क्यों भागती रही हो? क्या मुझसे प्रेम करने का तुम्हारा हार्दिक उल्लास अब मर चुका है?
1: नहीं, किंतु
0: तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझसे गोपनीय बनकर रहने की धृष्टता ना करना। मैंने तुम्हारे सम्मुख अपना अंतरपट खोल कर रख दिया है। मैं तुम्हें पाप पुण्य की भावना से विलख रख कर प्यार करता रहा हूं, और आज मैं प्यार के बदले प्यार ही चाहता हूं।
2: आप तो प्यार पा ही रहे हैं सम्राट। भुवन मोहिनी आपकी गोद में अल्लड़ बालक सी मचल जो रही है।
0: ऐसी ही बैठी रहो भुवन मोहिनी। साम्राज्ञी, तुमने मेरे एकांत में पहुंचकर भीषण अपराध किया है। सावधान, अब तुम्हें अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, नेत्रों में आग भर के देखो, आज से मेरी गोद में प्रणय लीला रचाने वाली भुवन मोहिनी पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी है। तुमने मुझसे जो प्रणय दान चाहा था, वो भी भुवन मोहिनी का उच्छिष्ट था। भुवन मोहिनी की अनिच्छा देखकर भी मैं उसे अपने प्रेम दान से विभूषित करूंगा।
1: सम्राट,
0: भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी, कहाँ जा रही? रुक जाओ भुवन मोहिनी।

हे मेरे जीवन के शत शत सहस्त्र लक्ष विद्रोह के स्फुलिंगो, तुम एक बार एकाकार होकर प्रलयंकारी महाज्वाल बनकर धधक उठो। असीम वेदनाएं, अगणित निराशाएं, तीव्र जलन और घोर हाहाकार जीवन को इतना रुला चुका है कि अब आंसू सूख गए हैं। विद्रोह प्रबल हो उठा है, हमारी रग रग में एक ज्योति जलने लगी है। जीवन चाहता है कि उसी में भस्म हो जाए, मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कोई अवशेष न बचे। अपने भौतिक अस्तित्व पर अभिमान करने वालों को मैं बता जाऊं कि कैसे मरना होता है। आत्महनन करके मैंने जो पुण्य कमाया था वो तो मानो आत्मछल था, वो सर्वदा अपने आप को धोखा देती रही। किंतु आज अंतर तारों से जो चीत्कार प्रतिध्वनित हो रहा है वो मानो करुणा सागर में जीवन की समाधि लगा देगा। चंद्रहासिनी के लिए मुझे अपने सुख का परित्याग करना पड़ा था, चंद्रहासिनी के लिए दान कर डाला था अपने प्रीतम प्रणय के अनंत बसंतों को। यदि यदि मैं समझ पाती कि उस प्रतिदान का परिणाम आंसुओं में जीवन को विगलित कर देना है तो क्यों अपने मिलन भरे वसंत में पतझड़ लाती। काश मैं ना समझती कि प्रेम की पीड़ा से छटपटाने वाली एक सुंदरी राजकुमारी ने मेरे ऋतुराज को छीनकर अपना वसंत मनाया है। आज मैंने चंद्रहासिनी की दृष्टि में प्रेम की असहिष्णुता का दर्शन किया। वो तो मानो मेरे प्रणय की प्रतिस्पर्धिनी बनकर उग्र प्रतिकार के लिए तत्पर है। किंतु दूसरी ओर मेरे प्रियतम विजय श्रवा की आकुलता घुन सी मेरे जीवन की सुख शांति और समृद्धि को चूर चूर कर रही है। अब मेरे सामने मात्र दो रास्ते हैं, या तो मैं चंद्रहासिनी की सर्वत्र उपेक्षा करके विजय श्रवा के जीवन को मधुमेह वसंत के मादक हिलोरों से भर दूं, या अपने जीवन का अंत करके

0: सम्राज्ञी के महल के सभी दासों और परिचारिकाओं सुन लो, अब तुम्हें सम्राज्ञी की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रहासिनी, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूं। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए?
1: सम्राट,
0: मैं तुम्हें शारीरिक दंड न देकर मानसिक दंड दूंगा। मैंने तुम्हें साम्राज्ञी पद पर प्रतिष्ठित करके भयानक भूल की है। एक अकृतज्ञ नारी हो तुम। जाओ, आज से तुम साम्राज्ञी पद से वंचित की जा रही हो।
1: नहीं,
0: मैं आज ही आदेश देता हूं कि समस्त साम्राज्य की प्रजा तुम्हें राजकुमारी चंद्रहासिनी के नाम से संबोधित करे, ना कि साम्राज्ञी।
1: नहीं सम्राट,
0: तुम्हें मेरे राज प्रासाद को भी त्यागना होगा।
1: परंतु सम्राट,
0: तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर गर्व है ना? तो जाओ, महाराज आदित्य सेन की लाडली बनकर इंद्रप्रस्थ के राजमहल को सुशोभित करो। तुम जैसी माननी के लिए धारा नगरी के राजप्रसाद में कोई स्थान नहीं है।
1: नहीं, सम्राट।
0: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूं कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां एपिसोड। ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया।

0: किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे और US ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की देविका सहवाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कैलिफोर्निया के फुलटर्न में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका ने जापान की रिको गुंजी को हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मीडियम वेव DTH और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का। अब प्रस्तुत है युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, हम हर साल जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों के साक्षी हैं, जो विश्व भर के समाजों को तबाह कर रहे हैं। नदियां घरों को बहा ले जाती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोग वर्षों की मेहनत से अर्जित संपत्ति को खो देते हैं। यानी जलवायु परिवर्तन हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। इसकी गति को धीमा करने के लिए टिकाऊ जीवन शैली की आवश्यकता है। इस टिकाऊ जीवन शैली के प्रति जागरूकता में हरित कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, हरित कौशल का तात्पर्य उन ज्ञान, क्षमताओं और दृष्टिकोणों से है जो पर्यावरण के संरक्षण और एक स्थायी संसाधन कुशल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यवहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना है जिससे वो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत वनों की रक्षा, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य आते हैं। हरित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऊर्जा की बचत करना, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौशल भारत मिशन के तहत हरित कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों, हरित कौशल विकास के लिए कई कोर्सेज भी कराए जाते हैं। इसमें युवाओं को पौधों की पहचान, वन अग्नि प्रबंधन, जैविक खेती और जल बजटिंग जैसे अल्पकालिक कोर्स कराए जाते हैं। दोस्तों, अब करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत सिर्फ तुम फिल्म से उदित नारायण की आवाज में।

0: दोस्तों आइए अब हम हरित विकास के विषय में जानते हैं युवा श्रोता राहुल द्विवेदी से।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल। अक्सर जब भी हम तरक्की या विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, गाड़ियां और कंक्रीट के जंगल आने लगते हैं। सालों से हमें यह लगता आया है कि अगर प्रगति करनी है तो प्रकृति की बलि देनी ही पड़ेगी, लेकिन आज हरित कौशल यानी ग्रीन स्किल्स इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल रहा है। ग्रीन स्किल्स का मतलब है एक ऐसी सोच और ऐसा हुनर विकसित करना जहां विकास भी हो और हमारी नदियां, हवा और मिट्टी भी सुरक्षित रहे। आज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से लेकर इको फ्रेंडली कोडिंग तक हर फील्ड में इसकी भारी डिमांड है। अगर हम आज ग्रीन स्किल्स नहीं सीखेंगे तो हमारे पास डिग्रियां तो होंगी लेकिन जीने के लिए एक साफ सुथरी हवा नहीं होगी। जी हाँ, आज पूरी दुनिया हरित कौशल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र हो, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन, या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग। इन सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स और कुशल युवाओं की भारी कमी है। कंपनी अब सिर्फ युवाओं को ढूंढ रही है जो ना सिर्फ अपने काम में माहिर हो बल्कि यह भी जानते हो कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए। एक युवा होने के नाते अगर हम हमारे इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो हम ना सिर्फ अपने करियर को एक नई ऊंचाई देंगे बल्कि अपने इस खूबसूरत पृथ्वी के प्रति अपना फर्ज भी निभाएंगे। सिर्फ नौकरी पाने का एक जरिया नहीं है बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का एक आंदोलन है। असली समझदारी इसी में है कि हम ऐसी तकनीक सीखें जो हमारे बिजनेस को बढ़ाए और हमारे पर्यावरण को भी। याद रखिए, प्रगति वही है जो प्रकृति को साथ लेकर चले, वरना वो प्रगति विनाश में बदलते देर नहीं लगाती। इस बारे में जरूर सोचिए। शुक्रिया
0: दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

दोस्तों, भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को अनुसंधान विकास और नवाचार में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के विषय में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित ये मिशन सुरक्षित संचार, उन्नत कंप्यूटिंग और सटीक नेविगेशन के विकास पर केंद्रित है। ये एक 8 वर्षीय मिशन है, 2023 से 2030-31 तक। क्वांटम तकनीक के 4 प्रमुख क्षेत्रों क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री में अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और विभिन्न आईआईटी संस्थानों में विशेष हब स्थापित किए गए हैं। 5 से 8 वर्षों में 50 से लेकर 1000 भौतिक क्यूबिट तक मध्यम स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य उपग्रहों के माध्यम से 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक भारत के भीतर ग्राउंड स्टेशनों के बीच पूरी तरह से सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित करना है। दोस्तों, वर्तमान में पारंपरिक एन्क्रिप्शन सिस्टम क्वांटम कंप्यूटरों के हमलों से असुरक्षित हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग प्रणाली को हैक प्रूफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत नमक हलाल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार सूचना की ओर। भारतीय नौसेना ने एसएससी अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ये भर्ती 275 पदों के लिए है। प्रारंभिक तिथि 25 जून 2026 और आखिरी तिथि 27 जुलाई 2026। उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच का हो।

होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बी या बीटेक 60% अंकों के साथ। अगली भर्ती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए। कुल 1500 पद हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 18 जून 2026, आखिरी तिथि 8 जुलाई 2026। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता है किसी भी स्ट्रीम में स्नातक। दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaanirewa@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब पेश है फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में संघर्ष फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत बनाया था जतिन ललित ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है प्यार तो होना ही था इस फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने, गीत के बोल लिखे हैं विनोद महेंद्र ने और संगीत है जतिन ललित का।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

श्रोताओं, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे विनोद महेंद्र का लिखा हुआ, माफ़ी चाहती हूँ, मैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम था कभी हाँ कभी ना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने। फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। यह है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित की। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फिल्म संगीत।

भाग मिल्खा भाग, अभी आप सुन रहे थे। इस फिल्म में श्रेया घोषाल और जावेद बशीर को, प्रसून जोशी का गीत था और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। अब सुनते हैं सनम तेरी कसम फिल्म में हिमेश रेशमिया को, समीर रंजन का गीत है और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे कबीर सिंह फिल्म का गीत सचेत टंडन की आवाज़ में। इरशाद कामिल का गीत था और संगीत था सचेत परंपरा का। सुनते हैं नमस्ते लंदन फिल्म का गीत, जिसको गाया है हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे हमने लिया है थप्पड़ फिल्म से। इस गीत को गाया है राघव चैतन्य ने। शकील आजमी और सोना मोदत्ती का गीत है और अनुराग शेक्या का संगीत है।

इस फिल्म में आप सुन रहे थे मिठू, अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला को। इस गीत को संगीत दिया था और गीत भी लिखा था मिठू ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है रंग दे बसंती फिल्म से। इस गीत को गाया है मधुश्री अय्यर और मधुश्री और नरेश अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीत है ए आर रहमान का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है राजनीति फिल्म से। इसे गाया है आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकोलसन और शशि ने। समीर का गीत है और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ओमकारा फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज की आवाज़ में। गीत के वो लिखे हैं गुलजार ने और संगीत बनाया है विशाल भारद्वाज ने।

0: श्रोता भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक

0: शेयर होल्डर।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम आपको आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रम बता दें। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम को 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। प्रायोजक होंगे विकास दर्शन। रात्रि 8 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 8:15 पर सुनिए पॉडकास्ट सीरीज में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका एपिसोड नंबर 7। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8:35 पर। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए कार्यक्रम विज्ञान भारती। रात्रि 10 होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रभात मुखोपाध्याय से संतूर वादन। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको कल की तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सुहावने मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ सुबह 7:20 पर हम लेकर आते हैं हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:15 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत, कलाकार होंगे अर्जुन सिंह ध्रुवे और साथी। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधी अज्जी सुरहान। 10 वक्त होगा जिले की चिट्ठी का। सामुदायिक गान शिक्षण पाठ सुनिए 10:05 पर। और 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। कल सुबह 11 सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। दिन में 12 सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम संग्रहालय से आप सुन सकेंगे दोपहर में 12:30 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक भुवन मोहिनी का 10वां एपिसोड।

महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 1 बजे, प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के सौजन्य से होंगे। दोपहर 2 बजे आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। बच्चों का कार्यक्रम सुनिए 2:30 पर, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की होगी। शाम 5:02 पर सुनिए युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। शाम 5:33 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का और शाम 6 बजे पुनः आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

0: शाम 6:30 पर आकाशवाणी से सीधा रिले होगा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 10:45 पर सुनेगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव DTH और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मेराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की।

0: इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
1: आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही है हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंच। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी आगरमालवा में 3800 करोड़ का काम कर रही है, ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही है।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे, हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, 31-7 के पहले 7 स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी। और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारे 2-व्हीलर, ऑटो और 4-व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर जारी हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा

पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अब अपना कार्यक्रम चौपाल और उसके साथ साथ नन्हे मुन्ने कार्यक्रम फुलबगिया का आनंद उठाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चौपाल पर।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनबे वाले हमारे सभी भैया हरन को भौजी बिन्ना हरन को और संगे जो नौनिहाल बैठे हैं उन्हें हमारी तरफ से राम राम। तो भैया हरो देखो सबसे पहले आपके हाल चाल हैं, लेकिन जो अपने नौनिहाल बैठे हैं जो नन्हे मुन्ने बैठे हैं कार्यक्रम फुलबगिया के लाने, तो उनसे हम यही कहें कि तनक इंतजार करो, काहे से अबे बखत है अपने किसान भैया हरन से चर्चा करबे को। तो भैया हरो कैसे हाल चाल हैं आप सबके? अब भैया हरो देखो गर्मी तो जा टाइम खूब हो रही और पानी बरसवे के आसार दिख नहीं रहे, लेकिन आस है तो उम्मीद है ना कि वे बरसे हैं जरूर। अबे तनक तरसा रहे लेकिन वे पानी जरूरी ला है। काहे से भैया हरो देखो कहते ना कि पानी नहीं तो कछु नहीं, अब वो कहते ना कि बिन पानी सब सून, तो बात तो साँची है। अब गर्मी आते ही कुआं को पानी उतर जाता है, हैंडपम्प में पानी नहीं आता है, कितनी किल्लत सी हो जाते हैं, खेतन को पानी नहीं मिल पा है तो भैया फसलें भी सूख जाएं। तो सांची कहें तो गर्मी में पानी की परेशानी खूब ही हो जाते हैं। और जो है कि हम और एक का कर रहे हैं कि अभी भी नहीं सजग हो रहा है, सचेत रहे, का है कि अगर हम ज़मीन से पानी निकारत जाएं तो भैया का पानी के भंडार ख़त्म ना हुई है, तो काहे ना हम ज़मीन के अंदर पानी पहुँचावे की व्यवस्था नहीं कर रहे है ना भाई। ज़मीन के अंदर पानी डालवे को भी तो कभू आप उन्होंने सोची है कि नहीं सोची? तो भैया हरो आपके दिमाग में जो ख्याल आओ है कि जिज्जी जो कह रहे हैं कि कैसे ज़मीन के अंदर हम पानी पहुँचाएँ, कैसे ज़मीन के अंदर पानी डाल सकते हैं, कहा हम भगवान है का? तो भैया हरो भगवान तो नहीं आ तुम्हारे, पर भगवान ने हमें जौन बुद्धि दई है और दूसरे हर साल बारिश के रूप में जो अमृत जल दो है, तो जे जो अमृत जल है जो बारिश को पानी है ऊखो हम काहे नहीं सहेजत। तो भैया जो वर्षा को जल है जो बा को जो हम सहेजते वही तो संग्रहण वर्षा जल संग्रहण कही जाते हैं। अब देखो बरसात में जब पानी बरसत है बारिश के रूप में जब आते हैं तो बेकारी नालियन में बह जाते हैं है ना, तो तनक होशियारी दिखाएं और जो बारिश के पानी को हम ज़मीन के अंदर पहुंचावे की प्लानिंग करें। भैया अरे देखो अपने घर की छत पे जोन बारिश को पानी गिराते हैं बाय अपन पाइप से जोड़ के घर के बाहर एक सोखता गड्ढा बनाएं और बा में पानी को उतार दें। अब जी से का हुई है कि देखो जो पानी है वो सीधे ज़मीन के अंदर पहुंच जाए और दूसरे अपने खेतन के चारों ओर अपन ऐसे भी वर्षा जल को संग्रहण कर सकते हैं कि खेतन के चारों तरफ अपन ऊंची मेड़ बना दें जिसे खेत को पानी खेत में ही रोको रहे और पानी जब खेत में भरे तो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर समाए, तो उसे कहा है कि पानी ज़मीन के अंदर पहुंचे और दूसरे खेतन में नमी रहे सो अलग। तो भैया रो इन दिनों हम अपने गांव में एक काम जो भी कर सकत कि पुराने ताल तलैया हैं उनकी साफ़ सफाई करवा लें, बा में जोन गाद है कचड़ा है कूड़ा करकट है बाहर निकाल के हैं और फिर एक तरफ कर दें, तो उसे कहा हुई है कि बारिश को पानी जब बा में जमा हुई है तो भैया जी पानी अपन की खेती को काम है में काम आ है। और सबसे बड़ी बात भैया कि हम एक आपसे ज़रूर और कहें कि भैया हमें अपने आस पास पेड़ लगाने हैं, काहे से जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो माटी को बांध के रखते हैं, पानी को ज़मीन के अंदर भीतर उतारवे में मदद करते हैं है ना। तो अपने खेत की मेड़न पे रास्ता के किनारे और परती ज़मीन जितने भी भैया हो ज़्यादा से ज़्यादा पनौरे पेड़ पौधा लगाएं जो अपनी खेती के लाने भी अच्छे है और दूसरे अपने पर्यावरण को भी भैया अच्छा रखते हैं शुद्ध रखते हैं और संग संग बादलन को भी आकर्षित करते। तो भैया हरो सांची कहें तो जल ही जीवन है और ये वर्षा जल सहेजवे को काम भैया अगर कही जाए तो कौनो एक आदमी को नहीं है, हम सब को मिलके प्रयास करने हैं, हम सब की ये साझी जिम्मेदारियां हैं। और आज अगर अपन ने देखो भैया पानी नहीं बचाओ तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो पानी के लाने तरस जाए है, तो हम सबको मिलके यही संकल्प लेने हैं कि हमारे पानी की एक एक बूंद वर्षा की एक एक बूंद को सहेजवे को प्रयास करें, हम जागरूक भैया बने तभी हम दूसरों को भी जागरूक कर पाएं। और जागरूकता की भैया बात चली है तो आपको बता दें कि शासन भी हम और उनके फ़ायदे के लाने तरक्की के लाने कितने प्रयास करें, कितने की योजनाएँ बने चलाई हैं, कितने योजनाएँ शुरू करी है, तो अगर हम जागरूक ना हुई हैं तो भैया कैसे हम इन योजनाओं का लाभ उठा पाएँ? तो भैया आज अपन जानकारी ले है शासन द्वारा चलाई जा रही योजना जी को हम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जानते हैं। अब जैसे हमने कही ना कि हम औरन को जागरूक रहना चाहिए, काहे से शासन की योजनाओं की जानकारी हम औरन को जो है देखो समय समय पर रेडियो के माध्यम से मिलत रहते हैं और साथ साथ अखबारों में भी योजनाओं की जानकारी दी जाते हैं। तो भैया हमारे कई भैया और कहा है कि बड़े जागरूक होते हैं, वे अखबार पढ़ते हैं रेडियो सुनते हैं और शासन की जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनको सुन के लाभ भी उठाते हैं।
तो ऐसे ही भैया अपन और उनको जागरूक बनने हैं, शासन की जौन योजनाएं चल रही हैं अगर अपन उसे लाभ उठाएं तो देखो बासे अपनों ही फायदा हुए। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। भैया रो हमारे ऐसे भैया हरे जो नौकरी चाकरी ढूंढवे के लाने गाँव से बाहर जाते हैं, तो हम तो यही कहें कि अब कितों भी जावे की जरूरत नहीं है, अपने ही गाँव में कछु छोटो मोटो व्यापार कर लो, है ना, अपने घर बैठे शुरू कर सकते हो। और ईखों काम शुरू करवे के लाने भैया देखो का है कि चलो हम घर में बैठ के काम करें, लेकिन बात ये आते है कि पूंजी कहाँ से आए, तो भैया रो बिन पूंजी के धंधा तो होत नहीं है, है ना। तो हम जाए योजना के तहत अपनों काम शुरू कर सकते हैं। अब जैसे काम किराना की दुकान खोल सकते हैं, सिलाई कढ़ाई डेयरी, है ना, कछु भी काम नव काम शुरू करवे के लाने भैया हमें पूंजी की तो ज़रूरत पड़ती है, और ये पूंजी जो है हमें शासन लोन के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, और शासन भी हमें बिना गारंटी के लोन देते है ना। अब ई में कहा है कि देखो तुम्हें खुद अपनी गारंटी लेने हैं, है ना, तुम अपनी घर जमीन के आज के तुम्हें गिरवी नहीं रखना है, बस

तुम्हारा धंधा की जो तुमने प्लानिंग करी है, जौन काम शुरू कर वो चाह रहे हो, वह प्लानिंग अच्छी और सही होनी चाहिए, है ना। अब लोन की बात करें तो जीवन शासन तीन तरीका से लोन देते हैं कि पहलो होता है जामे देखो शिशु लोन। तो अगर तुम्हारा धंधा शुरुआती तौर पे तुम और शुरू कर रहे हो तो जामे शासन 50,000 रुपये तक को लोन देते हैं शिशु लोन के नाम से। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ही दूसरों है किशोर लोन। अब आपने धंधा अपना शुरू कर दो, आप जीखो और आगे बढ़ावो चाह रहे हो, है ना, तो जामे का है कि भैया पैसा चाहने अपन को, तो जामे अपन को 50,000 से 5 लाख तक को लोन मिलत है बैंक के माध्यम से। और भैया तीसरो लोन है तरुण लोन, यानी पहलो शिशु लोन, दूसरो किशोर लोन और तीसरो तरुण लोन। तो ई में का है अपनो काम धंधा अपन और आगे बढ़ावो चाह रहे हैं, बहुत अच्छो करवे चाह रहे हैं, तो जी में 5 लाख से 10 लाख तक के रुपए को लोन हमें मिल जाते। तो भैया ये तो हो गई हमारी कि कैसे हम बैंकों से लोन किन योजनाओं के किन का उसमें हम ले सकते हैं, कि काम अगर शुरुआती तौर पे तो हम किशोर लोन ले लें, काम हमारा अच्छा बढ़ गया है तो हम किशोर लोन ले लें, शुरुआती में शिशु लोन ले लें, और बहुत आगे हमें और लेके जाने तो हम तरुण लोन ले सकते हैं। अब लोन चुकावे की बात, तो ई में ब्याज की दरें बाकी लोन से कम होते हैं और लोन चुकावे में आपको 5 साल तक को समय मिल जाता है। तो हम तो यही कहें कि भाई जब शासन हम औरन की तरक्की के लाने इतना प्रयास कर रही है तो हम औरन को भी तो अपनी तरक्की के लाने सोचने हैं कि नहीं सोचने, है ना, तो हम भी प्रयास करें, है ना। जौन काम शुरू कर वो चाह रहे हैं, बाकी एक रूपरेखा यानी कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लें, है वामे कितों का खर्च हुई है, कितनी अपन खा कमाई हुई है, बस जा कि एक अपन ने रूपरेखा तैयार कर ली, एक अपन ने रिपोर्ट तैयार कर ली, अब फिर बार रिपोर्ट को लेके अपन पास के बैंक में जाएं और वहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन को के लाने फॉर्म भरें। और संग में संग में भैया एक चीज़ और कि अपनो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र और धंधा शुरू करवे की जगह के कागज जरूर जमा कर दियो। तो भैया हरो हाथ पे हाथ धर के बैठवे से कछु नहीं होवे वारो, है ना। आज ही पूरी प्लानिंग करो और जल्दी से जल्दी बैंक मैनेजर भैया से मिलके अपने सपने को साकार करो। तो भैया अब बखत हो रहा है कि अपने नन्ने मुन्नों से मिलवे को। तो देखो हम सब चलते हैं मिलके फुलबगिया की ओर, और हम तो यही कहें कि आपने जो आज हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जो आपको जानकारी दी है तो आप जी से लाभ जरूरी उठाओ। तो चलो चलते हैं अब अपन और फुलबगिया कार्यक्रम की ओर, लेकिन बात से पहले सुन लेते हैं ये विज्ञापन।

सबै बेटा हरनको बिटिया हरनको सबै बच्चन को आरती दीदी की तरफ से खूबई लाड़ दुलार। और बच्चों कैसे हाल चाल हैं तुम्हारन के? अब तो देखो स्कूल खुलवे वाले हैं तो तुम्हारे अपनी तैयारी में लगे हुई हो है ना भाई। स्कूल ड्रेस कितने धरी है, बाय निकाल के रख लो, बा में प्रेस लगा के धर लो है ना, पानी की बोतल, टिफिन, स्कूल को बैग कितने धरो हुई है, कहूँ कुन्ना में घुसो तो बाय निकाल लो, अच्छे धो धा के साफ सुथरों करके धर लो बाय है ना। और का है कि तुम्हारे अगर बाद के लाने बैठे रहो तो देखो भैया परेशानी तो मैं ही हुई है ना। तो स्कूल जाने हैं तो बाकी लाने भैया हम तो यही कहे कि कछु भी अपन का नानुकुर नहीं करने हैं, काहे से जो शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई है तुम्हारा उनके भविष्य की नींव आए है ना। पर ये नींव तभी मजबूत होते बेटा हरों जब तुम्हारे रोजीना स्कूल जाओ अपनी पूरी तैयारी के साथ। और बच्चों एक सही दिनचर्या बच्चों को अनुशासित और समझदार भी बनाते। तो सबसे पहले तो जा बात को ध्यान में रखने आए कि तुम्हारे रात में जल्दी सुबह की आदत डालो, काहे से जब टाइम पे सो हो तभी तो सुबह जल्दी उठ पाओ है ना। और यदि देर से सो हो तो देखो नींद पूरी ना हुई है, फिर स्कूल में आलस फैलात पे रहो है ना, तो पढ़ाई में को मन नहीं लगे सो अलग। तो अच्छे से टाइम पे सो और टाइम पे उठो। और दूसरे जब आप स्कूल जाओ तो देखो सवेरे जल्दी उठ के ब्रश कर लो, कुल्ला मंजन कर लो, साफ पानी से नहा धो लो, साफ़ सुथरी स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाओ। कैसे बच्चे ये आदत जो होते हैं आप लोगों को

कई तरह की बीमारियों से दूर रखते। और साथ साथ ये भी कहें कि देखो जब जूता पहन के जा रहे हो तो जूते में पॉलिश कर लो, बाल को अच्छे से कंघी कर लो, काढ़ लो अच्छे से, है ना। तो अगर आप और अच्छे रहो, साफ़ सुथरे रहो, तो खुद भी आपको ताजोपन लगे है और दूसरे माँ साहब भी देख के खुश हैं कि आहा हमारे मोड़ा मोड़ी स्कूल के जो है भी देखो कितने अच्छे तरीक़ा से आते हैं, कितने साफ़ सुथरे रहते हैं। तो ये तो अपनी साफ सफाई की बात हो गई बेटा हरो, अब बात आते हैं खान पान की। तो हम तो यही कहें कि सुबह खाली पेट हड़बड़ाहट में जल्दी भग के स्कूल नहीं जाने है, सवेरे कछु भी खा लो। अम्मा ने जौन सब्जी पराठा बनाओ हो, रोटी सब्जी बनाओ हो, दलिया है, पोहा है, कछु भी बनाओ है भैया, जरूर हमको खा के जाने हैं। संग में टिफिन भी लेके जाओ, है ना। अम्मा वामे जौन भी पौष्टिक चीज़ें धर दे, बाकी संगे संगे अम्मा से बोलो कि एक फल भी है जरूर है आपको दे दे, है ना। तो ये तो आपके खान पान की बात हो गई। और दूसरे बच्चों एक बात और कि बस्ते की तैयारी, है ना। अब वो भी हमें एक दिन पहले यानी कि रात में बस्ता लगा के रखना है, नहीं तो क्या हुई है कि अगर हम बस्ता नहीं लगाए हैं तो सवेरे हड़बड़ी रहे, चिल्ला चौंट रहे, तो उसे कहा है कि पहले से अपन एक रात पहले तैयारी लगा के रख दे, है ना। जौन अपनों स्कूल को टाइम टेबल बाके हिसाब से कापी किताबें पेन पेंसिल सब कछु बस्ता में धर लें, है ना। और जब स्कूल में पहुँचे हैं तो सबसे बेटा हरों मिलजुल के रहने हैं, है ना, गुरुजी की बात मानने और अच्छे से पढ़ाई करने। तो ये कछु छोटी मोटी बातें हैं बेटा हरो, जिन पे ध्यान दे के हम अपनों और अपने जो वे को समय है बिना कछु परेशानी के निकाल सकते हैं, है ना। और आप लोगों को दिन अच्छो गुजरे, पढ़ाई में आप और खूब होशियार बनो। ई के लाने भैया देखो जो पहले की जो तैयारी है, स्कूल जावे से पहले की जो तैयारी है वो आप सबके कितनी काम आते, है ना। तो बेटा हरो जाए हिसाब से अपनी तैयारी रख लो, और जब स्कूल खुले सोमवार से स्कूल खुले तो अच्छे से अपने स्कूल जाओ, है ना। तो अब आपको मनोरंजन करवाए काहे से बखत हो रहे हो आप के मनोरंजन को, तो चलो हम और आप मिलके सुनते हैं ये गीत।

0: तो बेटा हरो देखो, अबे हमने जे गीत सुनो है ना, गीत हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छो लगो हुई है। और अब हम आपको जानकारी दिवावे जा रहे हैं प्रमुख महासागर के बारे में। बेटा हरो, जीवन को बनाए रखवे के लाने जो महासागर होते हैं वे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। अब ये जो महासागर होते हैं ना, जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है ना, तो ये केवल पानी के बड़े बड़े भंडार ही नहीं है बेटा रो, बल्कि ये एक तरीका से जब अपनी धरती के, अपने पृथ्वी के हृदय और फेफड़ा है ना। ये जलवायु को नियंत्रित रखते हैं, ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं, और बच्चों धरती पे होने वाली ज़्यादातर जो बारिश है ना, और जो मीठे पानी को स्रोत, ये यही महासागर होते। तो आज हम आपको इन्हीं महासागरों के बारे में और विस्तार से जानकारी दिलवावे जा रहे हैं। विषय है प्रमुख महासागर और जानकारी दे रही हैं सुश्री कीर्ति गौर दीदी। तो चलो बेटा, चलते दीदी के पास और लेते जानकारी।
1: बच्चों, यह तो आपको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। हमारी पृथ्वी पर हर एक प्रकार के जीवन का आधार जल ही है। पृथ्वी पर अनेक जल स्रोत हैं, जैसे नदी, कुएं, झील व झरने। इन सभी जल स्रोतों का आधार है महासागर। स्थल भाग पर सभी ओर जल का वितरण इन्हीं महासागरों से होता है। बच्चों, यदि कुछ समय के लिए ही जल के वितरण की यह प्राकृतिक व्यवस्था बंद हो जाए तो नदी, झील, कुएं आदि स्रोत सूख जाएंगे। जल के छोटे छोटे भाग सागर अथवा खाड़ी आदि कहलाते हैं और बड़े भाग महासागर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम सैर करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह विश्व के लगभग 1/3 क्षेत्र को घेरे हुए है। इसका आकार त्रिभुज की आकृति के समान है, जिसका शीर्ष उत्तर में बेरिंग जलसंधि है और आधार दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रशांत महासागर की तली का अधिकतर भाग गंभीर सागरीय मैदान से घिरा हुआ है। इस मैदान की औसत गहराई अन्य किसी भी समुद्र के मैदान की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पठार के आकार की एक कटक क्वींसलैंड कटक के नाम से विख्यात है। न्यूजीलैंड के समीप न्यूजीलैंड रिज के नाम से भी एक कटक पाई जाती है, जो 200 से 2000 मीटर तक गहरी है। प्रशांत महासागर में असंख्य द्वीप हैं। अनुमान है कि इनकी कुल संख्या लगभग 20,000 है, किंतु इनका क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बहुत कम है। उत्तरी प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप स्थित हैं। प्रशांत महासागर में द्वीपों के अलावा ज्वालामुखी एवं प्रवाल द्वीप भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार हवाई द्वीप विभिन्न युगों के ज्वालामुखियों से बने हुए हैं। इस महासागर के गर्म भागों में अनेक प्रवाल द्वीप स्थित हैं। प्रशांत महासागर में अनेक सक्रिय और गहरे गर्त हैं। इसमें सबसे अधिक विख्यात गर्त मेरियाना गर्त, रामपो गर्त, एम्डन गर्त हैं। यह तो थी प्रशांत महासागर की सैर। आइए अब चलते हैं अटलांटिक महासागर की ओर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ये अपने विस्तार में प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल की 1/6 भाग को घेरे हुए है। इसकी औसत गहराई 2 मील से अधिक है। अंध महासागर अपनी आकृति में अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है। यह महासागर विषुवत रेखा पर सकरा है। इस महासागर के पूर्व में यूरोप महाद्वीप एवं पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका है। उत्तर में यह ग्रीनलैंड, आइसलैंड तथा अन्य छोटे छोटे द्वीपों से घिरा है, किंतु दक्षिण में यह खुला है और एंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला है। अंध महासागर में गंभीर सागरीय मैदान एक से गहरे नहीं हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से ये सागर तल धीरे धीरे बीच की ओर ऊंचे उठते जाते हैं, जहां ये एक लंबी पहाड़ियां का रूप ले लेते हैं। यह पहाड़ी महासागर को 2 भागों में बांट देती है। उत्तर में इसे डॉल्फिन पहाड़ी कहते हैं तथा दक्षिण में इसे चैलेंजर की पहाड़ी का नाम दिया गया है। बच्चों, अंध महासागर में अनेक द्रोणियाँ स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। ये द्रोणियाँ हैं उत्तरी अमेरिका की द्रोणी, गायना की द्रोणी, ब्राज़ील द्रोणी, अगुलहास द्रोणी, अंगोला द्रोणी और केप द्रोणी। वैसे बच्चों, अटलांटिक महासागर में महासागरीय गर्तों की कमी है, पर प्रमुख गर्तों में पोर्टो रिको गर्त, रोमांश गर्त, बुचानन गर्त, मोसले गर्त प्रमुख हैं। अटलांटिक महासागर में अजोर्स का पिको द्वीप सर्वोच्च है, जो सागर तल से 7000 से 8000 फीट तक ऊपर उठा है। दूसरा केप बर्डे द्वीप है। अटलांटिक महासागर में बरमूडा द्वीप समूह प्रवाल रचित है। मोरक्को तट से दूर मेडीरिया द्वीप भी पूरी तरह से ज्वालामुखी पदार्थों से निर्मित है। महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही अनेक बैंक या चबूतरे पाए जाते हैं, जिनमें डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, न्यूफाउंडलैंड प्रमुख हैं। अंध महासागर में कई बड़े बड़े तटीय समुद्रों की रचना हुई है। ये सागर हैं भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा भूमध्य सागर अंध महासागर से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक महासागर में खूब गोते लगाने के बाद चलो हम एक और महासागर में डुबकियां लगाएं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ये लो, अब हम आ गए हिंद महासागर में। हिंद महासागर या इंडियन ओशियन अपने क्षेत्रफल और विस्तार में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से छोटा है। अपनी आकृति में भी ये इन दोनों से अलग है। इसका अधिक विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तर की ओर यह स्थल भाग से घिरा हुआ है और कर्क रेखा से कुछ ही आगे तक फैला हुआ है। यह सागर उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में इंडोनेशिया द्वीपों तथा ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण में एंटार्क्टिका महाद्वीपों से घिरा है। इसकी औसत गहराई 2000 मीटर है। इसकी तट रेखाएं अधिक कटी फटी नहीं हैं। किनारों पर खाड़ियां तथा कुछ सागर पाए जाते हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अरब सागर तथा लाल सागर प्रमुख हैं। हिंद महासागर में गर्तों और खाइयों का अभाव है। केवल जावा द्वीप के दक्षिण में सुंडा गर्त पाया जाता है। महासागर के लगभग

0: बीचों बीच कन्याकुमारी भारत से अंटार्कटिक महाद्वीप तक एक अंतः समुद्री कटक विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग को लकाद्वीप चैगोस कटक कहते हैं और दक्षिणी भाग को चैगोस सेंट पॉल कटक कहते हैं। बच्चों, हिंद महासागर में अनेक द्वीप भी स्थित हैं। इनमें मेडागास्कर द्वीप, जिसे मालागासी भी कहते हैं, सर्व प्रमुख द्वीप है क्योंकि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अन्य द्वीप हैं श्रीलंका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मॉरिशस, मालदीव, जंजीवार, रिमूनियन द्वीप और लक्षद्वीप। हिंद महासागर के तटवर्ती सागरों में लाल सागर और फारस की खाड़ी आते हैं। तो बच्चों, ये हैं हमारे विश्व के प्रमुख महासागर। वास्तव में समुद्रों की रचना बड़ी ही अलौकिक है और ये मानव जाति के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। महासागरों को अपने सगे संबंधी, पालक या रक्षक के रूप में पा सकते हैं। यदि हम यह कहें कि आज धरातल के समस्त जीवन, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की सृष्टि का जनक समुद्र ही है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी से पहले जीवन समुद्र में ही प्रारंभ हुआ था। आज ये महासागर संसार के समस्त महाद्वीपों और देशों को मिलाने वाले राजमार्ग हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने महासागरों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर अपना ज्ञान बढ़ा लिया होगा।
1: तो बच्चों देखो, हमें कीर्ति गौर दीदी ने हमें प्रमुख महासागर के विषय में कितेक नौनी जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को जो महासागर के बारे में उनने जानकारी दी, आपकी जानकारी में इजाफा भव हुई है ना। और अब बखत है बच्चों आपको एक पंचतंत्र की कहानी सुनावे को। तो आज हम आपको एक कहानी सुनावे जा रहे हैं झूठी शान, जिसको हमने पंचतंत्र से लौ है। तो बच्चों, एक समय की बात है, एक घने जंगल में बहुत सुंदर बारहसिंघा रहता। तो ऊखो अपने सिंगन पर बड़ो घमंड रहे। जब वो नदी पे पानी पीवे जाए तो पानी में अपनी परछाई देख के फूलो ना समाए। वो सोचे, अरे दैया, मोरे सिंह कितने कटीले और नौने हैं, जैसे राजा को मुकुट हुए, है ना। मेरो जैसा सुंदर तो पूरे जंगल में कोई नहीं है। लेकिन जब वो अपनी पतली पतली टांगे देखे तो बाको मुँह उतर जाए और वो कहे, देखो ईश्वर ने कितने अच्छे सींग बनाए, लेकिन टांगें सूखी और बदसूरत दे दें हैं। जे मेरी टांगें जो हैं वो सुंदरता को बिगाड़ देते। तो अब एक दिन की बात रहे, बारहसिंघा मजे से घास चल रहा तो इतने में ओखों दूर से एक सियार अपनी तरफ आ दिखो। अब सियार को देखते ही बाकी पसीना छूट गए हैं। अब वो झूठी शान अपनी जान बचावे के लाने सरपट भागो। अब देखो मजे की बात बेटा रो, कि जिन टांगन को वो बदसूरत और बेकार कह रहा हो तो बेई टांगें ओखा हवा की रफ्तार से भगा के ले जा रही हती, है ना। अब उस सियार से दूर भागत भागत घने जंगल में पहुंच गयो और उतने रहे खूब कटीली झाड़ियाँ। अब बारहसिंघा ने ध्यान नहीं दो तो, और जैसे ही वो कटीली झाड़ियन के पास से निकलो, उखे लंबे लंबे सींग जो हते, कटीले सींग हते, वे एक मजबूत झाड़ी में फंस गए। बने बहुत ही जोर लगाओ, मुंह पटको, अपन झटके मारे, लेकिन सींग ऐसे फंसे कि वे निकले ना। अब वो जितना जोर लगाए सींग उतने ही फंसते जाए। उधर से सियार जो है वो धीरे धीरे उके पास आ तो दिख रहा। अब वो और जोर लगान लगो बारहसिंघा, तो अब वो जोर लगाए और रोन लगे। अब वो सोचन लगे कि अरे, अपने आप को यही कहे कि अरे मूर्ख, मैं मूर्ख हूँ कि जिन टांगन को मैं बदसूरत कह तो बेई मोरी जान बचा के मुझे इतने तक ले आई, है ना। और जिन सींगन पे मोए एक घमंड हतो, है ना, मैं इतरात हतो, झूठी शान समझत हतो, आज बेई मेरी मौत को कारण बन गए। तो सियार ऊके पास आ गओ और बाने घमंडी बारहसिंघा को काम तमाम कर दो। तो बेटा हरो, जा कहानी से हमें का सीख मिलत है। बच्चों, जा कहानी से हमें जय सीख मिलत है कि हर चमकती भई चीज जो होते वो सोना नहीं होती, है ना। जो चीज़ देखवे में सुंदर लगे वो हमेशा काम की हो जरूरी नहीं है। तो बेटा हरो, झूठी शान जो होते हैं, घमंड जो होते हैं, बहुत बुरो होते हैं, है ना। भगवान ने हमें जो दव है हमें उमें खुशी रहनी चाहिए, है ना। चाहे रंग रूप की आज का कही जाए तो का बखत है ना, रंग रूप से ज़्यादा काम की कीमत होते है। तो बेटा हरो, जब कहानी जो है अगर देखी जाए तो आप कहानी से का सीख मिला, तो यही सीख

मिलत है कि रूप रंग से ज़्यादा काम की कीमत है। जो चीज़ देखवे में सुंदर लगे वो हमेशा काम की हो, जो जरूरी नहीं है। तो कभों भी झूठी शान पे घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। और अब बखत है बेटा हारो आप सबको मनोरंजन करवावे को, तो चलो हम सब मिलके सुनते हैं ये गीत।

0: तो गीत कैसो लगो? हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छो लगो हुई है और संगे संगे ईश्वर की महत्ता को समझ में भी आ गई हुई है कि ईश्वर की जो जब कृपा होते है तो सब पे कितनी नौनी होते है ना। और बेटा हारो, अब देखो जावे की बेरा हो रही है, बखत हो रहा है, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगले शनिवार पुनः आपसे फिर भेंट कर हैं कार्यक्रम फुलबगिया में। और हम तो यही कहें कि आप अगर अपने जा कार्यक्रम में अगर कछु सुनबो चाहो तो आप हमें व्हाट्सएप पे संदेश भेज सकत हो। तो अब हमें आज्ञा दो सभी को, सभी बेटा हरन को आरती दीदी की तरफ से खूब ही लाड़ दुलार। और बेटा किसान भैया, अब हम आपसे भी विदा लेते हैं सभी को आरती की। राम राम, जय जवान, जय किसान।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया।
2: नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूं विशाल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमैनी ने उनका स्वागत किया और एक शीर्ष वार्ता वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो कि ऐसा पहला मौका किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यह सेशल्स की पिछले 12 साल में दूसरी यात्रा है। इससे पहले सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए थे। भारत और सेशल्स के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और दोनों ही देश 50 वर्ष भी मना रहे हैं अपने राजनयिक संबंधों को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे ना केवल भारत और सेशल्स के संबंधों की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के महत्व की भी, खासतौर पे जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसके चलते, और भारत के लिए सेशल्स कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स के लिए भारत की क्या अहमियत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हम सेशंस की बात करते हैं, और मैं सीधा वहीं से शुरुआत करूंगा, वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि भारत और सेशंस के जो संबंध हैं उसमें कई और पहलू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नई दिल्ली से रवाना हुए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपनी बात रखी थी। कहा था महासागर जिसकी हम बात करते हैं मिस्टर सज्जनहार, तो महासागर से क्या इंडिकेशन मिलती है और उसमें सेशल्स का क्या महत्व है?
3: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व वो जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 2015 में जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सागर है सिक्योरिटी।

0: एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब सभी की सुरक्षा, सभी का जो वृद्धि है, जो भी उनका आगे ले जाना है, ग्रोथ है, प्रगति है, सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। परंतु उसका परिपेक्ष केवल इंडियन ओशन था। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने महासागर को भी मॉरिशस में ही लॉन्च किया, और उसका है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। मतलब इसको और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अगर सागर केवल इंडियन ओशन भारतीय भूसागर से ही मिलता जुलता था, उसके परिपेक्ष में आता था, तो महासागर है, इसका जो दायरा है कहीं और बढ़ गया है। और सेशल्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत ही उसका ज्यादा महत्व हो गया है। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जो आगे चलते हुए दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, मैरिटाइम डिफेंस है, सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से, और इसके ऊपर पहले भी दोनों देशों में बहुत अच्छी सहमति है। जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी भारत आए थे इस साल फरवरी में, तब भी इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी। तो अब इसको आगे इसमें ले जाया जाए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने एमएस सज्जनार, क्योंकि जो भारत है उसने सेशल्स के कई मुख्य द्वीपों पर कोस्टल सर्वेलेंस राडार सिस्टम भी स्थापित किए हैं, यानी कि तटीय रक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करने में दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध हैं, जो गहरे संबंध हैं, वो काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम पायरेसी की बात करें, यानी कि जिन जिन शिपिंग लेन्स की आपने बात की, समुद्री सुरक्षा की बात की, तो एंटी पायरेसी जो स्टेप्स हैं, जो एंटी पायरेसी कैंपेन जो है, उसमें भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा समझौता है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी गाहे बगाहे कई बार दोनों देश कर चुके हैं। तो ये इतिहास से देखा जाए तो पहले सागर और उसके एक दशक बाद अब महासागर, यानी कि एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं सेशल्स के साथ जो हमारे संबंध हैं और हमारा जो समझौता है, खासतौर पे तटीय सुरक्षा को लेकर और जो समुद्री सुरक्षा जिसे कहा जाए उसको लेकर भी। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है मिस्टर सज्जनहार, और हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा दिल रखते हुए कई बार कई तरह से सेशल्स की मदद की है। चाहे हम अगर कोविड-19 के दिनों से देखें, जिस तरह से हमने पेंडेमिक के दौरान कई और देशों के साथ साथ सेशल्स की भी मदद की, हमने वैक्सीन्स पहुंचाई, उसके अलावा खाद्य सामग्री पहुंचाई, और हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले एक 175 मिलियन US डॉलर का आर्थिक पैकेज भी सेशल्स को दिया गया था। तो वहां सेशल्स में इसको किस तरह से देखा जाता है, भारत की जो इमेज की अगर हम बात करें तो किस तरह की इमेज भारत की है?
0: देखिए, भारत की इमेज मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बताया है, जो भारत के संबंध हमारे बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही पुराने हैं। वहां पर 1770 में हमारे पांच वहां पर जिसे कहा जाए वर्कर्स गए थे, लेबर गए थे, काम करने के लिए गए थे। कोई फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट उनको वहां पर ले गए थे, और वो पहले भारतीय लोग थे जो वहां पर हैं। और हमारा बहुत ही तब से बहुत ही संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो करीब 6,000 हमारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमारा जो डायस्पोरा है उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं करीब 6,000 हैं, करीब 10-11 हजार वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वगैरह। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारत ने हमेशा सेशल्स की मदद की है, सहायता की है, और इसके लिए बहुत ही आभारी है, सेशल्स अपने को मानता है। क्योंकि पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये भी कहूंगा,
1: जी
0: जो देखिए हमने बहुत वहां पर पेट्रोल वेसल्स दिए हैं उनको, जिससे कि वहां पर अपनी वो पेट्रोलिंग कर सके। आपने रेडार सिस्टम्स का तो बताया ही है, जो कोस्टल तटीय इलाकों में हमने उनको स्थापित किया है। अभी हमने 6 वहां पर तटीय इलाकों पर हमने ये इस्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं, जिससे कि जो कोई वहां पर अगर उनकी संप्रभुता के ऊपर कोई वहां पर आते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए उसके बारे में। फिर दूसरी बात है, हमने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उनको। इस प्रकार के बहुत सारे उनको हमने सामान दिया है, जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो बड़ी अच्छी तरीके से निभा पाए। उसके साथ हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो लिमातीय एक्सरसाइजेस हर 2 साल में एक बारी होती हैं।

0: तो मैं कहूंगा बहुत वहां पर काम किया गया है। हमारी जो नेवल शिप्स हैं, INS सुनैना है, INS शारदा है, उन्होंने वहां की उसके एरिया के लिए, तटीय इलाकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह की है। तो बहुत काम दोनों देश एक साथ करते हैं, और इसमें वहां के जो लोग हैं वो भारत के बहुत ही आभार मानते हैं। हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसको और बढ़ सकता था, तो परंतु आपने जो अभी जिक्र किया है $175 मिलियन का, वो जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी आए थे यहाँ पर फरवरी में,
1: जी बिल्कुल
0: तो तब उन्होंने उस समय ये पैकेज, लोन भी है और ग्रांट का पैकेज है जो कि दिया था हमने उन्हें, और उसमें जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे वहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें दोनों देशों ने कहा जो वहां पर काम किया जाएगा। आपने COVID-19 का विशाल जी अभी जिक्र किया,
1: जी
0: और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सेशेल्स मेरे विचार से दुनिया में करीब सबसे पहला देश रहा होगा जहां पर कि हमने 50,000 अपने वैक्सीन डोजेज वहां पर भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा करीब 2021 में, बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में, 16 जनवरी को हमने अपना टीकाकरण शुरू किया, और फिर 21 जनवरी 4-5 दिन बाद ही हमने सेशेल्स के लिए भी करीब 50,000 डोजेस भेज दिए थे। उनकी जनसंख्या ही अगर देखा जाए तो करीब 1 लाख के आसपास है, छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है,
1: जी
0: परंतु भारत उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से उसको आगे लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है, और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जैसे हम बात कर रहे थे पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है
1: जी
0: वो हम इन्हीं समुद्र से ही हम उसको आगे लेकर चलते हैं।
1: जी
0: विशाल
1: बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर सज्जनहार। केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, केवल सैन्य उपकरण नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में भारत का काफ़ी योगदान रहा है सेशल्स में। चाहे वो वहाँ की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग हो, वहाँ पर ऊर्जा संयंत्र हो, या फिर और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, उनका 50वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष स्तर पर वार्ता भी होगी, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए क्या वो दो या तीन बड़ी बातें हैं जो उभर कर सामने आ सकती हैं?
0: देखिए, एक तो मेरे विचार से भारत ही न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए, परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है, और उसको वो बिल्कुल भारत जो है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। तो कोई ये जैसे हम देख रहे हैं चीन की तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मालदीव्स के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा हो, श्रीलंका के साथ आगे बढ़ा रहा हो, तो किसी को ये शक, चाहे वो ग्वादर में आ गया हो, जिबूती में आ गया हो, तो किसी को ये शक शुभ नहीं होना चाहिए जो भारत और देशों को यहाँ पर अपने इस क्षेत्र में आकर किसी ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी कार्रवाई करने का की अनुमति देगा। तो इसका भारत के यहाँ पर जो भी देश है उनके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है।
1: जी
0: एक तो ये संदेश बिल्कुल सीधा है, दूसरा है चाहे देश छोटे हों परंतु भारत उनके साथ, जो भारत के मित्र हैं उनके साथ वो बिल्कुल मिलकर काम करेगा और उनकी सब पूरी तरीके से सहायता करेगा। आखिर में यही कहना है, जब भारत बढ़ता है, भारत की प्रगति होती है, भारत समृद्धिमान बनता है, तो ये केवल भारत के लिए फायदा नहीं है, परंतु जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इन सभी के लिए फायदा है, और भारत सभी के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है। उसी को हमने सागर का पहले रूप दिया और उसी को हमने

0: फिर और बढ़ाकर महासागर का रूप दिया है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सज्जनहार। जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सेशल्स की और भारत और सेशल्स के बीच जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनकी समीक्षा करने के लिए और श्रोताओं को ये बताने के लिए कि किस मार्ग पर यानी कि किस दिशा में भारत और सेशल्स के संबंध अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: श्रोताओ, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम का 7वां एपिसोड।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
5: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
6: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है, इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
7: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पर ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं तो हमारा पृथककरण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पे डाल दिया। जो दीदियाँ काम करती हैं दाना बन गया उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक अलार्म सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं। उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है। आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
6: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
7: यस।
6: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया ये बताएंगे सैनी जी आप?
7: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारीगण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचड़े को अन्य सभी कचड़ों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि क्या इस कचड़े के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारीगण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
6: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
7: जी बिल्कुल।
6: तो उसके लिए भी एक रेट है,
7: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इन साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं। जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे तो उनके साथ भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
6: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
7: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
6: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
7: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है इडली खाने का मन है तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप दो टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जाम्पल।

0: इसमें निकल करके आए हैं, तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है। ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज़ करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज़ किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया, गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है
0: वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है, कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।

0: एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
1: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है, गार्बेज कैफे संचालन का एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज्ड रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे, तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22, तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
0: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
1: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
0: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, उनके बल पे ये
1: बिल्कुल चल रहा है,
0: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
1: लोकेशन पे ऐसा
0: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
1: बिल्कुल जानकारी।
0: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
1: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
0: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
0: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
1: इस तरह की योजना कैसे बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं, डालते जाएं, वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पर भी कुछ।
0: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
1: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था, अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी वो लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
0: उसके रैपर्स
1: को इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।

0: तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
0: जापान कोरिया यहां से भी
1: सभी जगह
0: प्रशंसा आई थी,
1: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
0: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इस कार्यक्रम का 7वां एपिसोड। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आनंद फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत से सवारा था सलील चौधरी ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं तकदीर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब एक छोटा सा ब्रेक।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह

0: 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली MDMK पार्टी ने DMK के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि MDMK को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। MDMK के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र

0: एक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग,

0: work for strengthening bilateral trade and investment. The discussions highlighted the agreement's potential to promote long-term investment, technology partnerships, innovation, resilient supply chains, and deeper economic cooperation between India and the UK. The fragile ceasefire brokered 2 weeks ago to end the four-month conflict in West Asia is under mounting pressure after fresh retaliatory strikes between the United States and Iran over the past 48 hours. The latest escalation began on Thursday with an Iranian attack on a commercial vessel in the Strait of Hormuz, prompting a U.S. response. Both sides accuse each other of violating the interim agreement, raising fears for ongoing diplomatic efforts. Bahrain reported a drone attack today, calling it a flagrant violation of its sovereignty, while a strike was reported near Erbil in northern Iraq. In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatieh area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. We have more from our West Asia correspondent.
1: Maritime security agencies are raising alarm bells. Britain's UK MTO reported that a tanker struck on Saturday sustained damage to its bridge, with all crew members reported safe. The Joint Maritime Information Centre, which coordinates naval protection of shipping lines, has elevated its security threat level in response to recent incidents. Iran's Revolutionary Guard Corps claimed that they fired warning shots at vessels using channels not approved by Tehran, suggesting the Islamic Republic is reasserting control over the world's most critical energy shipping corridor, a route that has been begun reopening after months of disruption. At the heart of the escalation is a breakdown of mutual compliance. Iran has accused United States of failing to uphold the ceasefire, particularly by not sustaining promised restraint in Lebanon. Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
0: A strong earthquake of 6.2 magnitude struck the Hindu Kush region of Afghanistan this evening at around 7:04 p.m. Tremors were felt across India, Pakistan, China, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan. Shocks were also observed in several parts of North India, including Delhi NCR, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Haryana. Talking exclusively to Akashwani News, scientist, National Center for Seismology, Sanjay Kumar Prajapati said the earthquake was moderate in nature and the damage near the epicenter is expected to be very little.
2: The tremor is widely felt across the northern India, including Delhi NCR, Chandigarh and Srinagar. And if you see, the intensity is the moderate near the source zone region, that is zone, basically intensity is 4. And because it is deep focus earthquake, the shake was over a broad region. But near to the epicenter, the damage is expected is very limited.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Vidarbha, Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. In US Open Badminton, India's Devika Sehar, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan have reached the semifinals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight games, 22-20, 21-19, in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikanth defeated Chinese Taipei's Liao Shuo Fu, 21-9, 12-21, 21-8, to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman, 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match in Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Aisha Kandrapu and Kirti Manchala gave India a strong start by defeating Alyssa Kuleshova and Diana Naminova, 11-5. Puneet Suresh and Deepthi Raj Aditi then edged past Mustafa Malikzan and Alyssa Kuleshova, 11-10, to extend India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably sealed the tie. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in the US. Both matches are scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. Earlier, Spain booked their place in the knockout stage with a hard-fought 1-0 victory over Uruguay. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौमे आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एज़ाज़ी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जना मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहाँ पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशेल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की ये तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशेल्स के दरमियान मुश्तरक अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जाइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वहाँ आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान रबते मुस्तहकम हुए हैं। खैर मगालिए के खसूसी कदम के तहत वजीर आज़म मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वजीर आज़म मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आज़म हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
3: भारतीय बहरिया का अंदरूनी मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जुनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना रबते कायम करेगा जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीक़ेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे

0: आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में नायब वजीर आला हर्ष सिंघवी की मौजूदगी में जिला तरक्याती तालमेल और निगरानी कमेटी की सदारत की। वजीर मौसूफ ने मरकज की कई अहम स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। किसानों को माली एतबार से बाख्तियार बनाने की गरज से जनाब शाह ने एक तेज रफ्तार सर्वे कराए जाने की बात कही, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमीन रखने वाले हर किसान को कम अज कम दो मवेशी मुहैया कराए जाए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की मजबूती बहुत छोटे छोटे और मुतवस्सित कारोबारी इदारों के इसके शोबे के इश्तराक पर मबनी होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई के दिन 2026 उद्यमी भारत की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एमएसएमई का शोबा पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर्स के हौसले और कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। नायब सदर ने कहा कि यह शोबा मुसलसल आला मियारात को बरकरार रखते हुए मुल्क की कुल बरामदात में तकरीबन 50% का तआवुन कर रहा है। जनाब राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि एमएसएमई का शोबा 2047 तक विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर में एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए एमएसएमई के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने कहा कि मरकजी बजट से एमएसएमई के शोबे के लिए हुकूमत की तरजीह और अज़्म का इजहार होता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत एक ऐसे इको निज़ाम की तश्कील के लिए अहदबंद है जहां हर कारोबारी को इख्तरा, तरक्की और मुल्क की तामीर में तआवुन करने के बराबर के मौके मयसर हों।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: वज़ीरे आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी पीएमएमएल में आज आनजहानी वज़ीरे आज़म पीवी नरसिम्हा राव के 105वें यौमे पैदाइश के मौके पर उनकी हयात और विरासत के तहत वक्फ एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह पीएमएमएल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदरनशीं नृपेंद्र मिश्रा ने किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी इस नुमाइश को देखने वालों के लिए खोल दिया। इस नुमाइश में ऐसी नायाब तस्वीर, सरकारी दस्तावेजात, तकारीर, खतो मुरासले और आर्काइव से मुतालिक साजो सामान रखा गया है, जिससे अवामी जिंदगी में नरसिम्हा राव के काबिल कद्र सफर का इल्म होता है। वजारत दिफा ने आज कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी पोस्ट्स गर्दिश कर रही हैं जिनकी रूह से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले बरस 28 जुलाई को पार्लियामेंट के ऐवान में दिए गए खिताब की गलत तर्जुमानी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि इन पोस्ट्स में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को अलग करके इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे ये झूठा गुमान गुजरता है कि जनाब सिंह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय फौजी की जान तलफ नहीं हुई है। वजीर दिफा के बयान के तनाजुर की वजाहत पेश करते हुए वजारत ने कहा है कि जनाब सिंह के खिताब के वक्त मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक मखसूस मुस्तकिल और पुर असर बयानिया उभरा जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट्स की जानें तलफ हुई हैं। वजारत ने कहा है कि ये बयान कतई गलत था, इसके बावजूद इसे बहुत शिद्दत के साथ तूल दिया जा रहा था जिसमें वाज़े तौर पर ऑपरेशन की कामयाबी को कम करने और अवामी जज्बात को मजरूह करने की नीयत कार फरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र

0: ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का इतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर व खोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि SIT की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से मुतालिक मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET से मुतालिक पेपर लीक होने के एक बड़े वाकये का राज भिवंडी में फाश हुआ है। इम्तिहान के नकाब से एक दिन कबल इस बात का इल्म हुआ और पेपर लीक मामले में मुलविस तीन मुबैना अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन TET के सवालनामे दिल्ली से लेकर आए थे और वो मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की मालियत के एक सौदे में उन्हें फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। एक सुराग मिलने पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी की पुलिस ने एक जाल बिछाया और लेन देन तय पाने से कबल ही तीन मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इतवार को होने वाले TET के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस वाकये के सबब महाराष्ट्र भर में लाखों उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। मगरबी एशिया में 4 महीने से जारी महाजराई को खत्म करने के गरज से 2 हफ्ते पहले तय पाई कमजोर जंगबंदी को इंतहाई दबाव का सामना है। पिछले 48 घंटे में अमरीका और ईरान के दरमियान कई हमले और जवाबी हमले हुए हैं। हमलों ने जुमेरात के रोज उस वक्त जोर पकड़ा जब आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल जहाज पर किए गए ईरानी हमले के जवाब में अमरीका की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद तेहरान के बकौल आज खत्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन के खिलाफ उसका हमला एक दिफाई हमला था। दोनों ही मुल्क अबूरी माहदे की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि अमरीका और ईरान दोनों ही जैसे को तैसा मुहावरे पर अमल करते हुए फौजी कार्रवाइयों के एक सिलसिले में मुलविस हो गए हैं, जिससे 40 मुल्कों की सिफारती कोशिशों को खतरा लाहक हो गया है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खत्ते में आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:04 पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली NCR, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू जिलों समेत मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। अहलकारों ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जलजिला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: की जो गहराई है वो 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और इसके झटके जो है दिल्ली NCR, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर मतला अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जोफो को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान आज़ादी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुद बोर्ड से मुतालिक मामलों के बाद अखलाक बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है एक सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को भी लाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट है। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदुकुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है।

0: और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी की उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं, वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड, और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठाकर देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई, तो उस घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। इसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहाँ पे साफ सुनाई दे रहा, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
2: जी,
3: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
2: जी,
3: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गाँव के सारे लोग सुनते थे उस टाइम
2: जी।
3: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई है वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फलां वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
2: जी।
3: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
2: जी।
3: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
2: जी, जी।
3: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
2: जी।
3: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
2: जी।
3: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
1: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
3: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा

0: का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
0: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें। ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून महा विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए।

0: एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है। क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता, आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अगर किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर GV राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

0: गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
1: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है अभी। तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं, उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप, और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जी वी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्वरी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन एयर

और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यनाथ, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermé.